मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड

0: करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
2: प्रातः बेला की आराधना वन

कार्यक्रम का आरंभ देशभक्ति रचना से। प्रत्येक भारतवासी के अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं। अपनी आजीविका के लिए किए जाने वाले इन सभी कर्मों में ईमानदारी, सद्भाव और कड़ी मेहनत का समावेश हो, यही एक भारतवासी होने के नाते अपनी मातृभूमि के प्रति हमारी सच्ची सेवा है।

ईश्वर ने समस्त प्राणियों को एक दूसरे पर आश्रित बना रखा है। हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो दूसरों से लेते भी हैं। जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए ईश्वर द्वारा बनाया गया ये चक्र हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। आइए वंदना करें परमपिता के चरणों में।

हमारे मन के विचार और हमारी अंतरात्मा की अनुभूति दिखाई नहीं देती, पर होती है। ईश्वर इन्हीं सूक्ष्म एहसासों में विद्यमान रहता है। ईश्वर तक अपनी पुकार, अपनी प्रार्थना पहुंचाने के यही सार्थक माध्यम हैं।

परमात्मा कब हमारी परीक्षा ले, कब किस रूप में हमारे सामने आ जाए, कब हमारी विपत्तियों के पहाड़ को तिल के समान छोटा बना देगा, ये कोई नहीं जानता। बस प्राणी मात्र का यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और जीवन में उसकी स्वीकार्यता सदैव बनी रहे।

ये सच है कि ईश्वर प्रत्येक पल में हमारे साथ मौजूद रहता है, तो फिर क्यों ना अपने दुख सुख और समस्त कर्म उसे ही अर्पित करते चलें, क्योंकि अंततः उसी के न्याय का परिणाम हमें स्वीकार करना होता है, और जीवन के इस सत्य से कोई नहीं भाग सकता।

0: आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद सुमन कल्याणपुर, लक्ष्मी राठौर, उषा सेठ और लता मंगेशकर की गायी भक्ति रचनाएं सुनी। इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है।
1: ये प्रसारण आप तक पहुंचा आकाशवाणी भोपाल के माध्यम से। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान। स्वर रविंद्र साठे का है और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

0: मानसगान की आज की कड़ी आपने सुनी रविंद्र साठे के स्वर में। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। समय है चिंतन का।
1: अक्सर देखा जाता है कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी वो पेड़ भी उतनी ही मजबूती के साथ टिका रहता है। तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जो अपनी जड़ों को मजबूत रखते हैं। जड़ों का मजबूत होना इस बात का परिचायक है कि उसके संस्कारों ने उसे सींचा है, तभी जड़ें इतनी मजबूत हैं। मानव की जड़ों को समझना हो तो हमें उसके संस्कारों को देखना होगा, तभी हम उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जड़ों का आशय अतीत से भी है। वर्तमान की कोख में अतीत का बीज होता है। भविष्य की नींव भी अतीत से ही तैयार होती है। जो अपना अतीत भूल जाता है वो आगे चलकर सब कुछ भूल जाता है। अतीत की गलतियां ही मानव को तराशती हैं। इतिहास हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम उन गलतियों से सबक सीख सकें जो हमारे पूर्वजों ने की थीं। उन गलतियों को न दोहराना ही हमारा पहला कर्तव्य है। जो जड़ों से दूर होता है वो अपने भविष्य की बुनियाद को ही तोड़ देता है। हमारे बीच ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। इसके बाद भी वो अपने पुराने दिनों को नहीं भूल पाए। एक घटना याद आती है। एक बहुत बड़ी प्रेस के मालिक अपनी बहुत बड़ी प्रिंटर मशीन के पास एक पुरानी प्रिंटर मशीन को रखा करते थे। लोगों ने कई बार इसका कारण पूछा, वे हमेशा टाल देते। एक बार उनकी संतानों ने उस मशीन को हटवा दिया। इससे वे काफी नाराज हुए। बच्चों को डांटते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस व्यवसाय की शुरुआत इसी मशीन से की थी। इसी मशीन से ही मैं आज बड़ी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बन पाया हूं। मैं अपने अतीत को याद रखते हुए ही सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ये मशीन मुझे अपने संघर्ष के दिनों की याद दिलाती है। मेरी कोमल भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। आज इस व्यवसाय में मुझे बड़ा घाटा भी हो जाए तो ये मशीन मुझे संबल देगी। मुझे विश्वास है कि मैं इसी मशीन से फिर वही मुकाम हासिल कर लूंगा। ये मशीन मुझे कभी दुखी होने नहीं देगी। तब बच्चों ने समझा कि आखिर ये पुरानी मशीन इस नई मशीन के पास क्यों रखी है। जीवन में भी यही होता है। अपनी जड़ों से दूर होने वाले दुखी होते हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाती हैं वो कमजोर होकर एक दिन उखड़ जाता है। मजबूत जड़ों के वृक्ष कभी धराशायी नहीं होते। सुनहरे भविष्य की ओर तभी बढ़ा जा सकता है जब हम अतीत को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक उस नाविक की तरह जो वर्तमान के पानी में रहते हुए पतवार चलाता है। उसकी नजरें अतीत की ओर टिकी होती हैं, पर वो भविष्य की ओर बढ़ता रहता है। बरसों बाद यदि कोई अपनी मातृभूमि की ओर लौटता है तो उस क्षेत्र की माटी का एक एक कण उसे अपनी ओर बुलाता है। इंसान भावनाओं में बहकर उस माटी से जुड़ जाना चाहता है। वो उसी माटी में रम जाना चाहता है। इसे ही कहते हैं जड़ों से जुड़ाव। असल में अपनी धरती, अपनी माटी की खुशबू, अपनी बोली, अपना पहनावा, ये सब तत्व मिलकर जड़ का निर्माण करते हैं। ये सब हर किसी के अंदर रचा बसा होता है और सारी दुनिया एक तरफ और अपनी जड़ से जुड़े रहने का एहसास एक तरफ। लेकिन जिस प्रकार अपनी जड़ों से जुड़े होने की खुशी अतुलनीय है, ठीक उसी प्रकार उनसे दूर होने का गम भी। हमारी जड़ें लगभग पेड़ पौधों की जड़ों जैसी ही होती हैं। जिस तरह पेड़ पौधों की जड़ें न दिखाई देते हुए भी उनका

0: अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग होती हैं, उसी तरह इंसान की जड़ें भी हमेशा उसके अंदर ही विद्यमान होती हैं। अंतर केवल इतना है कि पेड़ पौधे चाहे आसमान की बुलंदियों को क्यों न छू लें, वे सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इसे एक तरह से आप उनके लिए प्रकृति का वरदान कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य शायद प्रकृति के इस वरदान से वंचित रह गया। इस संसार में कभी पेट की खातिर या किन्हीं और कारणों से उसे अपनी जड़ों से दूर होना पड़ता है। यकीन माने, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एकाएक अपनी जड़ों से दूर होने पर इस चीज का एहसास कर पाते हैं। अधिकतर या तो सुख सुविधाओं की चकाचौंध में खो जाते हैं, या फिर कुछ इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास ये सब सोचने का वक्त ही नहीं होता। लेकिन इस दुनिया की भाग दौड़ में इंसान कितना भी क्यों ना भाग ले, देर सबेर उसे अपनी जड़ें ही याद आती हैं।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। आलेख भारती परिमल का था और वाचक थे डॉक्टर अरविंद सोनी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब किसान भाई सुने कृषि चर्चा।
2: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि मृदा का स्वास्थ्य यदि हमें बनाए रखना है, तो उसके लिए मृदा के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। सोयल स्ट्रक्चर और सोयल टेक्सचर। सोयल स्ट्रक्चर अर्थात मिट्टी की जो फिजिकल जो दशा है, जो कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि धान की फसल में जैसे जो पल्डिंग करते हैं तो मचाई करने से उसके जो प्रस्तर होते हैं तो उनको हम दबाते जाते हैं, और भारी भरकरम कृषि मशीनरी ट्रैफिक जब गुजारते हैं तो मृदा की संरचना बिगड़ती है। मृदा की जो निचली परतें होती हैं वो कठोर बन जाती हैं, तो निचली परतें कठोर होने से जलमग्नता होती है, मृदा का स्ट्रक्चर बिगड़ता है, और कालांतर में मृदा की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में कमी आती है। तो इसके लिए आज हमें ये आवश्यकता है कि इनमें बाहरी भरकरम कृषि मशीनरी ट्रैफिक को कम से कम गुजारना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे पास जो ट्रैक्टर की कृषि मशीनरी है, उस कृषि मशीनरी में इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं कि आगे के जो स्टेयरिंग व्हील हैं और पीछे के जो ट्रैक्शन व्हील हैं, उसमें व्हील वेस को आप जो है कम या अधिक कर सकते हैं। और इसके साथ इंटरक्रॉपिंग के लिए लाइन स्विंग जब होती है तो लाइन स्विंग में पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम जो मेंटेन कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम भारी भरकरम कृषि मशीनरी के वजन को समान रूप से हम जो है व्हील ट्रैक चौड़ा करके या पतला करके और हम इंटरकल्चर ऑपरेशन बड़ी आराम से कर सकते हैं। जुताई, बुआई और हकाई, ये सब जो है प्रक्रिया बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, ताकि भारी भरकरम कृषि मशीनरी गुजारने से मृदा की संरचना न बिगड़े। और इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि मृदा की दशा अच्छी करने के लिए मृदा क्षरण के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जैसे ऊपरी सतह जो होती है उसमें जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। सबसे ज़्यादा मिट्टी को जो नुकसान होता है वो जो है परत क्षरण से होता है। परत क्षरण से मिट्टी के प्रमुख पोषक तत्व जैसे नेत्रजन, स्फोर, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है अनायास ही मिट्टी की ऊपरी वाली लेयर से होते हुए वर्षा के पानी के जल के प्रभाव में मिट्टी से होकर बह जाते हैं और नदी नाले से होते हुए समुद्र की तरफ चले जाते हैं, और इससे हमारे किसान को नुकसान होता है और उसे जो है फिर से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी जेब भारी होती है और उसे इसका खर्चा करना पड़ता है। इसलिए क्या है, अधिकांश पौधे पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति इसी सतह से करते हैं। तो आज हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो है भारी भरकरम कृषि मशीनरी की ट्रैफिक को भी ना गुजारें, उसको हम गुजारने से बचाएं। और गुजारने से बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि यदि हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती और संरक्षित खेती जिसमें शून्य जुताई है या मिनिमम टिलेज है, इन तकनीक का हम बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का प्रारूप मॉडल अपने फील्ड पर सोच समझकर अपनाएंगे, तो इससे अपनी खेती में अपेक्षित लाभ तो होगा और साथ में उनको मृदा की जो प्रस्तर है, जो सॉइल प्रोफाइल है, मिट्टी की जो परतें हैं वो क्या है कि कठोर नहीं होगी। जब मिट्टी की परतें कठोर नहीं होंगी तो मृदा की संरचना नहीं बिगड़ेगी, और मृदा जब संरचना अच्छी रहेगी तो उसमें परगोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन

0: फिल्ट्रेशन के साथ साथ में जितनी भी वर्षा का पानी जो आएगा वो पानी ग्राउंड वाटर से मिलेगा और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और जो पुराने सूखे कुएं पड़े हुए हैं, जो नलकूप हैं, वो उनमें भी पानी आएगा। और जो है इस प्रकार से हम रबी के सीजन में हम उन कुओं से या नलकूप से भली भांति सिंचाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ कालांतर में मृदा की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में भी अपेक्षित लाभ उठा सकते हैं। आज की कृषि चर्चा संपन्न होती है।
1: मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आज की कृषि चर्चा में अभी किसान भाई ये जानकारी सुन रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा से। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: उत्पादन में भी अपेक्षित लाभ उठा सकते हैं। आज की कृषि चर्चा संपन्न होती है।
1: मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। आज की कृषि चर्चा में अभी किसान भाई ये जानकारी सुन रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा से। ये आकाशवाणी भोपाल है।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।

0: द्विसहस्रतमवर्षस्य वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20-प्रति-20 विश्वचषकक्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली

0: गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अभी सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसमें आज सुनिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस पर सुश्री संस्कृति खरे से चर्चा, विरासत संरक्षण में युवाओं को प्रशिक्षित करने के नए पाठ्यक्रम की जानकारी देंगी डॉक्टर मनीषा शर्मा। इसके साथ ही होगी श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव से जीवन शैली से जुड़े विकारों में योग से प्रबंधन विषय पर बातचीत। आज सुबह 8:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर सुनिएगा कुछ बुंदेली लोकगीत, कलाकार अनरथलाल बैरसिया। सुबह 9:30 हम पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम आईना। इसमें आज सुनिए मोहम्मद हाशिम अंसारी की तकरीर, किताबों का शौक एक खामोश इनकलाब। इसके साथ ही विजय तिवारी का कलाम। 10:00 सुनिए जिले की चिट्ठी।

फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर होगा आज सुबह 10:05 पर। रागमाला शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 सुनिएगा रुचिरा काले का ख्याल गायन राग विभास। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है दिन में 12:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 आप सुनेंगे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 10वीं कड़ी। स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में 1:30 पर आप सुनेंगे अमित गंगेले के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। आज के कलाकार राजेश श्रीवास्तव, इनकी आवाज में चंद गजलें हम पेश करेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय दिन में 2:00 और 2:30 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युवावाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, शाम 6:30 और रात 8:35। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुनेंगे 6:45 पर। रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत विदेश नीति पर केंद्रित कार्यक्रम।

रात 9:30 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आपकी फरमाइश का प्रसारण होगा रात 10 बजे और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे रुचिरा काले का ख्याल गायन राग केदार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा...

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। एनटीए ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 18 जून को इंदौर आएंगी और यहां से वे बैतूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे शाम को ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी। अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे अगले दिन इंदौर से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंड जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 20 जून को शाम को जबलपुर आएंगी। अगले दिन 21 जून को वे जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये वहां की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के ग्राम बेरखड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है।
2: बेरखेड़ी जैतू में ये कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो देश और दुनिया में हो रहे रिसर्च को तत्काल किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। अलग अलग किसान कैसे उन्नत खेती करें, कम जमीन में भी कैसे लाभकारी खेती की जाए, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भी यहाँ तैयार होंगे। बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करके कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता उस पर भी यह काम होगा। यहाँ एग्री क्लिनिक भी स्थापित होगा। AI का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे उन्नत खेती कर सकते हैं इस पर भी यह काम होगा।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के आलोट तहसील स्थित खमरिया गांव की महिलाएं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के मवेशियों के लिए हरा चारा उगाकर अपनी आमदनी में कई गुना वृद्धि कर रही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
1: सरकार की योजनाओं और महिलाओं की मेहनत जब एक साथ जुड़ती है तो बदलाव की नई मिसाल सामने आती है। रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के ग्राम खमरिया में महिलाओं ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्राम खमरिया स्थित श्री राड़ी माता गौशाला का संचालन कन्हैया स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं मिलकर कर रही हैं। पहले ये महिलाएं कृषि मजदूरी और सीमित आय पर निर्भर थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद कम पानी और कम लागत में ही 7 से 10 दिनों के भीतर पौष्टिक हरा चारा तैयार होने लगा। स्वयं सहायता समूह की ही महिला मधु बताती हैं कि
2: पहले हम लोग गांव में मजदूरी करके घर चलाते थे, पन आमदनी कम थी, गौशाला में भी चारा नहीं था, पर सरकार की योजना से आजीविका मिशन से जुड़ के नया तकनीकी प्रशिक्षण मिला। अब हम कम पानी में कम खर्चा में हरा चारा बहुत जल्दी बना लें।
1: अब समूह की महिलाएं गोबर खाद निर्माण, जैविक खाद विक्रय और नर्सरी विकास जैसी गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लखपति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज पेश है पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों पर एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो सकता है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारत ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। वहीं दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। राजगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में कल रक्तदान शिविर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। इंदौर में 16 से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में कल विशेष सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीधी में लोक कल्याण मेला के तहत PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में कल 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर में कुल 120 आवेदन

दिनों का निराकरण किया गया। धार में रबी फसल ऋण को जमा करने के अंतिम दिन आज ऋण को जमा कर किसान 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिवपुरी जिले में कल महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में कल ग्राम पंचायत पालनगर और नागदा में कृषक संगोष्ठी और खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। मुरैना में कल एक यात्री ट्रेन से कुचलकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग आग की अफवाह के चलते दूसरी ट्रेन से उतरकर पटरी पर आ गए थे और कटनी में एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। श्रोताओं, पूरब के आसमान में नई भोर मुस्कुराई और धरती के आंगन में जीवन का आलोक बिखर गया। इस नए दिन की आहटों और हलचलों को समेटे शुरू हो रहा है सफर नमस्कार भोपाल का। आज इस सफर में आपके साथ हैं जूही राव।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार भोपाल सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जूही राव। श्रोताओं, विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस समय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसे अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। इसमें हम जानते ही हैं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मुख्य रूप से शामिल हैं। श्रोताओं, आज 15 जून को ग्लोबल विंड डे यानी विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2007 से हुई विंड यूरोप और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विंड टर्बाइनों का उपयोग करते हुए हवा द्वारा संचालित ब्लेडों को इसकी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस दिवस को जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, इस थीम पर हमारा देश भारत गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्य सरकारें, अक्षय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई एजेंसियां, उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। हमारा देश दुनिया भर में चौथी पायदान पर है और ये ऊर्जा देश की ऊर्जा प्रणाली का ज्यादा स्थायी और एकीकृत हिस्सा बनते जा रही है। श्रोताओं, हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत अपनी पहचान बना रहा है, तो आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी भी एक नई पहचान बना सकते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आप बारी है आज के समाचार पत्रों से कुछ मुख्य समाचार और उपयोगी जानकारियों के लिए। सबसे पहली खबर, भारत और फ्रांस बना सकते हैं एआई का ओपन सोर्स मॉडल। भारत इनोवेट्स 2026, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का साझा विजन। मैक्रों बोले, भारत ग्लोबल इनोवेशन लीडर, इसके साथ कौन इनोवेट करेगा ये बड़ा सवाल। दुनिया को समाधान देने वाला देश है भारत, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। मौसम की बात करें तो 48 से 72 घंटे में मध्य प्रदेश में मॉनसून का प्रवेश हो सकता है। भोपाल समेत 30 जिलों में आज तेज हवा और बारिश का अलर्ट। प्री मॉनसून का असर, भोपाल में दिन का तापमान 3.7 डिग्री गिरा। राजा भोज एयरपोर्ट पर आज से सहज काउंटर शुरू, निःशुल्क मिलेगी मदद। राजा भोज एयरपोर्ट पर 15 जून से निःशुल्क सहज काउंटर शुरू किया जाएगा। इसके जरिए पहली बार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को एयरपोर्ट की प्रक्रिया पूरी करने में सहायता मिलेगी। कर्मी उन्हें डिपार्चर एरिया तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी खबर, जीआरपी की इमारतें बनेंगी वाटर बैंक, लगेगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जीआरपी की पहल, बिना अलग बजट के 29 भवनों में लगा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक।

MIFF में फिल्म द लास्ट लेटर का चयन। भोपाल के डॉक्टर सुधीर आज़ाद की लघु फिल्म का चयन 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ है। फिल्म की स्क्रीनिंग 21 जून को की जाएगी। श्रोताओं, ये थी कुछ खबरें और जानकारियां आज के समाचार पत्रों से। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल ये गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहा है।

मीडियम वेव, डीटीएच, प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, आज मनाया जा रहा है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इसकी शुरुआत 2006 में INPEA द्वारा की गई थी और इसे मान्यता दी गई UN के द्वारा। और इसके बारे में

0: चर्चा के लिए हमारे साथ में आज मौजूद हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है मैम।
1: नमस्कार, मैं संस्कृति खरे, हेल्पेज इंडिया मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख हूँ। वरिष्ठ नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होते जो परिवार के सबसे मुखिया होते हैं। जो हमारा एक सोच थी कि हमारे परिवार में मुखिया है मतलब वही है, चाहे इनकम का सोर्स हो या नहीं हो, लेकिन एज वाइज वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते थे। समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलती जा रही है, लोग उस चीज़ को एक अपना क्राइटेरिया उनका चेंज होते आ रहा है। आजकल बच्चे या मिडिल एज ग्रुप के लोग सोचते हैं कि जो इनकम जो कमा के लेके आ रहा व्यक्ति वो ही व्यक्ति मुखिया होगा घर का। तो लोगों का जो तरीका हो गया वरिष्ठ नागरिकों के साथ में दुर्व्यवहार करने एक बड़ा एक आम बात हो गई है। उनका रिस्पेक्ट नहीं करना, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना उनकी, और प्रताड़ना की अगर हम बातें करें तो मानसिक प्रताड़ना हो गई है, फाइनेंशियल एब्यूज हो गया उनके साथ में, फिजिकल एब्यूज हो गया है, और नए आजकल जो सुनने में आ रहे सेक्सुअल एब्यूज भी वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने लगा है। जो डिजिटल एब्यूज है, लोग बहुत इजीली टारगेट होते हैं सीनियर सिटीजन, उनकी इनकम एक ही अकाउंट में होती है, उनको एब्यूज करने में बहुत इजीली उनको टारगेट मिल जाता है, पूरी जमा पूंजी है वो एक बार में उनकी निकल जाती है। इस प्रकार के बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको हमें सोचने की जरूरत है आजकल, और उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो हम अगर इंडिविजुअल पर्सन या कम्युनिटी है, सोसाइटी, हर व्यक्ति को किस प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों को दुर्व्यवहार से रोक सकते हैं, तो उसके लिए सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जैसे अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जो है NPHC चला रहा है, नेशनल हेल्थ केयरली प्रोग्राम फॉर एल्डरली केयर के लिए है, जिसमें उन्होंने विशेष सुविधाएं रखी हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। उसी प्रकार से यदि हम सामाजिक न्याय विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय विभाग ने विशेष एक हेल्पलाइन शुरू करी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो है 14567। इस नंबर पे कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या है आप उसको बता सकते हैं, उसका सुझाव ले सकते हैं। काउंसलिंग की जरूरत है आपको, कहीं हेल्थ में किसी भी जो भी सुविधाएं जिन चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और इनके अलावा यदि कोई प्रताड़ित कर रहा है आपको फिजिकली मेंटली किसी प्रकार से भी आपको अगर तकलीफ दे रहा है कोई व्यक्ति, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना कंप्लेन कर सकते हैं, आपको वहां से सुझाव मिलेगा और आपकी समस्या का निराकरण होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने देखी है, इस नंबर पे लोग डायल करके अपने मानसिक संतुष्टि के लिए वो बहुत लंबे समय बात करते हैं, कोई उनके साथ बात करने वाला नहीं होता, उनकी तकलीफें बांटने वाला नहीं होता, कुछ अपना एक उनको एंजॉयमेंट एक अच्छा एक एज अ फ्रेंड अगर बात करते तो शायद कोई नहीं होता। वो सिर्फ इस हेल्पलाइन बात करके अपना मेंटल स्ट्रेस भी रिलीज करते हैं, अपने बारे में शेयर करते हैं चीजें, गाना गाते हैं, सुझाव देते हैं क्या क्या होना चाहिए, यूथ के साथ में किस तरह से होना चाहिए। अगर हम हेल्पेज इंडिया की बात करते हैं, हेल्पेज इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है 1800-233-1253। इस पर कोई भी व्यक्ति यदि संपर्क करना चाहे मदद के लिए तो कॉल कर सकते हैं। तो हेल्पेज इंडिया वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरजनरेशन बॉन्डिंग की समन्वय कैसे बिठाएं वरिष्ठ नागरिक और यूथ के बीच में, उसके लिए विशेष काम कर रहा है। और उस विशेष काम के लिए हम लोग हेल्प यूनाइट जनरेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसमें यूथ बच्चे जो हैं उनको हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के साथ में आप बैठें, जस्ट एक कप ऑफ टी उनके साथ पिए, उनके साथ बात करें, गप्पे मारें, गाना गाएं, गेम खेलें, उनके अनुभव आपस में शेयर करें, उनसे कुछ गाइडेंस ले, कुछ भी करें, लेकिन उनके साथ एक समय व्यतीत करें। जब बच्चे या मिडिल एज ग्रुप उनके साथ समय व्यतीत करते मतलब हमें लगता है उनकी जरूरत है हमें, उनकी समस्या उनको पता ही नहीं होती, चलने में, बोलने में, देखने में कितनी है, और महसूस करने में छोटी छोटी बातों में घर परिवार पड़ोसी उनको किस प्रकार बोल जाते हैं, बुरा लगता है, किसी से बोल नहीं पाते, तो ऐसे बहुत सारी तकलीफें हैं जो वो अपनी बता पाते हैं। तो यूथ अगर ऐसे बैठे कि उनके पास में जेंजीज हैं, अगर इनके साथ स्पेंड करें तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जेंजीज की अपनी प्रायोरिटी होती है, लेकिन सीनियर सिटीजन को लगता है हम टाइम स्पेंड करें उनके साथ में, अच्छा समय व्यतीत करें। तो ये दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाने के लिए हम विशेष प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम एल्डरली और सीनियर सिटीजन यूथ मिडिल एज ग्रुप के साथ में कॉम्पिटिशन, उनके साथ कोई एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, डांस है, ड्रामा है, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें उनको आपस में मिलकर के उनकी एक टीम बने और वो एक टीम परफॉर्मेंस करे। मेंटेनेंस एक्ट है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना है, जो माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम है 2007। इस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशान हो और उनके बच्चे यदि केयर नहीं कर रहे, उनको खाना पीना भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो वो जो भी संबंधित STM कार्यालय उनके क्षेत्र में है वहां पर जाकर इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और ये 90 दिन के अंदर उनका निराकरण करा जाता है। और ये बड़ा ही सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है और इसको प्रायोरिटी बेसिस पे किया भी जाता है, ताकि उनको समय पर मदद मिल पाए। और इसमें जो राशि तय है वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है।
0: आजकल डिजिटल अब्यूज भी वरिष्ठ नागरिकों के साथ में होने लगा है, तो उससे उनको बचाने के लिए किस तरह से आप उन्हें अवेयर करते हैं?
1: हेल्पेज इंडिया ने

0: बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए। पहले हमने डिजिटल लिटरेसी सिखाया, तो सबसे पहले तो उनको हम सिखाते हैं कि आप मोबाइल कैसे चलाएं, क्या नहीं करना है खास करके मोबाइल में, ताकि आपको नुकसान, और उसको हम बहुत स्लो और बहुत इजी हमने गाइड बनाया है कि कैसे उनको डिजिटल लिटरेसी सिखाएं। दूसरा हमने जो बनाया उनका इसके साथ में कि साइबर से कैसे बचाना है, तो हम इनकी वर्कशॉप करते हैं। हम 40 से 45 लोगों का एक ग्रुप रखते हैं सीनियर सिटीजन का, उन्हीं के प्रीमाइस में, यदि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में हॉल है, हम वहीं पर जाकर के प्रोग्राम करते हैं। हमारे टीम मेंबर जो हेल्पेज इंडिया के, वो डिजिटली साइबर सिक्योरिटी पूरा 2 घंटे का सेशन होता है, बहुत अच्छा सेशन होता है। हर सेशन में निकल के आता है कि कम से कम 2 से 4 लोग ऐसे जो इसका शिकार हो चुके होते हैं, तो ऐसे आगे ना हो उसके लिए हमको उनको कैसे प्रिवेंट करें उसको हम उनको जानकारी देते हैं। कहीं भी यदि किसी को जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं हम वर्कशॉप करें, तो आप वेबसाइट पे हेल्पेज इंडिया का नंबर है उसमें जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा नंबर भी ले सकते हैं 9997301230। इस नंबर पे कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र में आकर के प्रिवेंशन के लिए वर्कशॉप कर सकें। 15 जून को कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं हेल्पेज इंडिया। इस बार का जो हमने विषय रखा है इसमें, वो है ग्रामीण वरिष्ठ नागरिक एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। शासकीय होम्योपैथी कॉलेज है जो कि खुशीलाल हॉस्पिटल के पहले है, वहाँ के सभागृह में कार्यक्रम है सुबह 10 बजे से। तो जो भी वरिष्ठ नागरिक, मिडिल एज ग्रुप या बच्चे आना चाहें, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं। उन लोगों को बुला रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं और एल्डरली पर काम कर रहे हैं। गौतम नांदी जी सर है, वाल्मी आपने सुना होगा, वहाँ के डायरेक्टर मैडम है। सरिता बाला ओम प्रजापति मैडम है जो उसमें एक स्पीकर रहेंगी। आईसर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, वो अपना वक्तव्य देंगे इसमें। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे एसएस सक्सेना सर, होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल सर रहेंगे। और हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ के जो एल्डर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हमने पुनासा से भोपाल बुलाए।
1: आपने इतने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छे से जानकारी दी, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जो बच्चे है, मिडिल एज ग्रुप है, पेरेंट्स, दादा दादी, वो जो ब्लेसिंग्स हैं दे सकते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। करोड़पति बन जाए, सब कुछ हो जाए, पर वो चीज आप खरीद नहीं सकते। उनके प्रति अपना एक लगाव रखें, और आप थोड़ा सा प्यार दोगे उनको, वो 10 गुना प्यार आपको देते हैं। बहुत अच्छा फील करेंगे, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहेंगे। आपके दादा दादी, नाना नानी बहुत अच्छे आपके दोस्त बन सकते हैं। अपने पड़ोस में, अपने घर के आगे पीछे मिलने वाले, उनको आप लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, देख के समझने की कोशिश करें कि क्या वो कहीं दुर्व्यवहार का शिकार तो नहीं है। तो अगर आपको जहाँ भी शक होता है, तो कम से कम आप संबंधित क्षेत्र के थानों में या किसी संस्थाओं को, हेल्पेज इंडिया, कहीं भी आप इन्फॉर्म करें। कोशिश तो करें कि उनके साथ में कहीं दुर्व्यवहार ना हो।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थी हेल्पेज इंडिया की प्रदेश प्रमुख सुश्री संस्कृति खरे, बता रही थी कि बुजुर्गों को दुर्व्यवहार से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर्स हैं 14567 1800 180 1253, इन्हें आप ध्यान रखें।

0: मेरा नाम है वसीम खान और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
1: मेरा नाम है नगीन तनवीर और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
2: मैं प्रहलाद सिंह टिपानिया।
3: नमस्कार भोपाल के श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या खरे।
4: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, विरासत संरक्षण में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं, इसकी जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं संयुक्त संचालक संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय और निदेशक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, शोध संस्थान डॉक्टर मनीषा शर्मा। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में।
5: थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को अपने कार्यक्रम में लिया। इसके बारे में यही बताना चाहेंगी कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस दिशा में अभियान और नई पीढ़ी को इससे अवगत कराने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अपने युवा पीढ़ी को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको विरासत के प्रति सेंसिटाइज करने के लिए, उन्मुखीकरण करने के लिए तो ऐसे पाठ्यक्रम चलाए हैं जो एक इन हाउस है। मध्य प्रदेश के विभाग संरक्षित मॉन्यूमेंट संग्रहालय मूर्तियों में उनके संबंध में उनको कर्मचारियों को और सिक्योरिटी गार्ड्स को सेंसिटाइज किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हमारे मॉन्यूमेंट्स में खास तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है उससे इनको नुकसान ना हो। मतलब इसमें यदि मैं कहूँ कि झाड़ू लगाया जाएगा तो वो भी अलग तरह से लगाया जाएगा, यदि गीले कपड़े से सफाई होगी तो उसमें भी कुछ नियम कायदे होंगे। विरासत अपने आप में बिल्कुल एक अलग विशिष्ट क्षेत्र है, तो हमारे जितने भी कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर क्लीनिंग में हाउसकीपिंग स्टाफ वो सब ट्रेंड होगा, एक उनका रहेगा और दूसरा रहेगा हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसको भी इसमें आगे करियर बनाना है या इसके लिए इंटर्नशिप करना है। सो वाकणकर शोध संस्थान का बेसिक पर्पस ही यही है कि हमारी विरासत और आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, स्टाफ को सहयोग दिया जाए और उनको शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो उनके लिए एक एडवांस कोर्स होगा, जल्दी ही हम इसका सिलेबस जारी करेंगे और आगे योजना ये है कि हम उच्च शिक्षा विभाग के साथ टाई अप करें।
4: मैम, ये कितने समय का रहेगा कोर्स और किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं?
5: हाँ, इसको हम अपनी वेबसाइट पे करेंगे, संभावना है कि अगस्त माह में हम ये शुरू करेंगे और ये 60 घंटे का रहेगा। अवधि इसकी 3 महीने के अंदर 60 घंटे मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे जल्दी भी हो सकता है और ये 80% प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि फिजिकल उपस्थिति उन मॉन्यूमेंट्स पे या संग्रहालयों में या मूर्तियों में विजिट ज़्यादा कराया जाएगा, उससे संबंधित मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी जिससे ये रोचक हो। ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये बेसिकली एक तरह की अनुभूति परक पाठ्यक्रम है।
4: तो मैम, ये राज्य संग्रहालय या प्रदेश के जो अन्य जो म्यूजियम्स हैं उन पर भी बेस्ड रहेगा?
5: हाँ बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विभाग के अंतर्गत करीब 45 संग्रहालय हैं, विभिन्न श्रेणियों में हैं और करीब 499 मॉन्यूमेंट्स हैं और हजारों की संख्या में आर्टिफैक्ट्स हैं। सो इसमें ये सब शामिल रहेगा, जितनी भी पब्लिक

0: एक्सेस रहती है, जहाँ पर इतिहास को, संस्कृति को जानने की आवश्यकता है, वो सब महत्वपूर्ण एरियाज़ को हम लेंगे। और ऐसे फीचर्स जो रोज़ाना में आम व्यक्ति को, विजिटर को सामने आते हैं कि देखते समय क्या सावधानियां बरतना है, या आपको फ़ोटो खींचते वक्त बहुत सारे डू एंड डोंट्स हैं, सो उस बारे में सेंसिटाइज किया जाएगा।
1: मैम, ये बहुत रोचक और बहुत जानकारी परक पाठ्यक्रम है। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको।
0: थैंक यू। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रचार प्रसार से हमें सहयोग मिलेगा, हमारे उच्च शिक्षा और सारे हितधारक जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें रुचि लेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम इस पाठ्यक्रम को जल्दी आरंभ करेंगे और वेबसाइट पर इसे पब्लिश करेंगे। थैंक यू।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना नए पाठ्यक्रमों के बारे में, जो कि विरासत संरक्षण में युवाओं को एक रोजगार का अवसर भी प्रदान करेंगे। हमारे साथ में थी डॉक्टर

श्रोताओं, अभी आपने सुना नए पाठ्यक्रमों के बारे में जो कि विरासत संरक्षण में युवाओं को एक रोजगार का अवसर भी प्रदान करेंगे। हमारे साथ में थी डॉक्टर मनीषा शर्मा, संयुक्त संचालक संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय और निदेशक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर शोध संस्थान।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और जारी है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, जीवन शैली से जुड़े विकारों में योग से कैसे प्रबंधन हो सकता है, आज हमें बता रहे हैं श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, योग प्रशिक्षक मध्य प्रदेश योग आयोग। आप इन्हें ज़रूर सीखें और समझें और करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें।
1: मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, योग प्रशिक्षक मध्य प्रदेश योग आयोग।
0: बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे सभी सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं।
1: आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी श्रोतागणों का मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश योग आयोग की ओर से। आज के समय हम देख रहे हैं जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स जाते हैं या योग केंद्रों पर आते हैं, तो 90% पेशेंट ऐसे होते हैं या साधक कैसे होते हैं जो लाइफस्टाइल जनित बीमारियों से ग्रसित होते हैं। आज के समय में मुख्य रूप से हाइपरटेंशन, जोड़ों का दर्द, पाचन तंत्र संबंधी रोग जैसे गैस्ट्रिक हो जाना, एसिडिटी हो जाना, भूख नहीं लगना, अनिद्रा के साथ साथ अवसाद, चिंता, ओवरथिंकिंग, ये कुछ ऐसी व्याधियाँ हैं जो लाइफस्टाइल से जनित बीमारियाँ हैं। प्राचीन काल में हम देखते थे सनातन परंपरा में कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी लोग अपने बिस्तर को छोड़ देते थे और अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर अपने कार्यों में लग जाते थे, पर आज ऐसा नहीं है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम देख रहे हैं लेट नाइट लोग काम करते हैं, आईटी सेक्टर के लोगों को विदेश की घड़ी के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना होता है, तो देर रात तक वो काम करते हैं, देर रात तक लोग होटलों में खाना खाते हैं, घूमते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब दिनचर्या बिगड़ती है तो हमारे सोने का टाइम, भोजन का टाइम, उठने का टाइम, ये सारे गड़बड़ा जाते हैं। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और वह क्लॉक भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है। सात्विक आहार, अच्छी सोच, नियमित दिनचर्या और थोड़ा सा व्यायाम, यदि इन चीज़ों को हम अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में समाहित करते हैं। ग्रंथों में योग की परिभाषा बताई है, अथ योग अनुशासनम, अर्थात अनुशासन ही योग है। हमें अपने जीवन की दिनचर्या की शुरुआत जो है वो अनुशासन से ही करना होती है। कुल मिला के यदि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित

0: कर लें तो बहुत सारी लाइफ स्टाइल जनित जो बीमारियां हैं उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं।
1: डायबिटीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आसन हैं जो कि साधक को करने चाहिए?
0: आज के समय में डायबिटीज एक रोग ऐसा है, ये महामारी का रूप ले चुका है। टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज होती है। यदि हम योग की बात करते हैं तो आहार का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, पर योग में जैसे हम अर्धमस्तेंद्र आसन होता है, डायबिटीज के प्रबंधन में बहुत अधिक सहायक है। थोड़ा कठिन होता है, उसका सब्स्टिट्यूट जो है वक्रासन होता है, जो सरल होता है, सभी लोग उसको कर सकते हैं। खाना खाने के बाद यदि हम वज्रासन को करते हैं तो वो भी मधुमेह के निवारण में सहायक होता है। फिर मंडूक आसन हम करते हैं, आगे झुक के मंडूक आसन किया जाता है, मंडूक आसन भी आपकी डायबिटीज में बहुत अधिक लाभदायी होता है। खड़े होकर जब हम करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कटिचक्र आसन भी उसके प्रबंधन में सहायक है, क्योंकि बॉडी को हम दाई ओर और बाई ओर ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पैंक्रियाज और लीवर पे अतिरिक्त दबाव बनता है जिससे वह सक्रिय होता है। तो भुजंगासन का अभ्यास यदि हम करें तो उससे भी हमारे पेट पर दबाव बनता है, लीवर पैंक्रियाज पर, तो उस वो भी हमारे इसके प्रबंधन में सहायक है। इसके साथ साथ कपालभाति प्राणायाम जो होता है वो भी मधुमेह के नियंत्रण में काफी सहायक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आपके डायबिटीज पेशेंट हैं, तनाव जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तनाव जो है वो समस्त प्रकार की बीमारियों में उत्प्रेरक का कार्य करता है।
1: सर, जैसे आपने तनाव की बात की, तनाव से जुड़ा अनिद्रा और डिप्रेशन है, तो इनमें कौन कौन से जो आसन है वो किए जा सकते हैं?
0: ये जो बीमारियां हैं ये हमारी लाइफ स्टाइल से ही जनित बीमारियां हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि हम नियमित रूप से योग क्रियाओं का अभ्यास करें, अपना खान पान ठीक रखें, और जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था ना कि थोड़ा कमाइए पर सुखी रहिए, तो सुखी रहने का यही आधार है कि अपनी आवश्यकताओं को कम रखें, अपनी अपेक्षाओं को कम रखें और दायित्व तो अधिक से अधिक लेना शुरू करें।
1: ऐसा हाइपरटेंशन या जो हाई बीपी रहता है बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, तो ऐसे में क्या आसन करने से उनको लाभ हो सकता है?
0: बहुत सारे योगिक व्यायाम होते हैं, आसन हैं, आपका सूर्य नमस्कार है, ये उच्च रक्तचाप के रोगियों को हाइपरटेंशन में अवॉइड किया जाता है कि ना करें। मूल कारण ये है कि यदि हम फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार फास्ट किया जाता है, कुछ आसन भी होते हैं जो फास्ट होते हैं, या आगे झुकना है बॉडी को, पीछे झुकाना है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी होता है कि जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो बीपी और शूट कर जाता है, आगे बढ़ता है। इसमें पर्सन टू पर्सन हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पास अभ्यासी आया है उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसकी हार्ट की स्थिति क्या है, बीपी कितना जा रहा है, उसके आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है कि कौन से आसन हम करेंगे, कौन से आसन नहीं करेंगे। सामान्य रूप से तेज गति से जो आसन किए जाते हैं उनको हाई बीपी के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, और शिथिलीकरण के जो आसन होते हैं जैसे मकर आसन है, सब आसन है, योग निद्रा है, हल्का प्राणायाम, शीतली प्राणायाम वो कर ले, अनुलोम विलोम कर ले बिना कुंभक के, इनका यदि वो अभ्यास करता है और ध्यान का अभ्यास करता है तो कुछ हद तक इसको प्रबंधन इसका किया जा सकता है।
1: लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां थी उनके बारे में आज आपने बताया हमारे सभी सुनने वालों को, और इनका प्रबंधन योग से, प्राणायाम से किस तरह से किया जाए ये भी बताया। बहुत ही सरल शब्दों में आपने इतना समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, आपका भी और भोपाल आकाशवाणी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते हैं। 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरा विश्व योगमय है, तो आज हम संकल्प लें कि हम भी 21 जून के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उसके बाद अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन योग को करेंगे। भोपालवासियों को मेरा धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थे योग प्रशिक्षक श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव। हम आशा करते हैं कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपना जीवन स्वस्थ बनाएंगे। श्रोताओं, इसी के साथ में आज का नमस्कार भोपाल होता है समाप्त। आगे दीजिए जूही राव को नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। ये आकाशवाणी भोपाल है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे।

0: दो।
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल

0: होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में

0: इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

श्रोताओं, एक नए सवेरे की दस्तक पर जिंदगी मुस्कुरा उठी है। पूरब के आसमान में खिला एक नया दिन हम सब का स्वागत कर रहा है। ये नया दिन मुबारक हो, ये सुरमई सवेरा मुबारक हो। नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, सुबह केवल एक नए दिन का आना नहीं है, सुबह प्रकृति के सबसे सुंदर संदेश का नाम है। जब अंधेरा धीरे धीरे उल्टे पैरों से लौटने लगता है और उजाला जीवन के दरवाजे पर दस्तक देता है, तब सुबह का संदेश सुनाई देता है। क्या कहती है सुबह? सुबह कहती है कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो खत्म जरूर होती है। थकान कितनी भी गहरी क्यों ना हो, ऊर्जा फिर लौट आती है। सुबह कहती है कि हार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक नई कोशिश हमेशा संभव है। सुबह किसी शोर में नहीं बोलती, वो मध्यम बहती हवा के कानों में आहिस्ता से कहती है कि जीवन ठहरने का नहीं, बहने का नाम है। दोस्तों, हर सुबह एक कोरा कैनवस लेकर आती है, जिसमें अपने विचारों, प्रयासों और मेहनत से हम अपने सपनों के रंग भर सकते हैं। सुबह कहती है कि हम सूरज की तरह रोशन हों, नदी की तरह गतिमान रहें, पेड़ों की तरह धीरज रखें और फूलों की तरह सुगंध बांटते रहें। सुबह यही कहती है कि जीवन हर दिन हमें नया अवसर देता है। सवाल यही है कि क्या सुबह का कहा हम सुन पाते हैं? सोचिए इस पर।

श्रोताओं, सुबह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हर दिन एक नया आरंभ करती है, इसलिए मनुष्य भी हर दिन खुद को, अपने जीवन को नया कर सकता है। तो चलिए, बीती रात के अंधेरों को पीछे छोड़ें, आशा के दीप जलाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। और इस आशा और विश्वास के लिए जरूरी होता है एक विचार। और मजे की बात यह है कि ये सारी बातें हमने बार बार पढ़ी सुनी हैं, लेकिन इन्हें दोहराना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज की सुबह आपसे साझा करती हूं एक बहुमूल्य विचार। कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। जी हां, इसका अर्थ हुआ कि क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा यानी किसी को माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतरिक शक्ति का परिचायक है। प्रतिशोध लेना बहुत सरल है, लेकिन क्षमा करना साहस, धैर्य और आत्मबल की बात है, आंतरिक उदारता की बात है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके भीतर क्षमा का गुण है तो आप भीतर से हमेशा शांत बने रहेंगे और जीवन में आपके आसपास बहुत अच्छा वातावरण बना रहेगा और जीवन की इसी सौम्य जमीन पर मुस्कुराहटों के, गुनगुनाहटों के फूल खिलते हैं।

तो श्रोताओं, हमने बात की क्षमा की। सच तो यह है कि कोई भी गुण बार बार के अभ्यास से ही हमारे भीतर उतरता है। तो आज दिन भर कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास कोई आपकी खिलाफत करे, आपकी बात ना माने, आपके मन की बात ना हो, तो उसे माफ कर दें। ये गुण बहुमूल्य है। वैसे बार बार के प्रयास से कोई भी बात आपकी आदत बन जाती है, और आदतें जीवन को बदल देती हैं। जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। हमारी आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, और यही अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए अपनी आदतों के प्रति हमें सचेत भी रहना चाहिए, बहुत अधिक, और कुछ सकारात्मक आदतें अपने भीतर जोड़ते रहना चाहिए। तो सुरमई सवेरा का जो ये सफ़र है, इस पड़ाव पर आपसे बात कर रहा है आदतें जो जीवन बदल देती हैं। दोस्तों, जीवन को बदलने वाली एक ऐसी ही आदत है प्रतिदिन कुछ पढ़ने की आदत। सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र ने भी कहा है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो सच है, पुस्तकें आपके ज्ञान का आधार होती हैं, और आपके ज्ञान को ही नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि वो हमारे विचारों को एक नया विस्तार भी देती हैं। एक अच्छा लेख, एक प्रेरक प्रसंग या किसी महान व्यक्तित्व का जीवन वृत्तांत हमारे भीतर एक नई दृष्टि पैदा करता है। रोजाना अगर 10-15 मिनट भी हम पढ़ने की आदत डाल लें, तो हमारा व्यक्तित्व समृद्ध होता जाता है। क्योंकि पुस्तकें केवल खाली समय को नहीं भरती, वो हमारे जीवन को भी भर भर देती हैं, सकारात्मकता से, खुशियों से और संगीत से।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। एक बार फिर आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, हमने बात की पढ़ने की आदत की, तो रोजाना 10-15 मिनट ही सही, आप जरूर कुछ अच्छा पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही बढ़ा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी इस सलाह पर आप जरूर अमल करेंगे। वैसे आज सुबह सवेरे मैंने कुछ अच्छा पढ़ा जो आपसे साझा करना

चाहती हूँ। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने एक लघु कथा पढ़ी जिसका शीर्षक था छाप। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे। राजा किसी न किसी बहाने उन्हें कुछ नया, कुछ अच्छा सिखाता रहता था। तीनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने एक दिन तीनों को बुलाया और कहा, अब तुम तीनों की शिक्षा पूरी हो चुकी है, समय है परीक्षा की। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी पहचान बनी रहे। पहला पुत्र गया और उसने बहुत विशाल भवन बनवाया। दूसरे पुत्र ने भी बहुत सोचा और फिर सोने का भंडार भर दिया।

समय है परीक्षा की। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी पहचान बनी रहे। पहला पुत्र गया और उसने बहुत विशाल भवन बनवाया। दूसरे पुत्र ने भी बहुत सोचा और फिर सोने का भंडार भर दिया। तीसरा राजकुमार गया और एक सूखे हुए कुएं की मरम्मत में जुट गया। काम पूरा कर तीनों पुत्र लौटे और राजा को अपना अपना किया काम बताया। राजा ने तीसरे पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा कि पुत्र, इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो, क्योंकि पत्थरों पर लिखा नाम समय मिटा देता है, धन वैभव भी समाप्त हो जाता है, लेकिन लोगों के जीवन में किया गया उपकार अमिट रहता है। बरसों बीते, भवन खंडहर हो गया, सोना खर्च हो गया, लेकिन उस कुएं से लोग अब भी पानी भर रहे थे। तो सच है दोस्तों, जीवन की सुगंध उपलब्धियों से नहीं, उपयोगिता से फैलती है।

तो श्रोताओं, उपकार की सुगंध की हमने बात की, वैसे प्रकृति का कण कण ऐसे ही उपकार की कहानी कहता है। जब पेड़ों के मौन उपकार को हम देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। धूप अपने तेवर दिखाती है तो पेड़ बिना कुछ कहे छाया का आंचल फैला देता है। पंछियों को घर चाहिए तो उनकी शाखाएं खुल जाती हैं। बादलों को बुलाना हो तो उनकी चोटियां आकाश से संवाद करने लगती हैं। थकी हारी जिंदगी जब उनके आश्रय में आती है तो पेड़ पंखा झलते हैं, हवा करते हैं। कुल मिलाकर पेड़ मौन तपस्वियों की तरह हैं, जो कुछ बोलते नहीं, मांगते नहीं, फिर भी जीवन को समृद्ध करते रहते हैं। श्रोताओं, ये सच है कि पेड़ धरती के आंचल पर हरी स्याही से लिखी सार्थक सुंदर कविता हैं। पेड़ धरती की धड़कने हैं, ऋतुओं का संगीत हैं और जीवन के सबसे उदार दाता हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन मौन तपस्वियों का, पेड़ों का उपकार जितना बड़ा है, उनका प्रदर्शन उतना ही छोटा है। वो कहते हैं कि महानता शोर में नहीं, निस्वार्थ सेवा में होती है। विकास की अंधी दौड़ में पेड़ों की संख्या घट रही है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम ये संकल्प लें कि अपने जीवन में कुछ पेड़ ज़रूर लगाएंगे, उन्हें पालेंगे, बड़ा करेंगे। समय की यही पुकार है कि हम पेड़ों को प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा माने, तभी बात बनेगी। तो इस मॉनसून वृक्षारोपण की तैयारी कीजिए और अपने साथ कुछ और लोगों को भी जोड़िए। याद रखिए, आप सिर्फ पेड़ नहीं लगाएंगे, आप भविष्य बोएंगे, समृद्धि बोएंगे, खुशहाली लगाएंगे।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हमारी बातों और गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। इसमें साइबर सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मुरैना में पातालकोट एक्सप्रेस से कुचलकर 4 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। ये यात्री खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की अफवाह के कारण उससे उतरकर पटरी पर आ गए थे, तभी दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम में खेले गए ग्रुप ए के मैच में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस घंटे की खास खबरों के बाद एक बार फिर सुरमई सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमने बात की पेड़ों की, वो पेड़ जो हमें हवा देते हैं, प्राणवायु देते हैं। वैसे 15 जून की तारीख को वर्ल्ड विंड डे यानी वैश्विक पवन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो हवा जो खेतों में लहलाती फसलों के साथ गीत गाती है, पर्वत की चोटियों पर अदृश्य वीणा के तार छेड़ देती है और समुद्र की लहरों को गति देकर जीवन का संगीत रचती है। उसी हवा से उत्पन्न ऊर्जा के प्रति यानी पवन ऊर्जा के प्रति जागरूकता

बढ़ाने का, उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने का और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसके महत्व को रेखांकित करने का ये दिन है। सन 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रयास यही कि पवन ऊर्जा की संभावनाओं और इसके लाभ के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हवा केवल प्रकृति का उपहार नहीं बल्कि भविष्य की स्वच्छ और सतत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पवन ऊर्जा उन अक्षय ऊर्जा स्रोतों में से एक है जो कभी समाप्त नहीं होते। आज विश्व के अनेक देशों में विशाल पवन चक्कियां बिजली उत्पादन का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई हैं। भारत भी इसमें शामिल है। दोस्तों, आज जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही दुनिया के लिए ये एक विकल्प बनकर उभरी है। तो याद रखिए कि पवन केवल बहती हुई हवा नहीं है बल्कि ये स्वस्थ हरी भरी धरती की आशा है, सुंदर भविष्य की आशा है।

श्रोताओं, भारतीय संस्कृति और हिंदू पंचांग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दिन भी आज है। जी हाँ, आज 15 जून को सोमवती अमावस्या भी है, एक ऐसी तिथि जो साल में एक या दो बार ही आती है। हिंदू पंचांग में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या आत्मचिंतन, पितृस्मरण, दान, तप और साधना की तिथि मानी जाती है, और ये अमावस्या जब सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोम अर्थात चंद्रमा और सोमवार का संबंध भगवान शिव से माना जाता है, इसलिए भी ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य, पितरों का तर्पण तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना और सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा भी करती हैं। तो इस तरह हमारी परंपरा का ये जो हिस्सा है, ये वृक्षों के संरक्षण, अपने पूर्वजों के सम्मान, दान, संयम और शिव आराधना से जुड़ा हुआ है।

और श्रोताओं, चलते चलते हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कलाकार को जिनकी आवाज, जिनकी मुस्कान, जिनका अभिनय और जिनका सौंदर्य आज भी उनके चाहने वालों के मन में बसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री सुरैया की। 15 जून उनका जन्मदिन है, जो हमें भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे युग में ले जाता है जब अभिनय और गायन का अद्भुत संगम होते थे हमारे कलाकार। सुरैया उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थीं जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता और गायकी दोनों से ही दर्शकों का मन जीता। वो हिंदी सिनेमा की मेलोडी क्वीन कही जाती थीं। एक समय ऐसा था जब उनके नाम से ही सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी और उनके गीत रेडियो पर श्रोताओं की पहली पसंद हुआ करते थे। सन 1936 में उन्होंने बतौर बाल कलाकार अपनी कला यात्रा आरंभ की और 40 से 50 के दशक में वो अपने शिखर पर थीं, छाई हुई थीं। उनकी प्रमुख फिल्में थीं अनमोल घड़ी, अफसर, दास्तान, दिल्लगी, प्यार की जीत, शोहरत, मिर्जा गालिब, शमा आदि। विशेष बात ये कि उन्होंने संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, बहुत से गीत उनसे गवाए और आज भी उनके गाए हुए गीत संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए, सुरमई सवेरा कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं सुरैया का गाया ये गीत।

श्रोताओं, सुरों की मधुर छांव और यादों का उजाला लिए सुरमई सवेरा का ये सफर अब यहीं थमता है। चलते चलते आपके लिए यही कामना कि आपके घर आंगन में खुशियों की धूप उतरती रहे, विश्वास के फूल खिलते रहें और इसके साथ ही सफलता की रोशन किरणें आपके हिस्से जरूर आएं। आज का दिन शुभ हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, फिर मिलेंगे।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए कुछ बुंदेली लोकगीत। कलाकार हैं अनरथ लाल बैरसिया।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, पेश है उर्दू प्रोग्राम आईना।

0: दोस्तों अभी आप जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में खूबसूरत गजल समाप्त फरमा रहे थे। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक बार फिर तख्लीक की दुनिया का रुख करते हैं, जहां हम सुनेंगे विजय तिवारी साहब को।
1: गजल का मतलब पेश खिदमत है। इसीलिए तो जमाने को हम दीवाने लगे, इसीलिए तो जमाने को हम दीवाने लगे, किसी ने पूछा नहीं और हम बताने लगे। शेर ये कि वो बेवफा है ज़माने से सुन रहे थे मगर, वो बेवफा है ज़माने से सुन रहे थे मगर, हमें ये बात समझने में क्यों ज़माने लगे, हमें ये बात समझने में क्यों ज़माने लगे। ये शेर भी देखिए कि हर एक बाप की ख्वाहिश है आखिरी ख्वाहिश, हर एक बाप की ख्वाहिश है आखिरी ख्वाहिश, मेरी हयात में बेटा कमाने खाने लगे, मेरी हयात में बेटा कमाने खाने लगे। और शेर ये कि गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे। एक गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि इस कदर भी ना आजमाएं उसे, इस कदर भी ना आजमाएं उसे, बोझ लगने लगे वफाएं उसे, बोझ लगने लगे वफाएं उसे, मोल मिलता नहीं सुकून वरना, मोल मिलता नहीं सुकून वरना, आज जाएं खरीद लाएं उसे, आज जाएं खरीद लाएं उसे, दिल मकासा पड़ा है मुद्दत से, दिल मकासा पड़ा है मुद्दत से, कोई आए तो घर बनाए उसे, कोई आए तो घर बनाए उसे। और शेर ये कि कल तलक दाएं बाएं थे उसके, कल तलक दाएं बाएं थे उसके, कर रहे हैं जो दाएं बाएं उसे, कर रहे हैं जो दाएं बाएं उसे। शेर आखिर ये कि इश्क मजहब है मरने वाले का, इश्क मजहब है मरने वाले का, कहिए दफनाएं या जलाएं उसे, कहिए दफनाएं या जलाएं उसे। और एक गज़ल का मतलब आपकी समातों के नाम, वक्त के नाम से क्यों आदमी घबराता है, वक्त के नाम से क्यों आदमी घबराता है, वक्त आता है गुजरता है गुजर जाता है, वक्त आता है गुजरता है गुजर जाता है, शायरी क्या है खुदा जाने मगर लग

थे, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। और बतौर खास ये शेर भी सुनिए कि वही

में हम थे, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। मक्ता और आपकी जहमत तमाम। विजय हमको यूसुफ भी कहती थी दुनिया, विजय हमको यू

0: थे। बहुत शुक्रिया।
1: सामईन इकराम, अभी आप विजय तिवारी साहब के कलाम से महसूस हो रहे थे। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अपने गिरा कद्र तासुरात और तजावीज हमें मकातीब के जरिए जरूर रसाल करें। हमारा पता नोट फरमाइए। उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। उर्दू प्रोग्राम आईना को हर सोमवार सुबह 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी है।
2: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। उमस और गर्मी के बीच पूरे रतलाम जिले में मानसून का इंतजार है। किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं और बोवनी के लिए बारिश की राह देख रहे हैं। गर्मी की दोपहरों और धमाचौकड़ी करते बच्चों का शोर स्कूलों में दोबारा जाने के उल्लास में परिवर्तित हो रहा है। वहीं स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और बच्चों के लिए कक्षाएं भी तैयार हो रही हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हिंदू समाज के लोगों द्वारा आज ही धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ की जाएगी। एक महीने से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, नियम, हवन आदि की पूर्णाहुति भी होगी। समान नागरिक संहिता के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की जा रही है कि समान नागरिक संहिता के लिए अपने परामर्श और सुझाव वेबसाइट पर प्रदान करें। आयुष मंत्रालय के द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में

0: विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रतलाम से प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगर पालिका परिसर रतलाम में 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। पूरे जिले में आलोट, जावरा, ताल, बड़ावदा, सैलाना, धामनोद, नामली, पिपलोदा आदि क्षेत्रों में जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जन प्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा उनका मौके पर ही निराकरण भी किया जा रहा है। जिले में रतलाम शहर समेत अधिकांश नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन हो चुका है, जबकि कुछ बचे हुए शिविरों का आयोजन 17 जून तक किया जाएगा। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनसेवा और जन कल्याण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उनका लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सीधे उनके घर पहुंचकर उपलब्ध कराया जाए। बीते दिनों कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संशोधन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय सीमा में गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और व्यवस्थित बनाने पर विशेष काम किया जाएगा। बीते दिनों आत्मा योजना के अंतर्गत विकासखंड पिपलोदा की ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती, ई टोकन प्रणाली एवं नरवाई प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र कालूहेड़ा के वैज्ञानिकों ने खेत बचाओ अभियान, मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग के संबंध में जानकारी दी। पिछले दिनों जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिले में 1395 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार एवं प्रबंधन किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 100% गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 616 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया गया। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पिछले दिनों जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान शिशु के जन्म के 6 माह तक और 6 माह के पश्चात पोषण संबंधी महत्व आदि पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बीते दिनों जावरा तहसील के ग्राम बीमाखेड़ी में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग तथा खाद्य औषधि प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रदेश में वर्ष 2028 में होने वाले उज्जैन संघस्थ महामेले के आयोजन की तैयारियां भी चल रही हैं। पिछले दिनों कलेक्टर मीशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने जिले की विभिन्न सीमा क्षेत्रों और उज्जैन से आने जाने वाले रास्तों पर संघस्थ के दौरान आने वाले ट्रैफिक के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बैठकें की। रतलाम जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का था और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी भोपाल के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

श्रोताओं, बजती हुई ये धुन आपका स्वागत कर रही है उस कार्यक्रम में जिसे आप कहते हैं गीत सागर। मधुर धुनों और सार्थक बातों के इस सफर में आज आपकी हम सफर हूं मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बरगद का वृक्ष देखकर याद आते हैं बूढ़े दादा, कई हाथों से खुद को थामे पुकारते कि कुछ पल ठहरो, तनिक सुस्ता लो, घनी छांव है मेरी। बाबा जैसा है पीपल विशाल,

अलौकिक, जो पतझड़ में भी अपने कुछ पत्ते बचा लेता है अपने बच्चों के लिए। जी हाँ श्रोताओं, बुजुर्ग ऐसे ही तो होते हैं ना, बरगद की छाया से जिसके तले पीढ़ियां विश्राम पाती हैं। बुजुर्ग आंगन में तुलसी की तरह होते हैं, जो घर भर में कल्याण और मंगल बिखेरते हैं। वो एक शांत नदी तट की तरह होते हैं, जहां जीवन की थकी हुई नावों को ठहरने का भरोसा मिलता है। श्रोताओं, बुजुर्गों के चेहरे पर झलकती झुर्रियां सिर्फ उम्र के बीत जाने की निशानी नहीं है, ये झुर्रियां जीवन इतिहास की लिपिबद्ध कहानी है। इसमें जिंदगी का जोड़ घटाव है, दुख दर्द का पड़ाव है। माता पिता के दो मजबूत हाथ छेनी हथौड़ी की तरह दिन रात तराशते रहते हैं सपने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और इसके लिए वो अक्सर अपनी जरूरतें, अपने सपने भी मुलतवी कर देते हैं और कई बार स्थगित भी। और फिर उनकी देह में जीवन की सांझ उतरती है। इस संध्या छाया में दीपों का उजास हो, बच्चों का साथ हो, चिंता और संघर्ष की कोई बात न हो, ये आह्वान करता है आज का दिन। जी हाँ, आज है 15 जून, जिसे हम मनाते हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में। तो आज गीत सागर कार्यक्रम में इसी विषय पर होगी बात।

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

श्रोताओं, किसी ने कहा है, तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, सफर में काम आएंगी दुआएं साथ रख लेना। सच है कि बुजुर्गों की दुआएं छाया बनकर हमारे साथ चलती हैं, हर बला को टालती हुई, हर मुश्किल को आसान करती हुई। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। लेकिन आज समय की चाल बदली है, जीवन के तेवर बदले हैं, एकल परिवार का चलन बढ़ा है और लगातार हमारे समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आधुनिकता की दौड़ तेज है, इसलिए वो बूढ़े कदम पीछे छूट जाते हैं। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए उसमें एक आत्मीयता भरा कमरा नहीं है। भीड़ बढ़ी है, लेकिन संवाद कम हुआ है। आज अनेक बुजुर्ग अकेलेपन, उपेक्षा, असुरक्षा और अभाव की धूप सह रहे हैं। श्रोताओं, बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण आज बुजुर्गों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में तेजी से उछाल आया है, लेकिन अधिकांश बुजुर्ग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, चाहे बात भोजन पानी की हो, कपड़े की हो या चिकित्सा सुविधा की हो। बुजुर्ग अक्सर उपेक्षा के शिकार होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को दे दिया, उनके लिए बच्चों के पास आज समय ही नहीं है। कितनी आशा और उम्मीद से वो बच्चों को परवरिश देते हैं। उनके जीवन का सारा प्रकाश जिस बच्चे से होता है, वही बच्चा उनकी जिंदगी में अंधकार लिखता है। ये दुख और चिंता का विषय है।

श्रोताओं, बुजुर्गों का एकांत अक्सर कहता है कि बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा छूट गया। ऐसे ही बुजुर्गों की हितरक्षा की बात करता है आज का दिन। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है आज। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुर्व्यवहार और उपेक्षा के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। श्रोताओं, पूरी दुनिया में इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। हमारे देश में भी भारत सरकार और राज्य सरकारें बुजुर्गों की सुरक्षा, पेंशन और स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, अटल पेंशन योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं। वृद्धजनों के लिए विशेष कानूनी अधिकार हैं और मानव अधिकार आयोग भी वृद्धजनों के कल्याण को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जो विषय भावनाओं का था, संवेदनाओं का था, उसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो निस्वार्थ प्रेम जिसकी गुनगुनाहट ने आपके सपनों को संवारा, वही प्रेम कैसे बिसरा दिया गया? कैसे वही माता पिता आज आपके सपनों की राह में बाधा हो गए?

तो श्रोताओं, बुजुर्गों के कल्याण के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि योजनाओं से, कानून से बुजुर्गों का जीवन आसान जरूर हो सकता है, लेकिन योजनाएं साथ नहीं बन सकती हैं, योजनाएं हाथ नहीं बन सकती हैं, वो कांधा नहीं बन सकती जिन पर सर टिकाकर मन बांटा जा सके, बुजुर्गों का एकांत भरा जा सके। इसलिए जरूरी है हर मन में अपने बुजुर्गों के प्रति दायित्व बोध का होना। यूं भी भारत की संस्कृति आभार की संस्कृति रही है, तो लौटिए अपनी संस्कृति की ओर, जो कहती है, हमें छाओं में रखा खुद जलते रहे, हमें छाओं में रखा खुद जलते रहे, हमने देखा है फरिश्ता माँ बाप की परछाई में।

तो श्रोताओं, गीत सागर कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

ये था फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रुचिरा काले का राग विभास में गाया ख्याल। विलंबित ख्याल रूपक ताल में निबद्ध है, बोल हैं हे करुण मंगल, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं प्यारी प्यारी बतियां।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा की। अमेरिका ईरान समझौते से भारतीय शेयर बाजारों में उछाल रहा। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे चरण के अंतिम दिन 13 जून तक प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 182,473 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। एनसीटीई पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण में आवंटित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज है। राज्य आनंद संस्थान द्वारा आज से 19 जून तक 5 दिवसीय ऑनलाइन अल्पविराम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक राज्य आनंद संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट anandsansthanmp.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू किया जाएगा। और तुर्की के अंताल्या में 2026 तीरंदाजी विश्व कप के तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। वहीं रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में भी उनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनें।

रागमाला शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रुचिरा काले का राग विभास में गाया ख्याल।

0: कहीं चिलचिलाती गर्मी तो कहीं बेसब्री से आसमान की ओर ताकती हुई निगाहें, कहीं खूबसूरत सौंधी खुशबू से लबरेज़ ठंडी ठंडी बयारें। यही तो है मौसम, यही तो है ज़िंदगी। चलिए, मौसम को तो ना हम बदल सकते हैं ना आप, बस हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आपके यहाँ भी बादलों की ये जमावट बसे, बादलों की ये जमावट बरसे। फ़िलहाल हम आपकी खूबसूरत बातों और ख़ूबसूरत गीतों के साथ इस माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम, फ़ोन करें, गीत सुनें। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, मध्य प्रदेश प्रसारण ना?
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं। आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: आज हम आपसे

0: बातें करें उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों पुणे का मौसम कैसा है।
1: यहाँ तो सर मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं है, एकदम
0: अच्छा,
1: मैंने सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे,
0: ओहो।
1: एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है अभी। आज तो 14 तारीख हो गई, फिर भी कोई बारिश का पता नहीं है अभी।
0: लगभग हमारे देश के अनेक हिस्सों में धीरे धीरे मानसून दस्तक दे रहा है। कहीं कहीं प्री मानसून के हालात बने हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश हुई है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन पुणे में पानी नहीं पहुंचा है।
1: नहीं अभी
0: जी
1: जरा
0: जी
1: भी नहीं है
0: हाँ
1: अभी।
0: हाँ तो गर्मी भीषण होगी।
1: हाँ जी, गर्मी तो बहुत है, पसीना आते रहता है सर हमेशा। गीली गर्मी पड़ रही है, अभी जून का महीना है। और
0: जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक दो दिन के भीतर ही आपके यहाँ पर भी उम्मीदों की बरसात हो।
1: हाँ जी,
0: जी, बताइए श्रीपाद जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: हाँ जी, हाँ, हमें सुनना है फिल्म हमारी याद आएगी मैं का गाना सुनना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया हुआ है। पूछता हूँ ये क्या किया मैंने।

0: कर्ज ले लिया मैंने।
1: हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते,
1: नमस्ते सर, राधिका बात कर रही हूँ नीमच से। हालांकि
2: कैसे हैं
1: हम गांव में
2: राधिका
1: रहते
2: जी?
1: हैं, पर हम नीमच ही बोलते हैं, के गांव में से भोले आवाज गांव में रहते हैं। सर
2: अच्छा जी, क्या हाल है इन दिनों नीमच के?
1: बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है भयंकर की, पानी का नामो निशान नहीं अभी तक, छीटे छाटे आते हैं, मौसम अंधा, लेकिन उमस होती है बहुत।

0: चलिए, देर सवेर आपके यहाँ पे भी मानसून पहुँच ही जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द पहुँचे, आपको राहत मिले। फ़िलहाल कोई ऐसा गीत बताइए जिससे मौसम आपके यहाँ का बदल जाए।
1: सर गाने मेरे को ना वो सुनना है, गाने का तो मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है और गाने की बीच की लाइन याद है ना,
0: हाँ, बताइए।
1: भीगी भीगी रात में दिल का थामन दाम ले, ये गाने की लाइन है सर। मेरे को ना गाने के बोल भी याद नहीं, मेरे एकदम से फोन लग गया ना मेरा।
0: अच्छा जी,
1: आ जा सनम मधुर चांदनी में हम,
0: अच्छा, आ जा सनम मधुर चांदनी में हम।
1: गाने के बोल याद है सर, बस मूवी का नाम नहीं।
0: आपने फ़ोन किया राधिका जी, इसके लिए हम आपको देते हैं बहुत
1: थैंक यू।
0: बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कारम जी।
1: अरे कमाल हो गए सर जी, ये मान के चलिए सदियों गुजर गए तब कहीं जाके फोन लगा है। और अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सर जी, श्रीमान जी से, भगवान से कि कल फोन लग जाए, नहीं तो समझ लो कि मैं दुबला पड़ जाता हूँ, खाना भी नहीं खाता सर।
0: अच्छा
1: कहते
0: जी।
1: हैं सर जी, अजीज होता है ना हबीब होता है, दूर होता है ना करीब होता है, और अमीर होता है ना गरीब होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और अच्छा दोस्त जो वक्त में साथ दे दे, वही सबसे अच्छा दोस्त होता है श्रीमान जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी आपके इस वक्त को बहुत हसीन बनाना चाहते हैं, आप अपना तारुफ दीजिए।
1: अरे सर जी, अब तो मैं पता भी बता दूंगा, गाने भी सुन लूंगा, तभी तो मजा आएगा। और चूंकि जब फोन लग जाता है बातें मायने रखती हैं, गाना तो एक बहाना होता है सर जी। मैं पता बता दूं अपना,
0: जी।
1: ग्राम कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ सर जी।
0: खान साहब, हमने आपको जान लिया था, लेकिन हमारे बाकी के श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय जानना चाहते थे।
1: अरे सर जी, क्यों नहीं जानेंगे, आप हमारे दिल में बसे हैं और हम आपके दिल में बसे हैं, भाभी जान भी तड़प रही है बेचैन हो रही।
2: नमस्कार भाई साहब,
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी।
2: आप कैसे
0: हम
2: हैं?
0: तो बहुत खैरियत से हैं और चाहते हैं कि आप भी बहुत सुकून से हों।
2: जी भाई साहब, अब
0: जी
2: ये मान के चलिए सर जी, हम दोनों लोग मिलजुल करके अभी अचार रख रहे थे, मैं आम काट रहा था और ये मसाला भूंज रही थी।
0: बहुत
1: दोनों
0: बढ़िया।
1: लोग, जी, श्रीमान जी, दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं और साथ में आपको फोन लगाते रहे, तो फोन तो इन्हीं ने लगाया, मैं तो हार गया आपकी भाभी जान ने।
0: तो ये कितने दिनों बाद फोन लगा है, ये भी बता दें।
1: अरे सर जी, मुझे तो लगता है अब मैंने गिनती तो नहीं गिना, लेकिन महीनों तो होते होंगे सर श्रीमान
0: चलिए,
1: जी।
0: आपकी बेसब्री आपकी आवाज़ से झलक रही है।
1: हाँ सर जी, और गाना सर जी बता दूं, गंगा की सौगंध का ही सुनवा देना सर जी, क्योंकि गाने हमारे कुछ अलग हटके होते हैं, धुआंधार होते हैं और धांसू होते हैं, जिसमें आप लोगों को नाचने के लिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को, आल वर्ल्ड के श्रोताओं को मजबूर कर दे सर जी। हाँ तो गाना वो है सर जी, हम दोनों लोग गुनगुना ले, फिर बता दूंगा, लता और किशोर जी की आवाज में है वो गाना। आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी रे, तो धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी,
2: लंबू तेरी लाली उतर जाएगी, लंबू तेरी लाली उतर जाएगी। नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम कोशिश करेंगे ये गीत आपको जरूर सुनवाएं।
1: जी सर जी, है आपके पास श्रीमान जी, और आप भी नाम बता देंगे, दिनेश भैया बोल रहे हैं?
0: नहीं नहीं जी, आज इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त शिवम।
1: अरे कमाल हो गए सर जी, आप तो कहते सत्य ही शिव है, शिवम ही सुंदरम है, आप तो बहुत अति सुंदर है, और आपकी आवाज में वो जादू है कि जाना होता है कहीं और, खींचे आपकी ओर चले जाते हैं सर जी, और ना जाने आपने बातों ही बातों में अपना बनाना और ये हुनर आपने सीखा कहाँ से श्रीमान जी।
0: बस जी, ये सब कुछ आपकी इनायत है। हम तो सिर्फ अपने सभी श्रोताओं के लिए कोशिश करते हैं कि उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम बना सकें,
1: जी
0: पेश कर
1: जी सर जी,
0: सकें।
1: एक रिक्वेस्ट और। अच्छा ये गाना मैं प्रेमदास बाबा जी के साथ में सुनूंगा, उनका नाम ले लूं, बुजुर्ग हैं भैया वो, क्योंकि अगर उनका नाम ले लूं तो थोड़ा उनको खुशी मिलती है, और हमारे बहुत ही बुजुर्ग श्रोता ये आ कहना चाहता हूँ सर जी जी का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, आपका गीत हम पेश किए देते हैं, आपने
1: जी
0: कॉल
1: जी
0: किया इसके लिए आपको देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सर जी।
3: अरे आंख

0: बंदर
1: बाबा,
0: ओ बोरी बंदर
1: नहीं,
0: और बंदर गोड़ बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर
1: ना ना ना ना नहीं,
0: ओ तो फिर आजा मेरे दिल के अंदर, आजा आजा आजा आजा।
2: हेलो नमस्कार मैम
3: जी, नमस्कार
2: सर, नमस्कार सर, नमस्कार, बिल्कुल थैंक यू सर,
3: इंतजार पूरा हुआ
2: इंतजार की घड़ी खत्म हुई सर
3: जी, इंतजार के लिए जैसे आंखें पथराती है वैसे हमारे कान भी पथरा जाते हैं हमारे श्रोताओं की आवाज़ सुनने के लिए। बताइए किनसे हमारी बातें हो रही हैं।
2: मधुर आवाज, सच्ची सीधी आवाजों के जादूगर।

0: अगर है तो विविध भारती भोपाल के सारी स्टाफ।
1: ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, किनसे हमारी बात हो रही है?
0: मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी मनमौजी बोल रहा हूँ सर।
1: अच्छा जी, नियाज भाई,
0: जी, इंदौर कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से बोल रहा हूँ सर। नियमित श्रोता हूँ आपका दर्पण का, और बहुत अच्छा लिखते थे, और आप पहले पत्र भी आप बहुत अच्छे पढ़ते थे। हाँ
1: मतलब आप बड़े दिलोजान से कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बढ़िया सुनते, फरमाइशी भी कार्यक्रम आपका अच्छा लगता है सर आपका, बिल्कुल बारह से मिल वाला।
1: तो नियाज भाई, आज कौन सा गीत आपके लिए पेश किया जाए?
0: आपकी पसंद का गाना सुन रहा हूँ सर मैं तो, अभी आज मैम से सुनाती है मुझे वो है ना गाना, वो सुनना है अपना कर्ज का।
1: कर्ज फिल्म का।
0: हाँ, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत गीत है, रफ़ी साहब का गाया हुआ
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, उसकी कड़ी बहुत प्यारी है लगी, और ये इस गाने में बिल्कुल ऐसी सादगी और जीवन का सच्चा सच्चा प्यार की मोहब्बतों को एजाम देता सर वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने उस गीत की रूह को पकड़ लिया हो ऐसा लगता है। चलिए तो नियाज भाई, बिना देर किए हुए ये गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
0: बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत बहुत
1: शुक्रिया जी।
0: धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो। हाँ नमस्कार सर जी, मैं ग्राम कन्या दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से परशुराम साहू बोल रहा हूँ सर जी।
0: परशुराम साहू जी
1: जी सर।
0: दमोह से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, ग्राम कन्या दमोह के पास स्थित है सर गांव।
0: अच्छा, आपके
1: जी
0: गांव
1: सर।
0: की खासियत क्या है, क्या देखने लायक है आपके गांव में?
1: सर हमारे गांव से पास स्थित है सर कान्हा किसली है, बलाचखंड माइन से सर, जो एशिया की सबसे बड़ी तांबा की खदान है। हाँ
0: हमने
1: सर
0: देखा है और
1: जी
0: कान्हा
1: सर।
0: किसली भी हम घुमाए हैं,
1: चलो अच्छा है सर।
0: आप भी घूमे हुए हैं।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल।
0: एक अलग रोमांच होता है जब कुदरत के इतने करीब हम जाते हैं।
1: बिल्कुल सर जी, प्रकृति से निकटता वास्तव में जो जीव जंतु है सर, जंगली जीव जंतु करीब से देखना एक अलग ही खुशी होती है सर। चाहे सर एक चिड़ियाघर का शेर और कान्हा किसली का जो जीव जंतु है, उनमें देखने में जमीन और आसमान का अंतर होता है सर,
0: बिल्कुल,
1: ऐसा मैं
0: आपने
1: महसूस किया हूँ सर जी।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो रोमांच है, जो एक दिलचस्पी जागती है, जो एक थोड़ा सा एक डर
1: जी
0: भी
1: सर जी
0: लगता है, एक
1: बिल्कुल
0: उत्सुकता भी रहती है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: उसका एक अलग ही कहना
1: हाँ सर, और कभी
0: है।
1: कभी सर जो कान्हा किसली जो जीव जंतु है सर, हमारे गांव स्थित जंगल के आसपास भी दृश्य से देखने को मिलता है सर उनका। जैसे खास तौर में सर गर्मी के दिनों में तेंदुआ अक्सर नजर आता था सर हमारे गांव के जंगल के आसपास।
0: जी, क्योंकि पानी
1: हाँ
0: की
1: सर
0: तलाश में ये जानवर जो हैं, क्योंकि वहाँ कोई परिधि तो बनी नहीं है, कोई बाउंड्री बनी नहीं है,
1: हाँ
0: खुला
1: सर।
0: जंगल है, तो जानवर
1: और
0: जो हैं पानी की तलाश में भटकते हुए कभी
1: जी
0: गांवों में
1: सर
0: कभी कस्बों में पहुँच ही जाया करते हैं।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और साथ ही शिकार का पीछा करते करते सर बारहसिंगा हो गया, हिरन हो गया। हाँ ये कारण जिम्मेदार है सर
0: और
1: जी।
0: कान्हा किसली की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरी दुनिया में अगर जो 12 सिंगे होते हैं वो केवल वहीं पाए जाते हैं,
1: जी सर
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: हमने सुना
1: बिल्कुल।
0: है।

0: बिल्कुल सर जी, बिल्कुल।
1: जी। और बारह सिंहों से एक बहुत ही खूबसूरत एक द्वार भी बनाया गया है कान्हा किसली के उद्यान
0: जी
1: में।
0: सर, जी सर जी, मुक्की गेट के नाम से
1: जी
0: भी
1: हाँ जी
0: शुरुआत
1: हाँ जी
0: है सर जी।
1: जी जी जी जी
0: जी
1: तो चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि आज का जो कार्यक्रम है फ़ोन करें गीत सुने हैं, तो आपकी
0: यस
1: पसंद का
0: सर,
1: गीत भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। बताइए क्या सुनना चाहेंगे आप।
0: सर गीत सुनने से पहले मैं अपने भाई का नाम बताना चाहता हूँ सर। सर मेरा बड़ा भाई है श्रीमान ध्रुवाराम साहू जी, वो भी आकाशवाणी भोपाल के नियमित श्रोता है सर जी। जी सर, आज मैं प्रकृति से जुड़ी हुई बातें हुई है सर, तो हाथी मेरा साथी फिल्म का गीत है सर, नफरत की दुनिया को छोड़कर वाला।
1: अरे वाह,
0: जी सर, अब प्रकृति की
1: बहुत
0: बात
1: ही
0: हुई है सर,
1: खूबसूरत
0: मैं कहना
1: गीत
0: चाहूँ।
1: है, रफ़ी साहब का गाया हुआ है।
0: हाँ सर, मैं सभी श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा सर कि अभी क्या है सर, कुछ दिनों बाद हमें वर्षा का देखने मिलेगा सर, तो मैं चाहता हूँ सर हर एक श्रोता कम से कम सर 10 पेड़ लगाए, ना सिर्फ पेड़ लगाए सर, बल्कि उनके एक बच्चे की तरह देखभाल करे आगामी 5 साल तक। अगर वो सफलता मिल गई सर, तो वो जो है जिस तरह से अग्नि पुराण में भी कहा गया है सर कि एक जो पेड़ होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है सर, एक समय पुत्र बाद में परेशान करता है, लेकिन जो पेड़ है वो हमेशा आपको उपकार करता है सर।
1: बहुत बड़ी बात आपने कही है, इस बात को हम सब अपने जीवन में उतारे हैं तो ये धरती जो इस तरह तप रही है, इसका माहौल ऐसा नहीं होगा।
0: जी सर जी, बिल्कुल
1: इस धरती को हम
0: बिल्कुल
1: अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खूबसूरत बनाकर, बहुत सुंदर बनाकर, जिस तरह हमें मिली थी उसी तरह हम उन्हें सौंप कर जा सकते हैं। आपने एक अच्छी बात कही है, इस बात का परिणाम भी अच्छा निकले, इसी कामना के साथ आपको हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते सर।
1: जी।
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: जी, हम भी अच्छे हैं। आप कौन बोल रहे सर?
1: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
0: अच्छा जी, नमस्कार सर। डबल से
1: नमस्कार जी, नमस्कार। किन से हमारी बात हो रही है?
0: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही सर, पालदाना का, इंदौर से।
1: अच्छा जी, हसीना बी, कैसे
0: जी
1: हैं आप?
0: अच्छे सर।
1: इंदौर से बोल रहे हैं आप?
0: जी, आपके लिए एक शायरी बोल दूँ सर। इस गर्मी में
1: हाँ
0: थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ, जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
1: हसीना भी आप बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी से।
0: जी, बहुत लंबे समय से जुड़े सर। वो पहले जो चुटकुले आते थे ना सर, उसमें भी भेजते थे हम। और पहले फोन इन कार्यक्रम 1 बजे आता था सर, 1 बजे, जो अरविंद सोनी जी प्रस्तुत करते थे उसको। एसएमएस का भी आता था 12 बजे सर।
1: अच्छा जी, आपको पूरी जानकारियां हैं।
0: बहुत सब दूर की जानकारी है सर हमें, मुंबई की भी, यहाँ की भी, आपके यहाँ के भोपाल की भी। हम सब एक ही तो है, आसपास ही तो है सर।
1: चलिए, ये बहुत अच्छा है कि आप सारे केंद्रों से जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं
0: जी, और आपके
1: उनमें।
0: यहाँ सर हमारे लेटर भी 2 महीने से डाले हुए, एक भी लेटर शामिल नहीं हुआ। तो थोड़ा आप छटनी भी कर लिया करो। जैसे इनके आते हैं ना, जिनके रोज सलंग दो दो बार आ जाते हैं, 2:30 बजे भी आ जाएगा, 12 बजे भी आ जाएंगे, तो थोड़ा हमारे भी देख लेना सर।
1: चलिए, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश का जो पत्र आपने भेजा है उस पत्र को हम शामिल कर सकें। आज फ़ोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम के लिए कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं?
0: सर फिल्म का नाम है रोटी, और गाने के बोले किशोर कुमार की आवाज में,

0: हाँ जी नमस्कार
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश,
0: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तो बताइए मुन्ना जी, क्या हाल है इन दिनों आपके शहर के? अच्छा
1: सर बढ़िया है, थोड़ी गर्मी से भी राहत मिल गई है।
0: अच्छा हाँ
1: अभी 2-3 दिन से हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है।
0: चलिए, मौसम खुशनुमा हो रहा है धीरे धीरे।
1: हाँ जी सर, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के माध्यम से दो शब्द बशीरवद साहब के लिए कहना चाहता हूँ सर।
0: जी।
1: उजाले अपनी यादों के, हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
0: क्या बात
1: 18,000 से ज्यादा शेरो शायरी लिखने वाले, 60 साल मुशायरों का हिस्सा रहे शहनशाह परम श्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं और मेरा पूरा परिवार अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। यूं तो सदा रहने के लिए कोई यहाँ आता नहीं, जिस तरह आप गए उस तरह कोई जाता नहीं।
0: आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं बशीर बद्र जी के लिए। उनका ये
1: जी
0: शेर
1: सर,
0: जो आपने पढ़ा वो तो
1: जी सर,
0: कालजयी शेर है, रहती दुनिया तक ये
1: जी
0: शेर रहने वाला है। और ऐसा लगता है आप शेरों और शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं,
1: जी सर,
0: साहित्य में
1: और
0: काफ़ी।
1: पुराने गाना का भी शौक है सर सुनने
0: हाँ,
1: का।
0: चलिए, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। यही कलाएं जो हैं इंसान को इंसान बनाती हैं, इंसानियत के पाठ पढ़ाती हैं।
1: जी सर,
0: बताइए कौन सा गीत इस वक्त आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है पुष्पांजलि का गीत डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए समर्पित है। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान।

0: जी नमस्कार।
1: मैं भी ऋग बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर से।
0: इंदौर से कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है विवेक व्यास
0: विवेक व्यास जी।
1: जी, और मेरा इस निवास स्थान है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर।
0: जी
1: तो सर मैं, जी सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी इस कार्यक्रम में
1: अच्छा
0: आज मैं हूं आपके साथ शिवम।
1: अच्छा शिवम जी,
0: जी
1: तो सर मुझे देखिए कल के आगे महू में बड़ी अच्छी बारिश हुई है, तो इसी मतलब खुशी में मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है स्वर्ण सुंदरी और रफी साहब और लता की आवाज है और गाने के बोल हैं कुहू कुहू बोले कोई अच्छा।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश करी है आपने।
1: और सर एक खासियत इस गाने की मैं बताऊं कि ये जो गाना है, इस गाने का 4 बार स्केल चेंज होता है। इसका मुख्य राग है सोहनी है ना, और बाद में जो अंतरा है उसमें एक बार ये राग यमन आता है और एक बार बाहर भी आता
0: बताइए।
1: है ना जी। और आप कहें तो मैं थोड़ा गुनगुना कर आपको बताऊं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बोले कोयलिया। और सर इस गीत के संगीतकार है आरती नारायण जी, ये साउथ के थे और इन्होंने एक ही हिंदी फिल्म में संगीत दिया है।
1: बताइए, एक गीत से भी कोई अपने लिए कितना बड़ा स्थान बना सकता है, उसकी मिसाल ये गीत है।
0: और सर एक निवेदन ये था कि यदि आप इसको लाइव करते सजीव प्रसारण तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं आपको बताऊं सजीव प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले आकाशवाणी भोपाल ने ही की थी और मैं रहने वाला भी भोपाल का ही हूँ, है ना। तो ये उस समय की बात है जब अब्दुल मन्ना था, हुआ करते थे, राजू सर जी थे, अनिल मुंशी जी थे, है ना। तो ये पहले लाइव हुआ करता था और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भोपाल ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये लगता है कि आपने इसको रिकॉर्डेड क्यों कर।
1: चलिए, आपकी ये बातें जो हैं हमारे अधिकारियों तक हम पहुंचाएंगे और देखते हैं भविष्य में आपकी इस कामना को भी हो सकता है पूरा किया जाए। फिलहाल
0: सजीव जी, सजीव में मजा आएगा और आपका धन्यवाद, आपने मेरा कॉल शामिल किया, इसके लिए धन्यवाद, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: और इसी गीत के साथ संपन्न होता है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। अभी इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। अमेरिका ईरान समझौते के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स ने लगभग 1,200 अंक की बढ़त के साथ 76,725 पर सत्र की शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कोई कमी नहीं होगी। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का परिणाम है। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 12 बजे का ये समय है, समय आपकी फरमाइश का। इस कार्यक्रम में आज आपके बहुत सारे खत और आपके पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हूं मैं, सुनीता सिंह। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रोताओं, इन दिनों मौसम अधूरे वादे सा नजर आ रहा है। निगाहें बादलों की राह तकती हैं, कुछ बूंदें आकर मन को छू जाती हैं, ठंडक दे जाती हैं और फिर धूप अपना साम्राज्य फैला देती है। कुल मिलाकर ये मौसम इंतजार का मौसम है, जिसमें छोटी छोटी खुशियों की आशा है, रिमझिम बूंदों की आशा है जो ठंडक बनकर जीवन पर छा जाए। तो ये इंतजार रखिए बरकरार। इस बीच आपका इंतजार हम खत्म करते हैं। कुछ मधुर गीतों की फुहार आप तक भेजते हैं आपकी ही फरमाइश पर। आइए सिलसिला शुरू करते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का। श्रोताओं के नाम पहले बताते हैं, उसके बाद गाने की डिटेल्स। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। सोनुआ झारखंड से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और नंदू महतो। ये चिट्ठी आई हुई है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ ये गीत। शब्द रचना इंदिवर की है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। खतो किताबत की सदा रस्म को जारी रखना, भूल जाना ना हमें याद हमारी रखना।

और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज़ है। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है एन दत्ता ने और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद, बबन जोशी। शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ बाघ और अमोघ बाघ। गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को पसंद करते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। ये चिट्ठी आई हुई है राजकोट से। लिखने वाले श्रोता हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। गमों की ओस जब भी दिल पर पड़ी है, तुम्हारी याद सूरज बन गई है।

0: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: और स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गौरीनगर इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं, आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर पारस मणि फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। असद भोपाली का लिखा ये गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया।

दिल तेरा दीवाना कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं, बोल शैलेंद्र के, धुन शंकर जयकिशन की। अनुरोध आप सबका है, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, प्रमिलागंज आलोट, रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले, आरती जूंधले और भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। एक हुजूम में दिखा जो तेरा अचानक चेहरा तेरा, एक हुजूम में जो दिखा अचानक चेहरा तेरा, दिल ने कहा मेरा ख्वाब यही है, यही हकीकत, यही जिंदगी।

श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपकी फरमाइशों का सिलसिला अब यहीं थमता है। इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 10वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, रामू और बामू ठाकुर साहब से मिलते हैं और शास्त्री, यशवंत और बलबीर स्वामी के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। पुलिस कुछ मजदूरों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बात को लेकर बलबीर स्वामी और यशवंत के बीच बातचीत होती है। बलबीर स्वामी कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना देने का सुझाव देता है। बलबीर स्वामी यूनियन के सचिव कालूराम के साथ खलासी लंगर में यूनियन के फंड से नशा करते हैं। बसुमती काकी उनकी बातें सुन लेती है और आकर नारायणी को बताती है। इस बात के लिए नारायणी यशवंत से मिलती है और उसे आड़े हाथों लेती है। रामू और बामू चोरी छिपे कंपनी के कलपुर्जे बेचने शुरू कर देते हैं। कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना दिया जाता है। ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाते हैं और 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60 मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव रखते हैं। बातचीत टूट जाती है। रामू और बामू को पता चलता है कि रात को ठाकुर साहब के घर कोई औरत चोरी छिपे आती है। उनका शक भृगु की बहन पार्वती पर जाता है। दोनों रात के समय ठाकुर के घर की निगरानी करते हैं और औरत को पकड़ लेते हैं। तभी यशवंत वहां आता है और नारायणी को देखकर चौंक जाता है। अब आगे।

0: वो क्या है कि
1: रामू बामू सुनो, तुम दोनों ने नारायणी से जो भी लिया है उसे वापस करो और इसे बैरक तक छोड़ कर आओ।
2: अरे हमें क्या कर दिया उसे बैरक तक छोड़ कर?
1: जुबान संभाल कर बात कर रामू।
3: अरे ठहरो
1: बलवीर स्वामी तुम?
3: हाँ मैं। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि नारायणी ठाकुर साहब के पास क्यों आई थी। आओ मेरे पीछे आओ। जहां से तुम आ रही हो, ठाकुर साहब के घर।
1: हाँ ठीक है, चलो तुम भी आओ रामू बाबू।
0: चल भाई चल।
3: ठाकुर साहब, अरे ओ ठाकुर साहब।
4: अरे कौन है जो इतनी रात गया आया है?
3: दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा।
4: अरे ठहरो भाई, खोलता हूँ दरवाजा।
5: अरे तुम लोग तो यूनियन के आदमी हो
3: जी। हाँ हम यूनियन के आदमी हैं। और ठीक तरह से जवाब दीजिए, क्या नारायणी खुद आपके पास आई थी या आपने बुलाया था उसे?
1: बोलिए
5: क्या मतलब?
3: मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, बस हमें ठीक ठाक जवाब दीजिए, वरना मैं घर को आग लगा दूंगा।
6: ठाकुर साहब जवाब दीजिए, नारायणी यहाँ क्यों आई थी बताइए इनको।
5: ये औरत आधी रात को मेरे पास पैसे मांगने आई थी। अरे इन सब लोगों के बारे में बिना सोचे विचारे कैसे हड़ताल कर रहे हो तुम लोग? अगले 4 दिन के बाद ये भूख से मर जाएंगे।
3: चुप, हम यहाँ तुमसे सलाह लेने नहीं आए हैं। तुम बताओ नारायणी, क्या साहब सच कह रहे हैं? जवाब दो
1: नारायणी, चुप क्यों हो?
3: मौना स्वीकृति ही लक्षणम, मारो इसे, मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दो ताकि फिर ये कभी ऐसा काम करने का साहस न करे।
0: मारो मारो।
1: ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। अब सुनो, इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूं।
7: यशवंत बाबू
1: तुम चुप रहो, नारायणी तुम चुप रहो। देखो बलबीर स्वामी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि नारायणी से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
3: अच्छा ठीक है, पहली गलती है इसलिए माफ कर देते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझा देना कि फिर कभी ऐसी गलती ना करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
1: अब तुम चिंता ना करो बलबीर स्वामी, मैं इसे सब समझा दूंगा। अब चलो नारायणी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ।

0: इसका मतलब क्या हुआ?
1: इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी किसी भी तरह हमारी हड़ताल को तोड़ना चाहती है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि मजदूरों का हड़ताल पर से विश्वास डगमगा जाएगा और वो काम पर वापस लौट आएंगे।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा बलवीर स्वामी, हमारी हड़ताल तो विफल हो जाएगी।
1: नहीं यशवंत, नहीं, हमारी हड़ताल विफल नहीं होगी, हम कामयाब होंगे, मुझ पर भरोसा रखो।
0: अच्छा, ये नए मजदूर परमानेंट हैं या दिहाड़ी पर हैं?
1: वैसे यशवंत, क्यों ना हम इन मजदूरों को भी यूनियन का सदस्य बना ले और इन्हें भी हड़ताल में शामिल कर ले। लेकिन यशवंत, ये संभव नहीं है।
0: अब क्यों, क्या नए मजदूर हमारा साथ नहीं देंगे बलबीर?
1: यशवंत, इन मजदूरों को इसी शर्त पर काम पर रखा गया है कि न तो ये यूनियन के सदस्य बनेंगे और न ही कभी हड़ताल करेंगे। बाकायदा इन मजदूरों से कंपनी की शर्तों पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इन मजदूरों को पीस वर्कर का नाम दिया गया है।
0: देखो बलबीर स्वामी, मजदूरों की हड़ताल को आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। अरे मजदूरों के घरों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे बूढ़े जवान सभी भूख की आग में जल रहे हैं। ऐसे में हड़ताल को और कितने दिनों तक खींचा जा सकता है?
1: यशवंत, जब तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मजदूरों को हिम्मत कौन बंधाएगा? हौसला रखो, हौसला ही हम सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: लेकिन भूखे पेट कोई हौसला रखे भी तो कब तक? कब तक बलबीर स्वामी, कब तक?
1: मजदूरों की पीड़ा समझने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनकी पीड़ा दूर भी करनी होगी। हाँ, मजदूरों की पीड़ा दूर होगी तभी उनमें नए उत्साह का संचार होगा। और तो और, दुख की बात तो यह है कि हमने यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मुख्यालय भेजा था वो अभी तक लौट कर नहीं आया है।
0: अब
1: फिर भी तुम चिंता मत करो, हम शास्त्री जी से इस विषय में बात करेंगे।
0: ठीक है। अरे बलबीर,
1: हाँ,
0: ये कौन आ रहा है?
1: अरे अरे कालू राम, तुम इस वक्त यहाँ?
2: अरे हाँ बलवीर भाई, वो क्या है कि शास्त्री जी के यहाँ से खबर आई है कि दिल्ली गया हुआ हमारा प्रतिनिधि मंडल वापिस लौट रहा है।
0: हाँ।

0: अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने।
1: हाँ।
0: अब चिंता की कोई बात नहीं यशवंत, मुख्यालय से आने वाले आदमी कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी, सारे मजदूर परमानेंट होंगे और कोई भी दिहाड़ी मजदूर नहीं रहेगा।
1: अब हम लोग शास्त्री जी से मिलने कब चल रहे हैं बलबीर?
0: परसों सुबह। हाँ एक बात और।
1: अरे अब कौन सी बात रह गई?
0: देखो शाम के वक्त जब नए मजदूरों को पगार मिलती है उस समय तुम अपने मजदूर साथियों के साथ जुलूस निकालोगे, नारे लगवाओगे तुम।
1: लेकिन बलबीर इससे तो हमारा पीस वर्करों के साथ संघर्ष हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है।
2: अरे तो कोई परवाह नहीं। देखो यशवंत भाई, अगर कुछ मजदूरों का खून बहता है तो बह जाने दो।
1: क्या?
3: दादी माँ, दादी माँ।
4: हाँ बेटी।
3: कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दो।
4: घर में एक दाना नहीं है बेटी, एक भी दाना नहीं है, हम भी कई दिन से भूखे हैं।
3: दादी
4: भला तुझे कहाँ से खाने को दें?
3: दादी माँ अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी।
4: पार्वती
3: ना, मैं मरना नहीं चाहती दादी, मैं मरना नहीं चाहती।
4: पार्वती
3: मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी।
4: अब तू क्यों रो रहा है भृगु?
5: कितना लाचार हूँ मैं, कितना लाचार, अपनी बेटी और बूढ़ी माँ का पेट तक नहीं भर सकता मैं।
4: अरे आग लगे यूनियन बाजी को, जिसने हमारे बच्चों के पेट से रोटी छीन ली। अरे क्या फायदा हुआ इस हड़ताल से, क्या फायदा हुआ?
3: बापू मत रो, बापू मत रो दादी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, अगर भूख लगेगी तो पानी पी लूंगी, मगर आप लोग मत रो बापू, मत रो दादी।
5: Thank you.

0: शास्त्री जी, धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। अरे सफाई कर्मचारियों की हालत और भी खराब हो गई है। मुंशीगंज के किसान गेहूं देने से मना कर रहे हैं। पीस वर्कर और हमारे मजदूरों के बीच देखिए कभी भी झगड़ा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, खून की नदियां बह सकती हैं शास्त्री जी, खून की नदियां।
1: अच्छा देखो भाई, मुख्यालय से प्रतिनिधियों को आने दो, फिर हम सब मिलकर कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे। हैं? अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
0: हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है शास्त्री जी। पिछली सरकार ने सन 1976 का बोनस नहीं दिया, नई सरकार ने यह बिल पास किया है, लेकिन कंपनी 1977 में यह बोनस देने का वादा करके भी मुकर रही है। फिर हमारी तीसरी मांग यानी मजदूरों की छटनी बंद करने का फैसला पहली बैठक में नहीं लिया जा सका था, दूसरी बैठक में ही इसका कोई फैसला हो सकता है शास्त्री जी।
1: ओफो, अरे तुम लोगों के पास आत्मबल नहीं है, बिना किसी ज्ञान के नेता बनने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है।
0: अब
1: मुझे सलाह देने आए हो तो सुनो, ये हड़ताल चलती रहेगी समझो तुम।
0: शास्त्री जी, सुनने में आया है कि दिल्ली मुख्यालय से प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है।
1: आ तो रहा है, तो फिर
0: हमारी यूनियन चाहती है कि यूनियन के स्थानीय नेता यानी हम लोग उनसे मिले, कंपनी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत में शामिल हों।
1: सुनो मेरी बात, मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ तुम लोगों की बैठक नहीं हो सकती, समझे?
0: लेकिन शास्त्री जी,
1: लेकिन कुछ नहीं, दिखाई मत दिखाओ। अरे तुम लोगों में कितना जोश है भाई, मुख्यालय वालों को भी जानने दो। अरे मैं लीगल फाइट करवा दूंगा, लीगल फाइट। आसपास के दूसरे कारखानों में भी टोकन स्ट्राइक शुरू हो जाएगी।
0: हमारे फंड में बिल्कुल पैसा नहीं है शास्त्री जी, बाहर से कोई सहायता भी नहीं आई है, ऐसी स्थिति में और दूर तक सोचना भी असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन। आपको पता है हड़ताली मजदूरों में भुखमरी फैल गई है। अरे कुछ दिन बाद मजदूरों की लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, तब क्या होगा?

0: शास्त्री जी, तब क्या होगा?
1: ये सब उस लेबर इंस्पेक्टर का किया धरा है। वही मुंशीगंज के किसानों को तुम मजदूरों के खिलाफ भड़का रहा है।
2: क्या वो मोटा लेबर इंस्पेक्टर लोगों को भड़का रहा है?
1: हाँ, मुझे पक्की खबर मिली है। अरे कुछ दिन पहले वो किसानों से कहता फिर रहा था कि
3: सुनो मुंशीगंज के किसानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी किसान हड़ताली मजदूरों की मदद नहीं करेगा, उन्हें गेहूं चावल उधार नहीं देगा।
4: हाँ बिल्कुल नहीं देगा, ये हड़ताल गैर कानूनी है। अरे भूखा रहने पर जब मजदूरों का पेट उनकी पीठ से चिपक जाएगा तो हड़ताल का नशा भी उतर जाएगा।
3: नहीं, नहीं। लेकिन कुछ नहीं, ये कंपनी अपने मजदूरों को दूसरी कंपनियों से 30% अधिक देती है। द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड विद द प्राइस अंडर।
5: अरे इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी में क्या इंटरप्रेट कर रहे हो?
4: अरे होगा कोई कानून। सुनो, अगर अब हम मजदूरों की मदद करेंगे तो हमें भी जेल हो जाएगी।
3: गुड, वेरी गुड। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
4: हाँ,
6: ये क्या है?
1: दुश्मन का सामना करना सीखो। अरे फंड खत्म हो गया है तो दिमाग से काम लो, दिमाग से। सुनो, सुना है एक ट्रक में भरकर कंपनी की सीमेंट रायबरेली पहुंच रही है। समझ से काम लो, समझ से।
2: लेकिन इससे भयानक कांड हो सकता है शास्त्री जी।
7: पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है, गोलीबारी भी हो सकती है।
1: अरे धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है तुम लोगों पर। ओ तुम लोग ऐसे काम के लायक हो ही नहीं। जाओ, अरे जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से।
6: चलो
7: चलो। अरे यशवंत, आज ये कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस ही है ना?
2: अरे हाँ, ये तो नया नोटिस है। आज की तारीख है इस पर।
7: जरा पढ़कर तो सुनाओ, मैं अपना चश्मा भूल आया हूँ।
2: हाँ पढ़ता हूँ। लिखा है, यूनियन के नेताओं, तुम लोगों ने मजदूरों को गलत रास्ता दिखाया है। तुम लोगों ने अपनी बेबुनियाद मांग रखकर कंपनी को धमकी दी है।
7: अच्छा,
2: काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूरों की छटाई होगी। ये कंपनी का कानून सम्मत काम है, उच्चतम न्यायालय भी इसे मानेगा।
7: ओह, तो अब कंपनी यूनियन को कमजोर करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आई है, नए नए हथकंडे अपना रही है।
2: लेकिन बलबीर, अगर उच्चतम न्यायालय ने सचमुच कंपनी के इस नोटिस को मान्यता दे दी तो क्या होगा? अरे बेचारे दिहाड़ी मजदूर तो कहीं के नहीं रहेंगे।
7: चिंता मत कर यशवंत, अंत में जीत हमारी ही होगी, मजदूरों को उनका हक मिलकर रहेगा। आखिर जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल दिए हैं, क्या उनका कंपनी पर कोई हक नहीं बनता?
2: अरे बिना मजदूरों के कंपनी का क्या अस्तित्व? उन मजदूरों का कंपनी पर पूरा हक है।
7: हाँ,
2: अपने खून पसीने से सींचा है मजदूरों ने इस कंपनी को।
7: जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मजदूरों को उनके हक से वंचित नहीं होने देंगे। और इसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।
2: ठीक कहते हो बलबीर।

कितने दिन हो गए खाना खाए, ठीक से याद भी नहीं, सूख कर कांटा हो गई हूं। मेरा बच्चा भी भूख से किस तरह बिलबिला रहा है, और मेरा बीमार पति वो तो कंकाल बनकर रह गया है। हे भगवान, कब तक जिंदा रह पाएंगे हम लोग इस तरह।

क्या हड़ताल हम लोगों की जिंदगी अब लील जाएगी? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कमजोरी के कारण मेरा

0: सिर चकराने लगा है। एक कदम आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। क्या करूं मैं, क्या करूं, कहां जाऊं। भूख भी तो लगी है ना। याद आया, परसों कच्चे तरबूज को सूखे कांटों से ढककर आई थी मैं, ताकि किसी की निगाह उस पर ना पड़े। हाँ, चलकर तरबूज खाती हूँ। हाँ, कुछ तो भूख मिटेगी। जल्दी चलो, कहीं कोई दूसरा या कोई जानवर ही ना खा गया हो। हाँ, मुझे जल्दी चलना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए। अरे अरे, ये क्या तरबूज तो कोई खा गया। यहाँ तो तरबूज के छिलकों के खाली टुकड़े पड़े हुए हैं। किस तरह ढक छिपा कर गई थी मैं उसे, पता नहीं किसकी निगाह पड़ गई। क्या करूं, पता नहीं किसने खाया होगा मेरे इस तरबूज को। हाँ, किसने खाया होगा। अरे अरे, यहाँ तो बसुमती काकी बैठी हुई है। हाँ, जरूर इसी ने मेरा तरबूज चबा चबा कर खा डाला है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं बसुमती काकी।
1: अरे कौन, नारायणी, आजा, यहां बैठ। देख, एक तरबूज लगा हुआ था। अरे बंदरों की नजर तो नहीं पड़ी, हमारी पड़ गई। है, बहुत दिन के बाद पेट में गया। दो चार दिन और जी लेंगे हम। क्या बात है नारायणी, अरे तो मुंह लटकाए क्यों खड़ी है।
0: राक्षसनी बुढ़िया, कितना छिपा कर रखा मैंने इसे, फिर भी तेरी कित निगाह पड़ गई इस पर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे बाल लूंगी।
1: कैसी बात कर रही है नारायणी तू?
0: मेरे तरबूज
1: नारायणी, अरे हम तेरा दुख समझते हैं। हाय हाय हाय हाय,
2: देख तो तेरा शरीर कीड़े लगे पपीते जैसा ढीला पड़ गया है।
0: काकी
2: नारायणी,
0: वो तरबूज मैंने अपने लिए छिपाया था, क्यों खा लिया तुमने, क्यों खा।
1: अरे ये जमीन क्या तेरे बाप की है, है? जो उस तरबूज को अपना बता रही है। क्या तू नहीं जानती, दो दिन पहले जंगली जलेबी को लेकर भयंकर मारपीट हो गई थी। चल छोड़ ये सब, छोड़, यहाँ बैठ मेरे पास, आजा। ये तो गुमसुम कैसे बैठ गई। नारायणी, पेट में बच्चा है क्या?
0: काकी,
1: अरे सुन, हम छठवें महीना में भी पेट से बच्चा निकाल सकते हैं।
2: हाँ, जैसे जंगली डूमर का फल काट कर उसका बीज निकाला जाता है।
1: अरे सुन तो, जंगली जलेबी के रस से हम दवाई बना सकते हैं।
2: अरे कंवर बेद में जब हम रहते थे ना, तो ऊंट के मुंह से निकलने वाली झाग से दवाई बनानी सीखी थी। बहुत बढ़िया दवाई होती है ये, सांप के जहर से भी तीखी। हाँ, तू कहे तो तेरे लिए दवा बना दूं, है?
1: अरे कमर बेद में हमने एक औरत से खास दवाई बनानी सीखी थी। मुंह काला करके आई औरत को मरघट ले जाकर।
0: चुप रह बुढ़िया, वरना तेरा गला घोंट दूंगी मैं।
1: अरे नारायणी, अरे रे रे, हम जानते हैं तुझे बच्चा गिराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको तो पता है, ठाकुर साहब को ध्वजपात की बीमारी है।
0: क्या?
1: तू चिंता न कर नारायणी, हमको सब याद है। अरे तूने भी सुना होगा, बेकी नदी पर बने पुल

0: पर हमारा काम लगा हुआ था।
1: बाप रे, भयानक बारिश, बिजली की चमक और गर्जन, 5 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश।
0: और जब बारिश कम होती तभी काम शुरू होता। तब हम साहब के कपड़े धोते थे।
1: उस समय लकड़ी के फट्टे पर से कई मजदूरन का पैर फिसल गया।
0: अरे बहुत से तो मजदूर धड़ाम से गिरे और एक मजदूर के सीने में तो सरिया आर पार हो गया था।
1: हाय हाय, वो तो तुरंत ही मर गया था।
0: और 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
2: ए बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू?
0: ये बकबक नहीं है रानी। अरे बहुत कम लोगों को पता है कि मजदूरों के साथ ठाकुर साहब भी गिर गए थे।
1: हाँ,
0: और ये तो बाद में पता लगा कि बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो गई उनकी।
1: हाँ,
2: काकी, तुम सच कह रही हो ना?
0: और नहीं तो क्या। अरे हम ऐसे ही रामायण गाते हैं। अरे हमारी बात बिल्कुल सच।

0: पूरन का पैर फिसल गया। अरे बहुत से तो मजदूर धड़ाम से गिरे और एक मजदूर के सीने में तो सरिया आर पार हो गया था। हाय हाय, वो तो तुरंत ही मर गया था। और दो मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
1: ए बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू?
0: ये बकबक नहीं है रानी। अरे बहुत कम लोगों को पता है कि मजदूरों के साथ ठाकुर साहब भी गिर गए थे। हाँ, और ये तो बाद में पता लगा कि बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो गई उनकी। हाँ,
1: काकी, तुम सच कह रही हो ना?
0: और नहीं तो क्या। अरे हम ऐसे ही रामायण गाते हैं। अरे हमारी बात बिल्कुल सच है नारायणी।
1: इसका मतलब आप मानती हैं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा ठाकुर साहब से कोई गलत रिश्ता नहीं है।
0: कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं।
1: ओ काकी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। काकी मुझे माफ कर दो।
0: अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है नारायणी। ये भूख जो करवाए सो कम है। अरे भूख तो एक माँ को बेटे का मांस खिला देती है, एक बेटे का मांस माँ को।
1: काकी एक तुम ही हो जिसने मेरे चरित्र पर विश्वास किया, वरना सब के सब मुझे गलत समझते हैं। काकी गलत समझते हैं।
0: नारायणी, ये नारा सुन रही है तू? होशियार रहे, ये नारा किसी का नहीं है। अरे रुपए की झंझनाहट सारे नाश को कब्र में ले जाएगी। ये नारा तो मुझे भी कब्र में ले जाने के लिए ही बना है। अरे इससे किसी की भलाई नहीं होगी। ये देख, ये मेरी कुबड़ी पीठ देख। अरे हमारे बालक देख। अरे अपने लड़के की हालत देख। ये सब हालत हड़ताल और नारों की देन है।
1: हाँ काकी,
0: आज हम पर कुत्ते भौंकते, बालक पत्थर मारते हैं। अब तो हमारे मरने के दिन दूर नहीं है। ये नारा हम बहुत सुन चुके, बहुत सुन लिया ये नारा। ये जो नेता मजदूरी करने वाले मजदूरों को भूखा रख के हड़ताल करते,

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में आयोजित मास्टरमाइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट के मंदाकिनी और माधकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। और प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं महक गुप्ता और स्वास्थ्य दर्पण में एक बार फिर हम हाजिर हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम हमेशा आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाली को समर्पित रहता है। श्रोताओं, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि रात बिरात घर में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या फिर सेहत को लेकर अगर कोई सवाल मन में आ जाए जिसका जवाब तुरंत चाहिए हो, तो हमें सोचना पड़ता है कि डॉक्टर के पास कैसे जाएं, कब जाएं। हर कोई बार बार छोटी मोटी बीमारियों के लिए तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, या फिर सुदूर इलाकों में रहने के कारण उनके लिए अस्पताल तुरंत पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे असमंजस में हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किससे सलाह लें। इसी गंभीर समस्या का स्थायी और सरल समाधान करने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवाओं को शुरू किया। ये नंबर्स केवल अंकों का एक समूह नहीं है, बल्कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या सामान्य स्वास्थ्य परामर्श के समय एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। तो जल्दी से कागज़ कलम उठाइए, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपसे आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी सेवाओं में सबसे प्रमुख और उपयोगी नंबर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104। यदि आप किसी भी साधारण बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, मामूली बुखार, उल्टी या पेट दर्द से परेशान हैं, तो तुरंत अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप सीधे अपने मोबाइल से 104 यानी 104 नंबर डायल कर सकते हैं। इस नंबर पर 24 घंटे योग्य चिकित्सा सलाहकार, नर्स, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करके आपको उचित प्राथमिक उपचार तथा दवाइयों का परामर्श दे सकते हैं। इसके साथ ही इस हेल्पलाइन के माध्यम से आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य जानकारियों के बारे में, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, और अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आपातकालीन और संकट की स्थिति के लिए देश भर में 112 और 108 जैसी बेहतरीन

एम्बुलेंस और राहत सेवाएं भी पूरी जोश शोर से काम कर रही हैं। जहां 108 नंबर मुख्य रूप से मुफ्त अस्पतालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए जाना जाता है, जो गंभीर मरीजों या दुर्घटना में जूझ रहे लोगों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाती है, वहीं 112 ऐसी एकीकृत अस्पतालीन नंबर है जो देश के किसी भी कोने में आपको तुरंत चिकित्सा, पुलिस या फायर ब्रिगेड की मदद एक साथ पहुंचाने में सक्षम है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यही नहीं, आजकल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी समाज में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर, टेली मानस हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है। ये नंबर है 14416। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहा है, लगातार तनाव में है या किसी को अपने मन की बात साझा करनी हो, तो वो इस नंबर पर कॉल करके अनुभवी मनोवैज्ञानिकों से और विशेषज्ञों से मुफ्त और पूरी तरह गोपनीय परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ ही डिजिटल इंडिया के इस दौर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हेल्पलाइन नंबर है 14477। मैं नंबर एक बार फिर से बताती हूँ, 14477। ये भी लोगों को बहुत काम आ रही है, जहाँ आप अपनी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटल आईडी, ये सभी एक जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी सेवाओं की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरी तरह निशुल्क हैं और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, ताकि देश भर के नागरिक अपनी भाषा में खुलकर अपनी बात कह सकें और मदद प्राप्त कर सकें, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ये हेल्पलाइन नंबर्स हमें बताते हैं कि एक साधारण सा फ़ोन नंबर इस लायक है कि वो हर स्वास्थ्य सेवा को आपके दरवाजे तक ला सके। उम्मीद है कि आपने ये सभी नंबर्स ज़रूर नोट किए होंगे, ताकि मुश्किल समय में ये आपके काम आ सकें। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का ये पहला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण में अब वक्त हो गया है आज की भेंट वार्ता का। आज की भेंट वार्ता का विषय है योग, स्वस्थ जीवन की आधारशिला। वार्ताकार हैं गोविंद सिंह चौहान।
1: स्वस्थ भारत का विचार केवल अस्पतालों दवाओं तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी आधारशिला है जिस पर देश का आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति टिकी है। यदि नागरिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वे अधिक उत्पादक बनते हैं, शिक्षा बेहतर ग्रहण करते हैं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ भारत का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति। स्वस्थ भारत की असली आधारशिला यौगिक जीवन शैली में है। महर्षि पातंजलि ने कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थ सिद्धा प्राणायामः, अर्थात आसन सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं नाक से श्वास ले, बाएं नाक से छोड़े, बाएं से ले, दाएं से श्वास छोड़े, अनुपात इसका रहेगा 1:2 या फिर 1:4:2। लाभ इसके क्या क्या हैं? नाड़ी शुद्धि, मन शांत, रक्तचाप संतुलित, तनाव अनिद्रा में लाभ मिलता है। दूसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम की कुछ सीमाएं होती है। बहुत धीरे अभ्यास करें, हृदय से संबंधित रोगी कुंभक ना लगाए। दूसरा है प्राणायाम में कपालभाति, नाक से श्वास को बाहर करें, पेट को अंदर करें, श्वास लेना सहज रूप से। लाभ इसके हैं, पेट की चर्बी घटती है कपालभाति प्राणायाम से, पाचन तेज, फेफड़े शुद्ध होते हैं, मस्तिष्क सक्रिय तथा कफ दोषों का नाश होता है। इसकी सीमाएं होती है, हाई बीपी हार्ड पेशेंट तथा गर्भवती महिलाएं ना करें, अल्सर हर्निया वाले भी ना करें, गर्मी के दिनों में कम करें। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार की धोकनी जैसे तेज श्वास लेना छोड़ना, 20 बार करके कुंभक लगाएं। भ्रामरी प्राणायाम ये है चौथा, आँख कान बंद करके भंवरे जैसी मधुर गुंजन करें। इसके लाभ तुरंत तनाव अवसाद खत्म, माइग्रेशन में राहत, क्रोध चिंता शांत तथा उच्च रक्तचाप में लाभ तथा नींद अच्छी आती है। पांचवा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, गले को हल्का सिकुड़कर खराटे जैसी आवाज के साथ श्वास लेना और छोड़ना, थायराइड में लाभ प्राप्त होता है, गला फेफड़ा मजबूत तथा मन एकाग्र, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। इसकी सीमाएं हैं, बीपी वाले सावधानी से करें तथा कुंभक न लगाए। छठा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम अथवा शीतकारी प्राणायाम, जीभ को नलीदार बनाकर या दांतों से श्वास अंदर खींचे तथा नाक से छोड़े। इस प्राणायाम के जो लाभ है, शरीर को ठंडक देता है, एसिडिटी जलन शांत, बीपी सामान्य होता है तथा भूख प्यास में नियंत्रण स्थापित होता है। सूर्यवेदन प्राणायाम, केवल दाएं नाक से श्वास लेना तथा बाएं से छोड़ना। इस सूर्यवेदन प्राणायाम के लाभ है कि शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, सुस्ती

दूर होता है, पाचन तेज होता है तथा लो बीपी में फायदा होता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, हाई बीपी, हृदय रोगी, पित्त प्रकृति वाले इस अभ्यास को ना करें। आठवां प्राणायाम है चंद्रभेदन प्राणायाम। इसमें केवल बाई नाक से श्वास ले तथा दाएं से श्वास को छोड़ना है। इसके लाभ है शरीर को शीतलता, हाई बीपी में लाभ, पित्त शांत तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। चंद्रभेदन प्राणायाम की कुछ सीमाएं होती है, लो बीपी, सर्दी जुकाम, अस्थमा वाले इस अभ्यास को ना करें। प्राणायाम के जो यौगिक लाभ बताए हैं उसमें फेफड़ों की क्षमता 3 से 5 गुना बढ़ती है तथा ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है, हृदय मजबूत, रक्तचाप नियंत्रित तथा कोलेस्ट्रॉल घटता है, पाचन तंत्र, लीवर, किडनी सक्रिय, डायबिटीज, मोटापा, कब्ज में लाभ होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, 80% रोग श्वास दोष से होते हैं, हार्मोन संतुलन, थायराइड, पीसीओडी तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम के मानसिक लाभ, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, भ्रामरी 5 मिनट में असर देता है, एकाग्रता, स्मृति निर्माण लेने की शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक विचार रुकते हैं, मन प्रसन्न रहता है, क्रोध, चिड़चिड़ापन ठीक होता है। आध्यात्मिक लाभ इसके बताएं, नाड़ी शुद्धि से कुंडलिनी जागरण की तैयारी, चित्त शांत होकर ध्यान में प्रवेश आसान होता है, प्रत्याहार सिद्ध होता है तथा इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम करने की पूर्व सावधानियां हमें कुछ बरतनी होती है, खाली पेट जरूरी होना चाहिए, भोजन के 4 घंटे पहले ही करें, सुबह का समय प्राणायाम के लिए अति उत्तम माना गया है, प्राणायाम गुरु के सानिध्य में सीखें, कुंभक वाले प्राणायाम गलत करने से हानि की संभावना रहती है, और रोग के अनुसार चुनाव, हाई बीपी वाले भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदन प्राणायाम ना करें, लो बीपी वाले शीतली चंद्रभेदन प्राणायाम ना करें। शुरू में 5-5 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, जबरदस्ती श्वास ना रोकें। वर्जित स्थितियां, बुखार, चक्कर, ऑपरेशन के बाद गर्भावस्था, मासिक धर्म में कुंभक ना करें, प्राणायाम ना करें, शांत जगह हो, पंखे तथा एसी की सीधी हवा में ना करें। क्रम इसका रहेगा, पहले षटकर्म हो, उसके बाद आसन करें, आसन के बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद ध्यान करें और फिर सीधे प्राणायाम ना करें। निष्कर्ष ये है कि प्राणायाम स्वस्थ भारत की सांस है, यह दवा नहीं, दवा की जरूरत को खत्म करने का विज्ञान है। महर्षि पातंजलि ने आसनों को स्थिर सुखम आसनम कहा है, जिसमें शरीर स्थिर और मन सुखी हो। बाद में हठयोग में 84 लाख योनिया के प्रतीक 84 प्रमुख आसन बताए गए हैं। आसनों को मोटे तौर पर 7 भागों में बांट सकते हैं, जैसे खड़े होकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, कटिचक्रासन, गरुड़ासन, नटराजासन। घुटने, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है, फेफड़े खुलते हैं, श्वास गहरी होती है, आलस दूर होता है, स्फूर्ति आती है। इन खड़े होकर आसनों में कुछ सीमाएं भी होती है, घुटने में तेज वर्टिगो की, हाई बीपी, त्रिकोण आसन में सावधानी करें, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में संतुलन वाले आसन ना करें, बैठकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। ध्यान के लिए उत्तम आसन, रीढ़ सीधी रहती है, पाचन तंत्र मजबूत, वज्रासन भोजन के बाद भी कर सकते हैं, रीढ़ में लचीलापन, साइटिका में आराम मिलता है, मन शांत होता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं हैं, जैसे घुटने टखने की चोट में पद्मासन ना करें, पाइल्स फिशर में वज्रासन देर तक ना करें, स्लिप डिस्क में तीव्र मरोड़ वाले आसन वर्जित है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर है भुजंगासन, शल्वासन, धनुरासन, मकरासन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के यौगिक लाभ, जैसे रीढ़ की हड्डी लचीली, कमर दर्द में राहत मिलती है, पेट के अंगों की मालिश होती है, कब्ज अपच दूर, फेफड़े हृदय सक्रिय होते, थायराइड ग्रंथि संतुलित होती है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं होती है, जैसे हार्निया, अल्सर, पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें, गर्भावस्था में पूरी तरह वर्जित है, हाई बीपी, हृदय के रोग में भुजंगासन धीरे धीरे करें। चौथा जो भाग है, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, उत्तानपादासन, चक्रपादासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के यौगिक लाभ, जैसे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि में संतुलन।

0: होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, रक्त संचार सिर की तरफ बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है, रीढ़ और गर्दन का तनाव दूर होता है, गैस कब्ज मोटापे में बहुत लाभ होता है। इनकी सीमाएं सर्वांगासन, हलासन, हाई बीपी, सर्वाइकल, चक्कर, हृदय रोग गर्भावस्था में ना करें। ग्लूकोमा, रेटिना समस्या में उल्टे आसन वर्जित है। गर्दन में दर्द हो तो तकिया लगाकर करें। पांचवा भाग है आगे झुकने वाले आसन। उदाहरण के तौर पर पश्चिमोत्तासन, पद्मासन, जानुशीर्षासन, बलासन, उग्रासन। इन आसनों के यौगिक लाभ: पैर की पीछे की खुलती हुई लचीलापन, पाचन अंगों पर दबाव, लीवर, किडनी, सकरी, डायबिटीज में लाभकारी। इन आसनों की कुछ सीमाएं होती है, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका में झटके से आगे ना झुकें, अस्थमा अटैक के समय ना करें, अल्सर दस्त में पेट दबाने वाले आसन ना करें। छठा है पीछे झुकने वाले आसन। उदाहरण के तौर पर जैसे चक्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। पीछे झुकने वाले आसनों के यौगिक लाभ: छाती खुलती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, अस्थमा में लाभ होता है, रीढ़ को उल्टी दिशा में खिंचाव, कमर दर्द ठीक, एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय तथा सुस्ती दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कमर दर्द तीव्र हो तो ना करें, हार्निया, हाई बीपी, हृदय के रोग वर्डिगो में वर्जित है, गर्भावस्था में ना करें। सातवां और अंतिम भाग जो है वो संतुलन और विपरीत करणी आसन, जैसे उदाहरण के तौर पर शीर्षासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, बकासन, पादांगुष्ट आसन, तोलांगुल आसन। इन आसनों के यौगिक लाभ: हाथ कंधे बहुत मजबूत होते हैं, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह एकाग्रता, स्मृति तेज होती है, हार्मोन संतुलन, पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होती है, पाचन तेज, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इन आसनों की कुछ सीमाएं हैं, जैसे शीर्षासन सबसे जोखिम वाला है, बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करें, हाई बीपी, हृदय रोग, गर्दन दर्द, चक्कर, आँख की बीमारी में वर्जित है, महावारी गर्भावस्था में ना करें। अंत में हम यही कह सकते हैं कि स्वस्थ भारत की आधारशिला योग है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर एक स्वस्थ भारत की आधारशिला रखेंगे। धन्यवाद
1: श्रोता, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का योग पर आधारित ये भेंटवार्ता पसंद आई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का अगला ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, विज्ञान की प्रगति अब चिकित्सा जगत को इतना क्रांतिकारी मोड़ पर ले आई है जहां तकनीक हमारी रोजमर्रा की आदतों से हमारी सेहत का हाल जान सकती है। जी हां, स्वास्थ्य और तकनीक में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत तकनीक की जो आने वाले समय में बीमारियों की पहचान और उसके निदान का तरीका पूरी तरह से बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी आवाज़ आधारित स्वास्थ्य तकनीक। श्रोताओं, हम सभी का ये सामान्य अनुभव है कि जब भी हम बीमार होते हैं अक्सर हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, बैठ जाती है या उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। हमारी माँ या घर के बुज़ुर्ग अक्सर सिर्फ हमारी आवाज़ सुनकर ही तुरंत पहचान लेते हैं कि आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसी प्राकृतिक और जैविक सिद्धांत के आधार पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को जोड़कर तकनीक बनाई गई है। वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति के बोलने के तरीके, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, पिच, बोलने का तरीका, तीव्रता और शब्दों के बीच के सूक्ष्म ठहराव को बिल्कुल बारीकी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए विश्लेषण करके ये बता सकती है कि कौन सी बीमारी होने की संभावना है। विज्ञान की भाषा में इसे वोकल बायोमार्कर्स या आवाज़ के जैविक लक्षण भी कहा जाता है। ये लक्षण इतने महीन और सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य इंसानी कान से शायद इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो, लेकिन कंप्यूटर के एल्गोरिदम इन्हें कुछ ही सेकंड में पहचान लेते हैं। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि हमारी आवाज़ का सीधा संबंध हमारे श्वसन तंत्र, हमारे मस्तिष्क और हमारी तंत्रिकाओं से होता है। इसलिए जब भी शरीर के अंदर कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है या गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर हमारी आवाज़ के पैटर्न पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तकनीक एक अद्भुत क्रांति लेकर आई है। कुछ ही सेकंड की रिकॉर्डिंग से 70-90% तक की सटीकता के साथ ये बता सकती है कि व्यक्ति को डिप्रेशन या तनाव तो नहीं है। केवल मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी गंभीर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को भी वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से समझ सकती है इससे पहले कि बाकी लक्षण दिखाई देने लगें। इसी तरह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक कफ जैसी फेफड़ों की बीमारियों में भी मरीज के सांस लेने का तरीका बदल जाता है तो उसकी आवाज़ की तरंगों को ये बहुत अच्छे से समझकर डॉक्टर की मदद कर सकता है, एक ग्राफ बनाकर दे सकता है कि इस पेशेंट के लक्षणों का निदान किस तरह किया जा सकता है। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गैर आक्रामक है, यानी कोई भी शरीर में दर्द नहीं होता, कोई सुई नहीं लगती, किसी मशीन के अंदर जाकर घंटों तक बैठना नहीं पड़ता, बस आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये बहुत अच्छे से साफ तौर पर बताया है कि ये तकनीक मुख्य रूप से शुरुआती स्क्रीनिंग और बीमारी की निगरानी के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टर का विकल्प नहीं है, बस डॉक्टरों का काम आसान करने के लिए बनाया गया है। श्रोताओं, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आज के आखिरी गीत का। श्रोताओं, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास समय की बेहद कमी है तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम थोड़ा सा समापन की ओर लेकर चलते हैं। आज के स्वास्थ्य दर्पण में हमने जाना कि जहां एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर संकट के समय में तुरंत मुफ्त मदद हमें पहुंचा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी आधुनिक तकनीकों से मिलकर भविष्य में स्वास्थ्य को और ज़्यादा सुलभ और आसान और सस्ता बना सकती है। श्रोताओं, इसी के साथ आज के स्वास्थ्य दर्पण में बस इतना ही। सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे यानी महक गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमित गंगेले के स्वर में बुंदेली लोक भजन।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनिए राजेश श्रीवास्तव के स्वर में गजल।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत था फिल्म सत्ते पे सत्ता से, और जिसके लिए आवाज़ थी आशा भोसले, दिलराज कौर की, गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीत था डी बर्मन का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हमारी इसी सभा में आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आपकी पसंदीदा गीतों पर आधारित, दोपहर 2:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, तकनीक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, कानून और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी, जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही, जिसके हकदार हम हैं।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य योग आयोग और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश भर से आए योग साधकों, योगाचार्यों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर योग आयोग अध्यक्ष मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योगाचार्यों, प्रशिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की है। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमर सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी श्रद्धालुजन नदी सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जा रही है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर संभाग में अगले दो दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय टर्फ लाइन और प्री मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले चार दिनों तक प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज आंधी का दौर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी

सामान्य गति से थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन आगामी 3 से 4 दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद करने ई स्कूटर से भोपाल के भीमनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली मेधावी छात्रा जाह्नवी विश्वकर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का 1 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। आज से जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों

0: विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग

0: के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा

0: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की। महादेव घाट अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट। बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म कुदरत का गीत, जिसके लिए आवाज़ है परवीन सुल्ताना की। गीतकार है मजरू और संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना, प्राची नीमा, कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमीर पटेल, शेख जमील मंसूरी। इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है गुड्डी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है वाणी जयराम की, गीतकार है गुलजार और संगीत है वसंत देसाई का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया। इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहेब बीबी और गुलाम का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की, गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीत है हेमंत कुमार का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगली फरमाइश है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का। और इसको सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, भाटापारा दतरंगी, छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, महाराष्ट्र जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, इन सभी श्रोता ने साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म दिल अपना प्रीत पराई का ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, सोनम बोड़खे। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है मेरे सनम इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है ओपी नैयर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह परिवार, दीक्षा कुश मूड़त पवार, और इंदौर से हैं अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, रितक कुणाल, केतन बामनिया, और ये हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतंग बिरक, मीका बिरक। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म चमेली का गीत, जिसके लिए आवाज़ है सुनिधि चौहान की ही, और गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत है संदेश शांडिल का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: बावनवां जी सेवन शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब अमेरिका और ईरान ने 107 दिनों से जारी संघर्ष की समाप्ति के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर आधारित ध्यान केंद्रित किया है। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। और श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ने पहले खेलते हुए 49 ओवर और 2 गेंद में 265 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर आउट हुए। भोपाल

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। 5:33 और शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनेंगे कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन।

रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति ये कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके फरमाइश 10:30 पर होगा कार्यक्रम राग रजनी। ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रुचिरा काले का राग केदार में ख्याल गायन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। तो ये थी जानकारी आज की शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडिया वे 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:03 होने को हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनिए अमित गंगेले के स्वर में बुंदेली लोक गीत।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए आप सुनिए चित्रपट संगीत।

यारा दिलदारा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी उदित नारायण की। उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत था जतिन ललित का।

टक्कर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू की। गीतकार थे माया गोविंद और संगीत था अनु मलिक का।

आजा नचले इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी राहत फतेह अली खान की, गीतकार थे जयदीप साहनी और संगीत था संदीप सुलेमान का।

ये गीत था फिल्म रंग से, जिसके लिए आवाज़ थी अलका याग्निक, कुमार सानू की, गीतकार थे समीर और संगीत था नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए आप प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम आईना।

0: किताबें निकाल कर ज़रूर पढ़ना चाहिए, मगर लाइब्रेरी में एक किताब के बहुत से तलबगार होते हैं और कुतुब खाना हर कारी को किताब से इस्तेफादे का मौका फराहम करता है, मगर ये उस वक्त मुमकिन है जब हम लाइब्रेरी के दिए हुए मुकर्ररा वक्त पर किताब लौटा दें, ना कि खुद अपने पास रख कर भूल जाएँ। मोहतरम सामईन, खुलासा कलाम ये है कि हर इंसान तरक्की याफ्ता, खुशहाल, इज्जतदार और समाज में वजनदार इंसान बनना चाहता है। हमारी तरक्की, हमारी मादी और रूहानी खुशहाली, हमारी इज्जत बुलंदी और हमारी बुर्दबारी का राज अच्छी किताबों में छुपा हुआ है। हमारा पैगाम है कि इस शौक़ को बढ़ाइए और इतना बढ़ाइए कि आपके दिल और दिमाग में अच्छी किताबों के खुलासों की एक पुरमग़्ज़ लाइब्रेरी तैयार हो जाए।
1: दोस्तों, अभी आप हाशिम अंसारी साहब की आवाज़ में तकरीर समाअत फरमा रहे थे, जो कि किताबों का शौक़ एक खामोश इनकलाब मौजू पर मरकूज थी। इस इल्मी तकरीर ने साबित किया कि किताबों से रिश्ता दरअसल रूह की दवा की मानिंद है। किताबें महज कागज़ का ढेर नहीं, बल्कि बदलते हुए इंसानी ज़मीर का आईना है। सामईन, अदब और मौसिकी का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। जिस तरह किताबों के लफ्ज़ दिल की दुनिया बदलते हैं, इसी तरह गज़ल के अशार जब मौसिकी के सुरों में ढलते हैं तो रूह को एक अजीब सी तस्कीन मिलती है। फिक्र ख्याल की इस महफिल को अब हम एक नया रंग अता करते हैं और सुनते हैं ये गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की दिलफरेब आवाज़ में। समाप्त फरमाई।

0: दोस्तों भी आप जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में खूबसूरत गजल समात फरमा रहे थे। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक बार फिर तख्लीक की दुनिया का रुख करते हैं, जहां हम सुनेंगे विजय तिवारी साहब को।
1: गजल का मतलब पेश खिदमत है। इसीलिए तो जमाने को हम दीवाने लगे, इसीलिए तो जमाने को हम दीवाने लगे, किसी ने पूछा नहीं और हम बताने लगे। शेर ये कि वो बेवफा है जमाने से सुन रहे थे मगर, वो बेवफा है जमाने से सुन रहे थे मगर, हमें ये बात समझने में क्यों जमाने लगे, हमें ये बात समझने में क्यों जमाने लगे। ये शेर भी देखिए कि हर एक बाप की ख्वाहिश है आखिरी ख्वाहिश, हर एक बाप की ख्वाहिश है आखिरी ख्वाहिश, मेरी हयात में बेटा कमाने खाने लगे, मेरी हयात में बेटा कमाने खाने लगे। और शेर ये कि गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे। एक गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि इस कदर भी ना आजमाएं उसे, इस कदर भी ना आजमाएं उसे, बोझ लगने लगे वफाएं उसे, बोझ लगने लगे वफाएं उसे, मोल मिलता नहीं सुकून वरना, मोल मिलता नहीं सुकून वरना, आज जाएं खरीद लाएं उसे, आज जाएं खरीद लाएं उसे, दिल मकासा पड़ा है मुद्दत से, दिल मकासा पड़ा है मुद्दत से, कोई आए तो घर बनाए उसे, कोई आए तो घर बनाए उसे। और शेर ये कि कल तलक दाएं बाएं थे उसके, कल तलक दाएं बाएं थे उसके, कर रहे हैं जो दाएं बाएं उसे, कर रहे हैं जो दाएं बाएं उसे। शेर आखिर ये कि इश्क मजहब है मरने वाले का, इश्क मजहब है मरने वाले का, कहिए दफनाएं या जलाएं उसे, कहिए दफनाएं या जलाएं उसे। और एक गज़ल का मतलब आपकी समातों के नाम, वक्त के नाम से क्यों आदमी घबराता है, वक्त के नाम से क्यों आदमी घबराता है, वक्त आता है गुजरता है गुजर जाता है, वक्त आता है गुजरता है गुजर जाता है, शायरी क्या है खुदा।

जाने मगर लगता है, शायरी क्या है खुदा जाने मगर लगता है, दर्द बढ़ता है तो कागज़ पे बिखर जाता है, दर्द बढ़ता है तो कागज़ पे बिखर जाता है। और शेर जी बराजा फरमाए कि ऐसा लगता है कि दो लाश हों एक मैयत में, ऐसा लगता है कि दो लाश हों एक मैयत में, बाप के कांधे पे जब लगते जिगर जाता है, बाप के कांधे पे जब लगते जिगर जाता है। और गज़ल पेश खिदमत है, मतलब यूँ कहा है कि इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे मैखाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे मैखाना मुझे। शेर ये कि खो गया था मुख्तलिफ किरदार में मेरा वजूद, खो गया था मुख्तलिफ किरदार में मेरा वजूद, वो तो एक दिन मौत आई उसने पहचाना मुझे, वो तो एक दिन मौत आई उसने पहचाना मुझे। और शेर ये कि शाह की दावत को ठुकराते हुए बोला फ़कीर, शाह की दावत को ठुकराते हुए बोला फ़कीर, रिज़्क का वादा है जिसका देगा वो खाना मुझे, रिज़्क का वादा है जिसका देगा वो खाना मुझे। और मकता ये कि वक्त रुख्सत लाजमी है ये ख्याल आना विजय, वक्त रुख्सत लाजमी है ये ख्याल आना विजय, इस कफ़स के बाद जाने किस कफ़स जाना मुझे, इस कफ़स के बाद जाने किस कफ़स जाना मुझे। और एक गज़ल का मतलब दोस्तों कि कल तेरे गुजरे दिनों का आईना हो जाऊँगा, कल तेरे गुजरे दिनों का आईना हो जाऊँगा, जख्म दिल हूँ जब कुरेदोगे हरा हो जाऊँगा, जख्म दिल हूँ जब कुरेदोगे हरा हो जाऊँगा, आज बिगड़ा है मुकद्दर इसलिए ठोकर पे हूँ, आज बिगड़ा है मुकद्दर इसलिए ठोकर पे हूँ, कल तराशा जाऊँगा और देवता हो जाऊँगा, कल तराशा जाऊँगा और देवता हो जाऊँगा। शेर बतौर ख़ास ये कि थक गया हूँ इम्तहाने बा वफा दे दे के मैं, थक गया हूँ इम्तहाने बा वफा दे दे के मैं, अब तो लगता है किसी दिन बेवफा हो जाऊँगा, अब तो लगता है किसी दिन बेवफा हो जाऊँगा। शेर आखिर ये कि आज चेहरा हूँ तो मुझ में खामियाँ गिनते हो तुम, आज चेहरा हूँ तो मुझ में खामियाँ गिनते हो तुम, क्या करोगे कल अगर मैं आईना हो जाऊँगा, क्या करोगे कल अगर मैं आईना हो जाऊँगा। मकता ये कि ख्वाब में बोले पिताजी मैं न कहता था विजय, ख्वाब में बोले पिताजी मैं न कहता था विजय, आज हूँ मैं साथ तेरे कल जुदा हो जाऊँगा, आज हूँ मैं साथ तेरे कल जुदा हो जाऊँगा। और दोस्तों तरन्नुम में कुछ अशार पढ़ना चाहते हैं, मतलब समाप्त करें। सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे,

थे, सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। और बतौर खास ये शेर भी सुनिए कि वही

जवानी में हम थे मक्ता और आपकी जहमत तमाम। विजय हमको यूसुफ भी कहती थी दुनिया, विजय हमको यू

0: हम थे। बहुत शुक्रिया।
1: सामईन इकराम, अभी आप विजय तिवारी साहब के कलाम से महसूस हो रहे थे। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अपने गिरा कद्र तासुरात और तजावीज हमें मकातीब के जरिए जरूर रसाल करें। हमारा पता नोट फरमाइए। उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। उर्दू प्रोग्राम आईना को हर सोमवार सुबह 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।
2: ये था उर्दू कार्यक्रम आईना, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रामू और बामू ठाकुर साहब से मिलते हैं और शास्त्री यशवंत और बलबीर स्वामी के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। पुलिस कुछ मजदूरों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बात को लेकर बलबीर स्वामी और यशवंत के बीच बातचीत होती है। बलबीर स्वामी कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना देने का सुझाव देता है। बलबीर स्वामी यूनियन के सचिव कालूराम के साथ खलासी लंगर में यूनियन के फंड से नशा करते हैं। बसुमती काकी उनकी बातें सुन लेती है और आकर नारायणी को बताती है। इस बात के लिए नारायणी यशवंत से मिलती है और उसे आड़े हाथों लेती है। रामू और बामू चोरी छिपे कंपनी के कलपुर्जे बेचने शुरू कर देते हैं। कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना दिया जाता है। ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाते हैं और 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60 मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव रखते हैं। बातचीत टूट जाती है। रामू और बामू को पता चलता है कि रात को ठाकुर साहब के घर कोई औरत चोरी छिपे आती है। उनका शक भृगु की बहन पार्वती पर जाता है। दोनों रात के समय ठाकुर के घर की निगरानी करते हैं और औरत को पकड़ लेते हैं। तभी यशवंत वहां आता है और नारायणी को देखकर चौंक जाता है। अब आगे

0: तुम दोनों ने नारायणी से जो भी लिया है उसे वापस करो और इसे बैरक तक छोड़ कर आओ।
1: अरे हमें क्या कर दिया उसे बैरक तक छोड़ कर आओ।
0: जबान संभाल कर बात कर रामू।
2: अरे ठहरो।
0: पलवीर स्वामी तुम?
2: हाँ मैं। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि नारायणी ठाकुर साहब के पास क्यों आई थी। आओ मेरे पीछे आओ। जहां से तुम आ रही हो ठाकुर साहब के घर।
0: हाँ ठीक है चलो तुम भी आओ रामू बाबू।
3: चल भाई चल।
2: ठाकुर साहब। अरे ओ ठाकुर साहब।
4: अरे कौन है जो इतनी रात गया आया है?
2: दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा।
4: अरे ठहरो भाई खोलता हूँ दरवाजा।
5: अरे तुम लोग तो यूनियन के आदमी हो
2: जी। हाँ हम यूनियन के आदमी हैं और ठीक तरह से जवाब दीजिए क्या नारायणी खुद आपके पास आई थी या आपने बुलाया था उसे?
5: बोलिए क्या मतलब?
2: मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं बस हमें ठीक ठाक जवाब दीजिए वरना मैं घर को आग लगा दूंगा।
6: ठाकुर साहब जवाब दीजिए नारायणी यहाँ क्यों आई थी बताइए इनको।
5: ये औरत आधी रात को मेरे पास पैसे मांगने आई थी। अरे इन सब लोगों के बारे में बिना सोचे विचारे कैसे हड़ताल कर रहे हो तुम लोग? अगले 4 दिन के बाद ये भूख से मर जाएंगे।
2: चुप। हम यहाँ तुमसे सलाह लेने नहीं आए हैं। तुम बताओ नारायणी क्या साहब सच कह रहे हैं? जवाब दो।
0: जवाब दो नारायणी चुप क्यों हो?
2: मौना स्वीकृति ही लक्षणम। मारो इसे। मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दो ताकि फिर ये कभी ऐसा काम करने का साहस न करे।
6: मारो मारो।
0: ठहरो ठहरो रुक जाओ मैं कहता हूँ रुक जाओ। अब सुनो इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ।
7: यशवंत बाबू
0: तुम चुप रहो नारायणी तुम चुप रहो। देखो बलबीर स्वामी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि नारायणी से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
2: अच्छा ठीक है पहली गलती है इसलिए माफ कर देते हैं लेकिन इसे अच्छी तरह से समझा देना कि फिर कभी ऐसी गलती ना करे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
0: अब तुम चिंता ना करो बलबीर स्वामी मैं इसे सब समझा दूंगा। अब चलो नारायणी मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ।

0: इसका मतलब क्या हुआ?
1: इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी किसी भी तरह हमारी हड़ताल को तोड़ना चाहती है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि मजदूरों का हड़ताल पर से विश्वास डगमगा जाएगा और वो काम पर वापस लौट आएंगे।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा बलवीर स्वामी, हमारी हड़ताल तो विफल हो जाएगी।
1: नहीं यशवंत, नहीं, हमारी हड़ताल विफल नहीं होगी, हम कामयाब होंगे, मुझ पर भरोसा रखो।
0: अच्छा, ये नए मजदूर परमानेंट हैं या दिहाड़ी पर हैं?
1: वैसे यशवंत, क्यों ना हम इन मजदूरों को भी यूनियन का सदस्य बना लें और इन्हें भी हड़ताल में शामिल कर लें। लेकिन यशवंत, ये संभव नहीं है।
0: अब क्यों, क्या नए मजदूर हमारा साथ नहीं देंगे बलबीर?
1: यशवंत, इन मजदूरों को इसी शर्त पर काम पर रखा गया है कि न तो ये यूनियन के सदस्य बनेंगे और न ही कभी हड़ताल करेंगे। बाकायदा इन मजदूरों से कंपनी की शर्तों पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इन मजदूरों को पीस वर्कर का नाम दिया गया है।
0: देखो बलबीर स्वामी, मजदूरों की हड़ताल को आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। अरे मजदूरों के घरों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे बूढ़े जवान सभी भूख की आग में जल रहे हैं। ऐसे में हड़ताल को और कितने दिनों तक खींचा जा सकता है?
1: यशवंत, जब तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मजदूरों को हिम्मत कौन बंधाएगा? हौसला रखो, हौसला ही हम सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: लेकिन भूखे पेट कोई हौसला रखे भी तो कब तक? कब तक बलबीर स्वामी, कब तक?
1: मजदूरों की पीड़ा समझने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनकी पीड़ा दूर भी करनी होगी। हाँ, मजदूरों की पीड़ा दूर होगी तभी उनमें नए उत्साह का संचार होगा। और तो और, दुख की बात तो यह है कि हमने यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मुख्यालय भेजा था वो अभी तक लौट कर नहीं आया है।
0: अब
1: फिर भी तुम चिंता मत करो, हम शास्त्री जी से इस विषय में बात करेंगे।
0: ठीक है। अरे बलबीर,
1: हाँ,
0: ये कौन आ रहा है?
1: अरे अरे कालू राम, तुम इस वक्त यहाँ?
2: अरे हाँ बलवीर भाई, वो क्या है कि शास्त्री जी के यहाँ से खबर आई है कि दिल्ली गया हुआ हमारा प्रतिनिधि मंडल वापिस लौट रहा है।
0: हाँ,
1: अरे
0: हाँ,
1: वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने।
0: हाँ,
1: अब चिंता की कोई बात नहीं यशवंत, मुख्यालय से आने वाले आदमी कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी, सारे मजदूर परमानेंट होंगे और कोई भी दिहाड़ी मजदूर नहीं रहेगा।
0: अब हम लोग शास्त्री जी से मिलने कब चल रहे हैं बलबीर?
1: परसों सुबह। हाँ, एक बात और।
0: अरे अब कौन सी बात रह गई?
1: देखो, शाम के वक्त जब नए मजदूरों को पगार मिलती है उस समय तुम अपने मजदूर साथियों के साथ जुलूस निकालोगे, नारे लगवाओगे तुम।
0: लेकिन बलबीर, इससे तो हमारा पीस वर्करों के साथ संघर्ष हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है।
2: अरे तो कोई परवाह नहीं। देखो यशवंत भाई, अगर कुछ मजदूरों का खून बहता है तो बह जाने दो।
0: क्या?
3: दादी माँ, दादी माँ।
4: हाँ बेटी।
3: कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दो।
4: घर में एक दाना नहीं है बेटी, एक भी दाना नहीं है, हम भी कई दिन से भूखे हैं।
3: दादी,
4: भला तुझे कहाँ से खाने को दें?
3: दादी माँ, अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी।
4: पार्वती,
3: मैं मरना नहीं चाहती दादी, मैं मरना नहीं चाहती।
4: पार्वती,
3: मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी।
4: अब तू क्यों रो रहा है भृगु?
5: कितना लाचार हूँ मैं, कितना लाचार, अपनी बेटी और बूढ़ी माँ का पेट तक नहीं भर सकता मैं।
4: अरे आग लगे यूनियन बाजी को, जिसने हमारे बच्चों के पेट से रोटी छीन ली। अरे क्या फायदा हुआ इस हड़ताल से, क्या फायदा हुआ?
3: बापू मत रो, बापू मत रो दादी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, अगर भूख लगेगी तो पानी पी लूंगी, मगर आप लोग मत रो बापू, मत रो दादी।

0: शास्त्री जी, धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। अरे सफाई कर्मचारियों की हालत और भी खराब हो गई है। मुंशीगंज के किसान गेहूं देने से मना कर रहे हैं। पीस वर्कर और हमारे मजदूरों के बीच देखिए कभी भी झगड़ा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, खून की नदियां बह सकती हैं शास्त्री जी, खून की नदियां।
1: अच्छा देखो भाई, मुख्यालय से प्रतिनिधियों को आने दो, फिर हम सब मिलकर कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
0: हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है शास्त्री जी। पिछली सरकार ने सन 1976 का बोनस नहीं दिया, नई सरकार ने यह बिल पास किया है, लेकिन कंपनी 1977 में यह बोनस देने का वादा करके भी मुकर रही है। फिर हमारी तीसरी मांग यानी मजदूरों की छटनी बंद करने का फैसला पहली बैठक में नहीं लिया जा सका था, दूसरी बैठक में ही इसका कोई फैसला हो सकता है शास्त्री जी।
1: ओफो, अरे तुम लोगों के पास आत्मबल नहीं है, बिना किसी ज्ञान के नेता बनने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है।
0: अब
1: मुझे सलाह देने आए हो तो सुनो, ये हड़ताल चलती रहेगी समझो तुम।
0: शास्त्री जी, सुनने में आया है कि दिल्ली मुख्यालय से प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है।
1: आ तो रहा है, तो फिर
0: हमारी यूनियन चाहती है कि यूनियन के स्थानीय नेता यानी हम लोग उनसे मिले, कंपनी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत में शामिल हों।
1: सुनो मेरी बात, मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ तुम लोगों की बैठक नहीं हो सकती, समझे?
0: लेकिन शास्त्री जी।
1: लेकिन कुछ नहीं, दिखाई मत दिखाओ। अरे तुम लोगों में कितना जोश है भाई, मुख्यालय वालों को भी जानने दो। अरे मैं लीगल फाइट करवा दूंगा, लीगल फाइट। आसपास के दूसरे कारखानों में भी टोकन स्ट्राइक शुरू हो जाएगी।
0: हमारे फंड में बिल्कुल पैसा नहीं है शास्त्री जी, बाहर से कोई सहायता भी नहीं आई है, ऐसी स्थिति में और दूर तक सोचना भी असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन। आपको पता है हड़ताली मजदूरों में भुखमरी फैल गई है। अरे कुछ दिन बाद मजदूरों की लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, तब क्या होगा शास्त्री जी, तब क्या होगा?
1: ये सब उस लेबर इंस्पेक्टर का किया धरा है, वही मुंशीगंज के किसानों को तुम मजदूरों के खिलाफ भड़का रहा है।
0: क्या वो मोटा लेबर इंस्पेक्टर लोगों को भड़का रहा है?
1: हाँ, मुझे पक्की खबर मिली है। अरे कुछ दिन पहले वो किसानों से कहता फिर रहा था कि
2: सुनो मुंशीगंज के किसानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी किसान हड़ताली मजदूरों की मदद नहीं करेगा, उन्हें गेहूं चावल उधार नहीं देगा।
3: हाँ बिल्कुल नहीं देगा, ये हड़ताल गैर कानूनी है। अरे भूखा रहने पर जब मजदूरों का पेट उनकी पीठ से चिपक जाएगा तो हड़ताल का नशा भी उतर जाएगा।
2: लेकिन कुछ नहीं, ये कंपनी अपने मजदूरों को दूसरी कंपनियों से 30% अधिक देती है। द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड विद द प्राइस अंडर।
4: अरे इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर कर रहे हो?
3: अरे होगा कोई कानून? सुनो, अगर अब हम मजदूरों की मदद करेंगे तो हमें भी जेल हो जाएगी।
2: गुड, वेरी गुड। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
3: हाँ
5: ये क्या है?
1: दुश्मन का सामना करना सीखो। अरे फंड खत्म हो गया है तो दिमाग से काम लो, दिमाग से। सुनो, सुना है एक ट्रक में भरकर कंपनी की सीमेंट रायबरेली पहुंच रही है, समझ से काम लो, समझ से।
0: लेकिन इससे भयानक कांड हो सकता है शास्त्री जी।
6: पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है, गोलीबारी भी हो सकती है।
1: धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है तुम लोगों पर। ओ तुम लोग ऐसे काम के लायक हो ही नहीं। जाओ, अरे जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से।
7: चलो
6: अरे यशवंत, आज ये कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस ही है ना?
0: अरे हाँ, ये तो नया नोटिस है। आज की तारीख है इस पर।
6: जरा पढ़कर तो सुनाओ, मैं अपना चश्मा भूल आया हूँ।
0: हाँ पढ़ता हूँ। लिखा है, यूनियन के नेताओं, तुम लोगों ने मजदूरों को गलत रास्ता दिखाया है। तुम लोगों ने अपनी बेबुनियाद मांग रखकर कंपनी को धमकी दी है।
6: अच्छा,
0: काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूरों की छटाई होगी, ये कंपनी का कानून सम्मत काम है।

0: उच्चतम न्यायालय भी इसे मानेगा।
1: ओह, तो अब कंपनी यूनियन को कमजोर करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आई है, नए नए हथकंडे अपना रही है।
0: लेकिन बलबीर, अगर उच्चतम न्यायालय ने सचमुच कंपनी के इस नोटिस को मान्यता दे दी तो क्या होगा? अरे बेचारे दिहाड़ी मजदूर तो कहीं के नहीं रहेंगे।
1: चिंता मत कर यशवंत, अंत में जीत हमारी ही होगी, मजदूरों को उनका हक मिलकर रहेगा। आखिर जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल दिए हैं, क्या उनका कंपनी पर कोई हक नहीं बनता?
0: अरे बिना मजदूरों के कंपनी का क्या अस्तित्व? उन मजदूरों का कंपनी पर पूरा हक है।
1: हाँ।
0: अपने खून पसीने से सींचा है मजदूरों ने इस कंपनी को।
1: जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मजदूरों को उनके हक से वंचित नहीं होने देंगे। और इसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।
0: ठीक कहते हो बलबीर।

कितने दिन हो गए खाना खाए, ठीक से याद भी नहीं, सूख कर कांटा हो गई हूं। मेरा बच्चा भी भूख से किस तरह बिलबिला रहा है, और मेरा बीमार पति वो तो कंकाल बनकर रह गया है। हे भगवान, कब तक जिंदा रह पाएंगे हम लोग इस तरह।

0: क्या हड़ताल हम लोगों की जिंदगी यहां लील जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कमजोरी के कारण मेरा सिर चकराने लगा है। एक कदम आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। क्या करूं मैं, क्या करूं, कहां जाऊं। भूख भी तो लगी है ना। याद आया, परसों कच्चे तरबूज को सूखे कांटों से ढककर आई थी मैं, ताकि किसी की निगाह उस पर ना पड़े। हाँ, चलकर तरबूज खाती हूँ। हाँ, कुछ तो भूख मिटेगी। जल्दी चलूँ, कहीं कोई दूसरा या कोई जानवर ही ना खा गया हो। हाँ, मुझे जल्दी चलना चाहिए। अरे ये क्या, तरबूज तो कोई खा गया। या तो तरबूज के छिलकों के खाली टुकड़े पड़े हुए हैं। किस तरह ढक छिपा कर गई थी मैं उसे, पता नहीं किसकी निगाह पड़ गई। क्या करूं, पता नहीं किसने खाया होगा मेरे इस तरबूज को। किसने खाया होगा। अरे यहां तो बसुमती काकी बैठी हुई है। जरूर इसी ने मेरा तरबूज चबा चबा कर खा डाला है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं बसुमती काकी।
1: अरे कौन, नारायणी, आजा, यहाँ बैठ। देख, एक तरबूज लगा हुआ था। अरे बंदरों की नजर तो नहीं पड़ी, हमारी पड़ गई। है बहुत दिन के बाद पेट में गया। दो चार दिन और जी लेंगे हम। क्या बात?

0: बात है नारायणी? अरे तो मुंह लटकाए क्यों खड़ी है?
1: राक्षसनी बुढ़िया, कितना छिपा कर रखा मैंने इसे, फिर भी तेरी कित निगाह पड़ गई इस पर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे बाल रोज लूंगी।
0: कैसी बात कर रही है नारायणी तू?
1: मेरे तरबूज
0: नारायणी। अरे हम तेरा दुख समझते हैं।
2: हाय हाय हाय हाय, देख तो तेरा शरीर कीड़े लगे पपीते जैसा ढीला पड़ गया है। हाय हाय हाय,
1: काकी
2: नारायणी,
1: वो तरबूज मैंने अपने लिए छिपाया था, क्यों खा लिया तुमने? क्यों?
0: अरे ये जमीन क्या तेरे बाप की है, है? जो उस तरबूज को अपना बता रही है? क्या तू नहीं जानती, दो दिन पहले जंगली जलेबी को लेकर भयंकर मारपीट हो गई थी। चल छोड़ ये सब, छोड़, यहाँ बैठ मेरे पास, आजा। ये तो गुमसुम कैसे बैठ गई? नारायणी पेट में बच्चा बच्चा है क्या?
1: काकी
0: अरे सुन, हम छठवें महीना में भी पेट से बच्चा निकाल सकते हैं।
2: हाँ, जैसे जंगली डूमर का फल काटकर उसका बीज निकाला जाता है।
0: अरे सुन तो, जंगली जलेबी के रस से हम दवाई बना सकते हैं।
2: अरे कंवर बेद में जब हम रहते थे ना, तो ऊंट के मुंह से निकलने वाली झाग से दवाई बनानी सीखी थी। बहुत बढ़िया दवाई होती है ये, सांप के जहर से भी तीखी। हाँ तू कहे तो तेरे लिए दवा बना दूं, हैं?
0: अरे कंवर बेद में हमने एक औरत से खास दवाई बनानी सीखी थी। मुंह काला करके आई औरत को मरघट ले जाकर।
1: चुप रह बुढ़िया, वरना तेरा गला घोट दूंगी मैं।
0: अरे नारायणी, है? अरे रे रे, हम जानते हैं तुझे बच्चा गिराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको तो पता है, ठाकुर साहब को ध्वजपात की बीमारी है।
1: क्या?
0: तू चिंता न कर नारायणी, हमको सब याद है। अरे तूने भी सुना होगा, बेकी नदी पर बने पुल पर हमारा काम लगा हुआ था। बाप रे, भयानक बारिश, बिजली की चमक और गर्जन, 5 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश, और जब बारिश कम होती तभी काम शुरू होता। तब हम साहब के कपड़े धोते थे, उस समय लकड़ी के फट्टे पर से कई मजदूरन का पैर फिसल गया। अरे बहुत से तो मजदूर धड़ाम से गिरे, और एक मजदूर के सीने में तो सरिया आर पार हो गया था। हाय हाय, वो तो तुरंत ही मर गया था, और 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
1: ए बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू?
0: ये बकबक नहीं है रानी। अरे बहुत कम लोगों को पता है कि मजदूरों के साथ ठाकुर साहब भी गिर गए थे। हाँ, और ये तो बाद में पता लगा कि बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो गई उनकी। हाँ
1: काकी, तुम सच कह रही हो ना?
2: और नहीं तो क्या, अरे हम ऐसे ही रामायण गाते हैं। अरे हमारी बात बिल्कुल सच है नारायणी।
1: इसका मतलब आप मानती हैं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा ठाकुर साहब से कोई गलत रिश्ता नहीं है।
0: कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं।
1: ओ काकी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। काकी मुझे माफ कर दो।
0: अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है नारायणी, ये भूख जो करवाए सो कम है। अरे भूख तो एक माँ को बेटे का मांस खिला देती है, एक बेटे का मांस माँ को।
1: काकी एक तुम ही हो जिसने मेरे चरित्र पर विश्वास किया, वरना सब के सब मुझे गलत समझते हैं काकी, गलत समझते हैं।
0: नारायणी ये नारा सुन रही है तू? होशियार रहे, ये नारा किसी का नहीं है। अरे रुपए की झंझनाहट सारे नाश को कब्र में ले जाएगी।
2: ये नारा तो मुझे भी कब्र में ले जाने के लिए ही बना है। अरे इससे किसी की भलाई नहीं होगी। ये देख, ये मेरी कुबड़ी पीठ देख, अरे हमारे बालक देख, अरे अपने लड़के की हालत देख, ये सब हालत

0: हड़ताल और नारों की देन है।
1: हाँ काकी,
0: आज हम पर कुत्ते भौंकते, बालक पत्थर मारते हैं, अब तो हमारे मरने के दिन दूर नहीं है। ये नारा हम बहुत सुन चुके, बहुत सुन लिया ये नारा। ये जो नेता मजदूरी करने वाले मजदूरों को भूखा रख के हड़ताल करते हैं ना, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हमारा अभिशाप है ये, सारे के सारे मजदूरन का अभिशाप है ये। अरे कीड़े पड़ेंगे ऐसे नेताओं के शरीर में, हम बता देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित

खुद को उम्मीदों से सजाना ज़रूरी है, ज़िंदगी खुशनुमा बनाना ज़रूरी है, हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी पूजा पांडे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की, जानेंगे ग्रुप डिस्कशन से होने वाले पर्सनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, साथ ही सुनेंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गीत। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म बदलापुर से, जिसमें स्वर थे आतिफ असलम के, गीतकार हैं दिनेश विजन और संगीतकार सचिन जिगर। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो सबसे मजबूत दीवार होती है ना, वो ईंट पत्थर की नहीं होती, वो हमारे घर के बुजुर्गों के तजुर्बे और उनके आशीर्वाद की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी आशीर्वाद को संजोने के लिए एक पूरा दिन डेडिकेट करना पड़ा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की, इतिहास की। ये खास दिन हर साल आज ही यानी 15 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दरअसल बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, अकेलेपन और आर्थिक शोषण को लंबे समय तक समाज में गुप्त या फिर घरेलू मामला माना जाता था। इस गंभीर विषय पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की थी। दोस्तों, दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून को संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को कैलेंडर में शामिल कर लिया, जिसने इस अभियान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ एनफोर्समेंट और मॉरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। संयुक्त राष्ट्र की इस मुहर का ही परिणाम था कि भारत के साथ दुनिया भर की सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए कड़े कानून बनाए, मेंटेनेंस टर्बुलेंस एस्टेब्लिश करने और डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जैसे सख्त कदम उठाए। दोस्तों, हर साल यूनाइटेड नेशंस एक थीम डिसाइड करता है, जिससे दुनिया को ये बताया जाता है कि इस पूरे साल हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करें इस साल की, तो साल 2026 की ऑफिशियल थीम यूनाइटेड नेशंस द्वारा बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, यानी जागरूकता से आगे बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम को प्रभावी बनाना तय की गई है। ये थीम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समाज अब सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानने या उसके बारे में बात करने के दौर से बहुत आगे निकल चुका है। अब ज़मीन पर ठोस कानून, नियम और सुरक्षा प्रणाली लागू करने का वक्त है। पिछले 20 सालों में दुनिया भर में इस बात को लेकर काफ़ी अवेयरनेस फैली है कि बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं है। साल 2026 की थीम इस बात पर जोर देती है कि अब हमें आगे बढ़कर ऐसे सिस्टम्स तैयार करने होंगे जो रियलिटी में उनकी रक्षा करें और अपराध होने से पहले ही उसे रोक सकें। साथियों, आगे जानेंगे हम कि इस दिन को कैसे मना सकते हैं, लेकिन आइए पहले सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे गीत फिल्म पीके से, जिसमें स्वर थे शान और श्रेया घोषाल के, गीतकार सुवंद किरकिरे और संगीतकार शांतनु मोइत्रा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये दिन को यादगार बनाने की शुरुआत हम अपने खुद के घर से कर सकते हैं, जहां हम अपने दादा दादी या माता पिता के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वह हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। हम उन्हें किसी पास के ही पार्क या मंदिर घुमाने ले जा सकते हैं। वैसे तो ये रूटीन बेसिस पे करवाना ही चाहिए, लेकिन आज के दिन को और स्पेशल बनाते हुए हमें उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस दिन उनका एक मेडिकल चेकअप भी ज़रूर करवाना चाहिए। दोस्तों, बात करें भारत में तो इस दिन को बहुत ही सीधे और आसान तरीके से मनाया जाता है, ताकि लोग बुज़ुर्गों के दुख दर्द को समझ सकें। इस दिन स्कूल और कॉलेज के बच्चे पास के वृद्धाश्रम में रहते हैं और उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए उनके साथ बातचीत करते हैं। कई जगहों पर डॉक्टरों की मदद से बुज़ुर्गों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप लगाए जाते हैं, जहाँ सेहत की जाँच मुफ्त में की जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत में इस दिन को मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे देश का हर बुज़ुर्ग खुश रहे, सुरक्षित रहे और उन्हें अपने ही घर में पूरा सम्मान मिले। साथियों, अब समय हो गया है रोज़गार सूचना का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रेंटिसशिप के 4,500 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला मज़ेदार गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म बार बार देखो से, जिसमें स्वर संगीत और गीत तीनों ही है अर्को प्रावो मुखर्जी का। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? कोई लोग कहेगा अंधेरा या कुछ लोग कहेंगे ऊंचाई, लेकिन रिसर्च कहती हैं कि लोगों का सबसे ज़्यादा डर चार इंसानों के सामने खड़े होकर बोलने से लगता है, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से लगता है। ऐसे में ग्रुप डिस्कशन आपके उस डर को भगाने में मदद करता है। आइए जानते हैं ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन का सीधा मतलब होता है किसी एक टॉपिक पर लोगों के ग्रुप यानी कि समूह द्वारा आपस में की जाने वाली चर्चा। जब 8 से 12 लोगों को एक साथ एक ग्रुप में बांट दिया जाता है और उन्हें बातचीत करने के लिए कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इसमें सभी लोग बारी बारी से उस टॉपिक पर अपने अपने विचार, ज्ञान और राय सामने रखते हैं। इसका मोटिव किसी मुद्दे या फिर विषय को अच्छे से समझने और एक सही नतीजे पर पहुंचने है। कंपनियां और कॉलेजेस इसका यूज़ ये देखने के लिए करते हैं कि आप लोगों के बीच बैठकर कैसे बात करते हैं और आपका बिहेवियर कैसा होता है। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन हमारे अंदर से पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फियर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता है। जब हम किसी बड़े स्टेज पर हजारों अनजान लोगों के सामने खड़े होते हैं तो घबराहट होना बेहद लाजमी है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में हम सिर्फ 8 से 10 लोगों की एक छोटे और सुरक्षित समूह के बीच में ही बैठते हैं। यहाँ हमें खड़े होकर लंबे भाषण देने का कोई प्रेशर नहीं होता, बल्कि अपनी बात को छोटे छोटे पॉइंट्स में कहना होता है। लोगों से आमने सामने बात करने से हमारे अंदर की सोशल एंग्जाइटी और हाथ पैर का कांपना अपने आप कम हो जाता है। सामने बैठे लोगों से आई कांटेक्ट करना भी एक बड़े हॉल के कंपैरिजन में काफ़ी आसान होता है। डिस्कशन के दौरान अगर हम कहीं थोड़ा बहुत अटकते भी हैं तो ग्रुप के दूसरे मेंबर बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे ऊपर से मेंटल प्रेशर हट जाता है। जब बाकी लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर सहमति जताते हैं तो हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। ये बार बार होने वाला प्रैक्टिस हमारे मन से दूसरों के सामने बोलने की झिझक को हमेशा के लिए मिटा

0: बढ़ा देता है। धीरे धीरे हमारा यही कॉन्फिडेंस हमें एक बेहतरीन और निडर पब्लिक स्पीकर बना देता है। साथियों, कार्यक्रम में आगे जानेंगे कैसे ग्रुप डिस्कशन हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: जवान पीछे से गाना गाएगा,

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म केसरी से, जिसमें स्वर थे रूमी के और ब्रजेश शांडिल्य के। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार तनिष बागची। आइए बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन से होने वाले हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की। इसमें सबसे पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस। ग्रुप डिस्कशन से हमारे यूजुअल बिहेवियर को बहुत शांति और मैच्योर हो जाते हैं हम। अक्सर जब कोई आम जिंदगी में हमारी बात को काटता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में जब 10 लोग हमारे विचारों का विरोध करते हैं तब भी हमें शांत रहकर अपनी बात को लॉजिक के साथ रखना होता है। ये प्रैक्टिस हमें सिखाता है कि गुस्से या इमोशंस में बहे बिना ही किस प्रकार बहस को शांति से संभाला जा सकता है। साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट है ओपन माइंडनेस एंड सोशल अवेयरनेस। GD यानी ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए हमारे सोचने का नज़रिया बहुत बड़ा और खुला हो जाता है। जब हम किसी एक टॉपिक पर अलग अलग बैकग्राउंड और सोच वाले लोगों के विचार सुनते हैं तब हमें समझ आता है कि दुनिया में कई अलग माइंडसेट्स होते हैं। इसमें हमारे अंदर का संकुचित दायरा ख़त्म होता है और हम दूसरों के पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण को भी जगह देना शुरू करते हैं। हमारा ये व्यवहार हमें समाज में एक समझदार, दयालु और फ्लेक्सिबल इंसान बनाता है, जो किसी भी नए माहौल या फिर नए लोगों के बीच में बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। साथियों तीसरा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज। ये प्रोसेस हमारी बाहरी पर्सनालिटी यानी उठने बैठने और बात करने के तरीके को पूरी तरह सुधार देती है। ग्रुप डिस्कशन में बैठकर बात करते समय हमें सिखाया जाता है कि हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए और बात करते समय सामने वाले की आँखों में देखना यानी कि सबसे आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए। ये लगातार होने वाले प्रैक्टिसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। साथियों ये तीनों चीज़ें जब एक इंसान के बिहेवियर और एक्शंस में दिखने लगते हैं तब उसे एक अलग ही एनर्जी, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को बाकियों के मुकाबले एक अलग जगह देता है। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो।

या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स हो। साथ ही हमने बात की ग्रुप डिस्कशन से होने वाले फायदे और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म गब्बर से गीत, जिसमें स्वर थे अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल के। गीतकार हैं मनोज यादव और संगीतकार चितरंजन भट्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा पांडे मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल धड़कने दो का बहुत ही प्यारा सा गीत, यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आजा नचले से। आवाज़ राहत फतेह अली खान की है, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप साहनी के।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मीर ब्रॉस के संगीत से सजा गीत कुमार के बोल हैं, फिल्म का नाम बागी और आवाज़ें हैं मीर ब्रॉस और मोनाली ठाकुर की।

फिल्म बागी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

महारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण है डेटा की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि आज डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला का पहला वनडे जीतकर 1-0 से आगे है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। जय हिंद जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया। इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
1: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है।
0: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
1: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: श्रोताओं इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है।
1: इसका उत्तर है साथियों ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा फेसबुक लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए

0: मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
1: वो जोर से हंसा।
2: बुद्धू कौआ।
1: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
1: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
1: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
3: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
1: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
1: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
1: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
3: तो फिर?
1: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
1: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का

0: एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
2: सात का पहाड़ा सुनो।
3: सात एकम सात,
4: सात एकम सात,
3: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
5: आ गया,
1: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
1: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
6: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
6: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
6: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
6: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
1: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
6: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला।

0: वो कंचा।
1: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
0: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
0: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
0: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो झिझकता रहा।
1: ऑन द बेंच।

0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
4: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और

0: किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा साया फिल्म का गीत, राजा मेहंदी अली खान का शब्द है और संगीत मदन मोहन के।

पगला कहीं का। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज कल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। विषय है रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष। आलेख श्री अनिल माथुर, पूर्व संचालक जनसंपर्क विभाग और रेडियो प्रसारक भोपाल।

भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 1927 में प्रसारण शुरू किया। कुछ साल बाद 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। हिंदी भाषा में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। उस दौर में रेडियो संचार का सबसे सशक्त और लोकप्रिय माध्यम था। वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे रेडियो से सूचनाएं लेते थे। रेडियो मनोरंजन का भी बड़ा साधन बन गया था। रेडियो सीलोन ने हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम शुरू किए जिन्हें भारत में बड़े चाव से सुना जाता था। तब आकाशवाणी ने अपनी अलग मनोरंजन सेवा की शुरुआत की जिसे विविध भारती का नाम दिया गया। धीरे धीरे अपने फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों से विविध भारती इतनी लोकप्रिय हो गई कि रेडियो सीलोन के श्रोता

0: नाम मात्र के रह गए। आधुनिक दौर में निजी रेडियो चैनलों से प्रसारण आरंभ हो गया। युवाओं को आकर्षित करने के लिए इन चैनलों ने नित नए प्रयोग किए और ये क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। इनके प्रस्तुतिकरण में वो सब शामिल किया गया है जो आज के युवा वर्ग को आकर्षित करता है। निजी एफएम चैनल का प्रसारण 40 किलोमीटर तक सीमित है, इसके बाद इन चैनलों को सुनना मुश्किल होता है। इसके विपरीत आकाशवाणी की पहुंच देश की 98% आबादी तक है। इस कारण आकाशवाणी सूचनाओं के संप्रेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम है। अपनी 90 साल की यात्रा में आकाशवाणी ने नित नए आयाम स्थापित किए। अपनी पुरानी तकनीक को रेडियो ने धीरे धीरे पीछे छोड़ा और नई तकनीक को अपनाया, यही स्थिति कार्यक्रमों को लेकर है। आकाशवाणी के स्टूडियो में पहले टेप डिस्क और टर्न टेबल लगी हुई थी, लेकिन तकनीक बदली और टर्न टेबल और टेप डिस्क के स्थान पर कंप्यूटर स्थापित किए गए। इसके चलते प्रसारण काफी आसान हो गया। फिर एफएम तकनीक विकसित हो गई जिससे प्रसारण बहुत साफ सुनाई देने लगा। ध्वनि गुणवत्ता बेहतर हो गई और आवाज के साथ आने वाला शोर समाप्त हो गया। इस दौरान रेडियो के कार्यक्रमों में भी भारी बदलाव देखने को मिले। श्रोताओं से सीधे रूबरू होने के लिए फोन इन कार्यक्रम शुरू किए गए। आकाशवाणी भोपाल इसमें सबसे आगे रहा। यहाँ सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल शुरू किया गया जिसमें आकाशवाणी के प्रतिनिधि फील्ड पर मौजूद रहकर सीधे लोगों से संवाद करते थे जिनका फोन से सजीव प्रसारण होता था। फिल्मी गीतों के फोन इन कार्यक्रम में श्रोता सीधे फोन करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते थे। इसी तरह समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। खेती किसानी की जानकारी विशेषज्ञ फोन पर दे रहे हैं। आज डिजिटल इंटरनेट और सैटेलाइट रेडियो के युग में पुरानी तकनीक भले ही पीछे छूट गई हो लेकिन उसने आधुनिक प्रसारण की नींव रखी। 21वीं सदी में पॉडकास्ट वेब रेडियो और मोबाइल ऐप ने प्रसारण को नई पहचान दी। आधुनिक दौर में रेडियो मोबाइल में ही है जिसे कहीं भी सुन सकते हैं अगर आपके पास नेट की सुविधा उपलब्ध है। आकाशवाणी ने इस बीच कई नवाचार भी किए जो श्रोताओं को जोड़ने में कारगर साबित हुए। एक ओर आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल स्थानीय स्तर पर लोगों को आकर्षित करने में सफल हुए, वहीं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में श्रोताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 12 साल पहले आकाशवाणी ने एक नए सॉफ्टवेयर नेतिया पर काम करना शुरू किया। इस सॉफ्टवेयर ने प्रसारण को बहुत सुगम बना दिया। सभी फिल्मी गानों को सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया गया है। इस वजह से फरमाइशी गीतों के कार्यक्रमों विशेषकर फोन इन कार्यक्रमों में लाइब्रेरी से गीत का रिकॉर्ड ढूंढ कर लाने और फिर बजाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। अब फोन पर श्रोता के द्वारा पसंद का गाना बताते ही उद्घोषक गीत कंप्यूटर पर सर्च कर बजा देता है। इस व्यवस्था से समय की बचत होने लगी और निर्धारित समय में ज्यादा श्रोताओं की पसंद के गीत बजाने का अवसर मिलने लगा। आकाशवाणी के कार्यक्रम युगवाणी, महिला जगत और ग्राम सभा आदि में इन वर्गों के लिए सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी के समाचारों की बात करें तो उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। देश विदेश के आधिकारिक समाचार केवल आकाशवाणी पर ही प्रसारित होते हैं। आज के समय समाचारों का सबसे अच्छा माध्यम आकाशवाणी के बुलेटिन है, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आकाशवाणी के लिए की जा रही पत्रकारिता का स्वरूप आज भी वही है जैसा वर्षों पहले हुआ करता था। अंतर केवल बस इतना है कि ऑडियो क्लिप भी बुलेटिन में ली जाती है, इसलिए अब पहले की तुलना में समाचार बुलेटिन ज्यादा समृद्ध हैं। 9 दशकों में आकाशवाणी ने हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की है और आशा की जानी चाहिए कि क्रम कभी नहीं टूटेगा। कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष। आलेख था अनिल माथुर, पूर्व संचालक जनसंपर्क विभाग एवं रेडियो प्रसारक भोपाल, वाचन दीपा सिंह का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिकों के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, लखपति दीदी योजना से लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण तक महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। प्रादेशिक

0: आचार दर्शन शुरू होने से पहले हम बात करते हैं उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभान्वित शिवकुमार परमार कहते हैं कि
1: कुमार परमार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हमारे परिवार में नियमित रूप से निशुल्क राशन मिल रहा है। इससे हमारे घर का खर्च कम हुआ है और परिवार में खाद्य सुरक्षा निश्चित हुई है। कठिन समय में यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत घर पर ही पेयजल उपलब्ध होने पर पूनम सोनी ने बताया,
2: मेरा नाम पूनम सोनी है। पहले मैं हैंड पंप में पानी भरती थी, अब पानी मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल लखपति दीदी बनकर पार्वती प्रजापति बताती हैं कि
3: मेरा नाम पार्वती प्रजापति है, मैं ग्राम दिल्लोद की हूँ। मेरा समूह का नाम अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह है। मैं समूह से जुड़ के मैंने शुरू में आरएफ लिया, उससे मैंने ये छोटा सा मेरे घर में ही पानीपुरी का, मेरे गांव में तो नहीं थी, मैंने पानीपुरी का बिजनेस शुरू हुआ छोटे स्तर पे। फिर मैंने सीआईएफ राशि ली तो उससे मैंने एक ठेला भी खरीदा और घर में पानीपुरी बनाती। 2,000 रुपए 2,500 की तक मुझे गांव में ही हो जाती है दिन की इनकम।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित पुष्पेंद्र राजपूत बताते हैं कि
4: मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह राजपूत। मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक कृषक सम्मान निधि दिया जाता है, ये समय समय पर आता है और जो रुपए आता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे मैं कृषि के सामग्री खाद बीज इत्यादि को समय समय पर खरीदता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर से, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस योजना से शून्य निवेश से बिजली की बचत का कार्य किया जा रहा है। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाकर बिजली बचत के साथ साथ शून्य निवेश से बिजली की बचत का कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत ग्वालियर के 30 शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाने का अनुबंध हाल ही में प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा,
6: सरकारी छतों को एक साल के अंदर सोलराइज करने का हमारे विभाग ने ये निर्णय लिया है कि एक वर्ष के अंदर हम पूरे मध्य प्रदेश में सोलर के द्वारा पूरी सरकारी छतों को सोलराइज करेंगे।
5: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संयंत्र स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ग्वालियर जिले में अधिक से अधिक शासकीय भवनों पर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की बचत के लिए सोलर संयंत्र लगे, इसके सार्थक प्रयास किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: हमारी दूसरी खबर है देवास जिले से, जहां आयुष्मान भारत योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। यहां बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे देवास संवाददाता नितिन गुप्ता।
7: मध्य प्रदेश के देवास जिले में आयुष्मान भारत योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। यहां बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। देवास जिले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकायों के समन्वय से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत जिले के शासकीय और संबद्ध निजी अस्पतालों में हृदय रोग, कैंसर, किडनी, न्यूरो सर्जरी सहित अनेक गंभीर बीमारियों का निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल के वर्षों में आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों से यह योजना जिले के हजारों परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता।
0: हमारी अगली खबर है हरदा जिले से, जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बीते दिनों विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हरदा से हमारे संवाददाता लोमेश कौर।
8: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बीते दिनों विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

0: अधिकारी डॉक्टर एचपी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई तथा उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान कर विशेष उपचार व नियमित फॉलोअप लिया जा रहा है। शिविर में हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, मलेरिया, BDRL, सिकल सेल, HIV, हेपेटाइटिस व ब्लड ग्रुपिंग सहित अन्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हम चलते हैं धार जिले की तरफ, जहां जिले में लगभग 2.25 लाख से अधिक पात्र किसान हितग्राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
2: देश के अन्नदाताओं की आर्थिक दशा में सुधार और उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 वर्ष पूर्व शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि से देश के करोड़ों पात्र किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले के पात्र किसान भी अछूते नहीं है। जिले के हर पात्र किसान को अब तक ₹44,000 का नगद लाभ प्राप्त हो चुका है। धार जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2 लाख से अधिक पात्र किसान हितग्राही हैं। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान निधि की प्रथम किस्त किसानों के लिए जारी की गई थी। प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 की सम्मान निधि दी जाती है, जिसे हर वर्ष 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक पीएम किसान सम्मान निधि की 22 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है। धार जिले में निवासरत 2,24,523 पात्र किसानों को 22 किस्तों में अब तक 987.90 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि से नवाजा जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिली है और वह अपनी किसान सम्मान निधि का उपयोग फसल बोने के समय खाद, बीज, दवा के लिए कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
1: हमारी अगली खबर है डिंडोरी जिले से, जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। पेश है डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया की यह रिपोर्ट।
3: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जिसमें 15,000 या उससे कम आय वाले 18 से 40 वर्ष के कामगार 55 से 200 रुपए के अंशदान से 60 वर्ष की आयु उपरांत 3,000 की रुपए की मासिक पेंशन का लाभ ले सकते हैं। श्रम निरीक्षक नीरज टेकाम ने बताया कि डिंडोरी जिले में योजना को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है और विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। जिले को 1,15,054 पंजीयन का लक्ष्य दिया गया है। योजना को लेकर ग्राम पंचायत स्तर में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल जिले में 484 हितग्राही का योजना के तहत पंजीयन किया जा चुका है। आगामी दिनों में पंजीयन में तेजी आने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
1: अब हम रुख करते हैं नर्मदापुरम जिले की तरफ, जहां 7,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं डेयरी, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई और छोटे व्यवसायों के जरिए अपनी आय बढ़ा रही हैं। अब तक हजारों महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी।
4: जिले में 7,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह सक्रिय हैं। अब तक हजारों महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए या उससे अधिक और मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए तक पहुंचाना है। जिले की माखन नगर ब्लॉक के सांगाखेड़ा खुर्द गांव की निवासी किरण मेहरा ने राधे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जहां बेकरी व्यवसाय शुरू किया, वहीं बानाखेड़ा ब्लॉक की निवासी सुनीता कुशवाहा शारदा आजीविका समूह के माध्यम से किराना दुकान संचालित कर रही हैं। दोनों महिलाएं आज हर माह हजारों रुपए की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है गुना जिले से, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
5: स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत गुना जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में 5 जून से 12 जून तक वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया,
6: गुना शहर को पहले से ही ODF +++ प्रमाण पत्र और 1 स्टार का दर्जा प्राप्त है और इस बार हम लोग 3 स्टार +++ वाटर +++ प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं।

0: वर्तमान में निकाय के द्वारा जो सिटीजन फीडबैक किया जा रहा है, उसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है दतिया जिले से, जहां प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना से लगभग 500 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दतिया से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी।
3: दतिया में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि योजना पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी के 15,000, 25,000, 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दतिया नगर पालिका ने अपने ऑफिस सहित किला चौक मैदान पर और गरीब बस्तियों में शिविर लगाकर 800 के करीबन रजिस्ट्रेशन की है। अभी तक 500 हितग्राही इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इस योजना में विशेष लाभ यह है, यदि डिजिटल माध्यम से ऋण को चुका दिया जाता है तो उसे 7% का ब्याज अनुदान भी मिलता है। इस योजना में रेड़ी पटरी विक्रेताओं को जोड़ने का विशेष कार्य किया जा रहा है। ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को

0: योजना का लाभ ले चुके हैं। इस योजना में विशेष लाभ यह है, यदि डिजिटल माध्यम से ऋण को चुका दिया जाता है तो उसे 7% का ब्याज अनुदान भी मिलता है। इस योजना में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को जोड़ने का विशेष कार्य किया जा रहा है। ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों

0: दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे सुनेगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रुचिरा काले का ख्याल गायन, राग होगा केदार। और अब बारी है हमारे कल की प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिएगा राजकुमार तिवारी के गाए चंद भजन। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम शब्द सागर में आप सुनिएगा शशिकांत मणि त्रिपाठी की वार्ता योग और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन। साथ ही आप सुनेंगे प्रदीप श्रीवास्तव का काव्य पाठ। सुबह 10 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 10:05 पर

0: पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनिएगा रूपाली पांडे का ध्रुपद गायन राघु का भैरव, और इसी श्रृंखला में रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा ध्रुपद में राग जोग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और 2:30 पर। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक जंग लगी तलवार का 11वां भाग। 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। सांधिकालीन सभा में 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा जिसमें आप सुनेंगे वार्ता सरकार के 12 वर्ष नई शिक्षा नीति में बदलता भारत का शैक्षणिक परिदृश्य। वार्ताकार होंगी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33 पर, रात्रि 8:35 पर और रात्रि 10 बजे। 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, 6:30 पर सुनेगा चित्र पर संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं जिसमें होगी भेंटवार्ता खरीफ फसलों की तैयारी और बीजोपचार, जानकारी देंगे डॉक्टर कुलदीप शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। रात्रि 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आतंकवाद आप सुनेगा और 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: जी कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ, सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। श्री मोदी ने कहा, एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीमाओं की सुरक्षा की तरह डेटा की सुरक्षा को बताया महत्वपूर्ण। कहा, प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित। अंतिम सूची 27 जुलाई को होगी जारी। और मौसम विभाग का 30 से ज्यादा जिलों में हवा बारिश का अलर्ट। 18 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक के आसार।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते का सफल समापन भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों महत्वपूर्ण साबित होगा और भारत तथा स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भागीदारी में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार आधारित सहयोग में नई संभावनाएं खोलेगा।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज के सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने पर आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डॉ. यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। श्री चौहान ने कहा,
2: आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा।
0: इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज इंदौर के सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान में महिला और बाल कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्रीमती देवी ने यहां कहा कि इंदौर स्थित ये संस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्थान प्रशिक्षण के साथ साथ शोध और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश भर को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन में आज तड़के

के ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जबलपुर में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लमेटा घाट और अन्य नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने मां नर्मदा में स्नान कर वट वृक्ष का पूजन किया और पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। शहडोल में मिनी ब्राजील के नाम से चर्चित विचारपुर स्थित जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल मैदान में मध्यप्रदेश फुटबॉल अकादमी का 3 दिवसीय मेगा चयन ट्रायल आज समाप्त हो गया। इस ट्रायल में 8 से 18 साल तक के 445 खिलाड़ी शामिल हुए। मध्यप्रदेश फुटबॉल संघ के मुख्य कोच स्वप्न कुमार विश्वास ने विचारपुर के खिलाड़ियों के खेल और उनके जुनून को देखकर खुशी जाहिर की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बरगी थाना क्षेत्र में आज दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार पिता और उसके 13 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण और वाक बाधित व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। शेड्यूल में 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। कटनी में ग्रामीण नागरिकों को नियमित पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल खंडवा में सप्ताह भर चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पदस्थ एक पटवारी ने तहसीलदार पर पैसे मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जाएगी ना।
1: So girls, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम ग्राम सभा लेखन राधा बहन एक बार फिर आपके संगे हैं और सब जनों को भैया भौजियों को काकी चाची हरों को काकाजी हरों और बाकी के सभी श्रोताओं को भी दो ही हाथ जोड़ के प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम करत हैं और सबको खूबई खूबई स्वागत करत हैं। तो कैसे हो आप सब जने? वैसे मौसम सो खूब ही नौनो होगा नहीं? देखो भैया बहनों, जैसो कि आप और जानत हो कि खेतन की मेड से लेके गांव की चौपाल तक अपनी लोक संस्कृति की मिठास और किसानन की मेहनत की खुशबी को समेटे भौजो कार्यक्रम हर सप्ताह मनोजो लोक रंग कार्यक्रम हम आपके बीच लेके आते हैं। सो ई बार भी आपके सामने हैं। आज के ई कार्यक्रम में चर्चा हुए किसानन से जुड़े दो महत्वपूर्ण विषयन पे, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार और प्रधानमंत्री कुसुम योजना की संगे जान है मौसम को हाल और खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारियां। कार्यक्रम में रहे हैं बुंदेली समाचार भी, जितने कम समय में देश प्रदेश से लेके आपके पूरे बुंदेलखंड की जरूरी खबरन से भी आप हे रूबरू कराओ जाए। और भैया आज है सोमवार, मनोग्राम सभा के लोक रंग को देना, तो फरमाइशों को रंग कैसे फीको?

पढ़ सकत हो है, मनो आपके चिट्ठी पत्रन संदेशन और फरमाइशों से सजो है आज को जो ग्राम सभा कार्यक्रम, जी में सुन है आप ही के मन पसंद लोकगीत। सो 40 मिनट तक अपन है संगे राने हैं। और सो चलो भैया आप देख लेते हैं आज की पहली फरमाइश हमरे लगा कितने से आई है। और आज की पहली चिट्ठी हमारे पास आई है ग्राम अमलेश्वर से, फरमाइश करी है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने। संगई भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा ने। सो इनकी पसंद को ध्यान में रखत भाई कार्यक्रम की शुरुआत करत हैं एक बढ़िया सी गणेश वंदना के संगे, जी ये गाँव है उमा शंकर तिवारी ने। तो भैया इनके संगे अपन भी आनंद लेते हैं।

और अब आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं राधा चौरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दो है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करवे की दिशा में काम करवे को सौभाग्य मिलो है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कही कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकन के जीवन स्तर को सुधार भी खिलाने, अवसरों की सुगम पहुँच, बेहतर बुनियादी ढांचों, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करो है। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल की जयंती के अवसर पर मऊ सहानिया में आयोजित होबे बारे विरासत महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कार्यक्रम स्थल को निरीक्षण करो और कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 18 जून को मऊ सहानिया आगमन प्रस्तावित है। उनके दौरा को देखत भय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, एसडीएम जीएस पटेल सहित संबंधित अधिकारी एवं विरासत समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बता देवें संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन छतरपुर एवं महाराजा छत्रसाल महोत्सव विरासत समिति मऊ सहानिया के संयुक्त तत्वाधान में 17 एवं 18 जून 2026 को महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्यपीठ मऊ सहानिया

0: भव्य विरासत महोत्सव आयोजित करो जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही कि परिवार में गरीबी कठिनाई के बावजूद हौसला की बुलंदी से हर मंजिल आसान होत है। विषम परिस्थितियों में भी कुमारी चांदनी ने परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से जो उपलब्धि हासिल करी, वह प्रदेश के लाखन विद्यार्थियों के लाने प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव MP बोर्ड 12वीं की टॉपर कुमारी चांदनी विश्वकर्मा से मिलवे ई स्कूटर से विधानसभा के निकट स्थित भीमनगर बस्ती पहुंचे। ई स्कूटर पर सवार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने खुद हेलमेट पहनो और उनके संगे ई स्कूटर पर पाछे बैठे विधायक भगवान दास सवनानी ने भी हेलमेट लगाओ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होवे पे सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं की प्रभावशीलता के संबंध में स्थानीय निवासियों से संवाद भी करो। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतन के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन करोगा है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लय जे हैं। दावे आपत्तियों को निराकरण 2 जुलाई तक करो जे है। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को विहित स्थानन पे सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को करो जे है। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होने हतो। और सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति, अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दो। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना करके पुण्य लाभ अर्जित करो। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलन पर भारी भीड़ रही। सोमवती अमावस्या पर पे खजुराहो के प्रसिद्ध मतंगेश्वर में श्रद्धालुओं को जन सैलाब उमड़ पड़ो। सोमवार सवेरे से ही खजुराहो भगवान मतंगेश्वर के दर्शन एवं पूजन के लाने हजारन श्रद्धालुओं ने उनके धाम में आसरो लाओ। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करो, पूजा अर्चना करी और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करी। महिलाओं ने व्रत रख के श्रद्धा एवं भक्ति के संग 108 परिक्रमा लगाई और भगवान शिव को प्रसादी अर्पित करी। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम को मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनांत तक बारिश और तेज हवाओं को अलर्ट जारी करो है। उतई, आगर, मालवा, राजगढ़ और सीहोर जिला में तेज आंधी को लेके ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। मौसम वैज्ञानिकन के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय ट्रफ लाइन और प्री मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कितऊ बारिश तो कितऊ तेज आंधी को दौर बनो रहे। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से थोड़ो पाछे चल रहा है, लेकिन आगामी 3 से 4 दिना में इसकी रफ्तार बढ़ सकत है। अगर मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 18 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जे है। इसके बाद प्रदेश में नियमित बारिश को दौर शुरू होवे की संभावना है। तो जी हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया, बिना किसानन को ख्याल रखें देश की तरक्की नहीं करी जा सकते। और हम सब किसान भैया के बहनन के ख्याल में कई बात रात है कि उनकी उपज को उन्हें अच्छो दाम कैसे मिलवे। सो जा बात को ध्यान में रखत भय केंद्र सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई और उनको लागू करो है जो खेती किसानी को लाभ को धंधो बना रही हैं। उन्हीं प्रयासन में से एक है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिते आप उन्हें अपने घर, खेत या गांव से ही फसल को रेट देख सकत हो, खरीदार से सीधे बात कर सकत हो और सौदा तय कर सकत हो। ई नाम जैसे कछु ऐसे सरकारी प्लेटफॉर्म है जिते देश भर की मंडियन के भाव एक जगह मिल जाते हैं, जिसे अपन हे जो समझ में मदद मिल जाते हैं कि कौन सी मंडी में अपनी फसल को बेहतर दाम अपन हे मिल सकत है। कछु मोबाइल ऐप्स में तो फसल की बोली, तौल, भुगतान और ट्रांसपोर्ट तक की व्यवस्था ऑनलाइन हो जाते है। बस आपको ईनाम मंडी पे ऑनलाइन पंजीयन कराने पड़त है। जी किलाने आपको जाने पर है बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और हाँ,

जो पंजीयन बिल्कुल मुफ्त में रहत है, सो चिंता नहीं करने। लेकिन जी ये मोबाइल चलावो नहीं आत, उए सो ऐप समझबो थोड़ो मुश्किल हो सकत है। वैसे ई की भी चिंता नहीं करने, अब कैसे आप और ई काम के लाने गाँव के कृषि विभाग, सहकारी समिति और किसान मित्र जो रहत है ना, उनकी मदद ले सकत हो। वे आप और के लाने हमेशा तैयार रहत हैं। तो किसान भैया हरो, बदलत भय समय के संगे आप भी कदम मिलाओ, अपनी फसल को डिजिटल मंडियन तक पहुँचा के अच्छी आमदनी पाओ। वैसे जानकारी को जो सिलसिला आगे भी जारी रहे, अब समय है एक और फरमाइशी लोकगीत को सुन लाएं लेते हैं अगलो पत्र। ई पत्र को लिखवे हैं दरगवाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता कुलकर्णी और परभरनी से सीआर कुलकर्णी। और इन और इनकी फरमाइश है कि हम अपनी पसंद को कोनो लोकगीत इन्हें सुनवावे। तो आपकी फरमाइश सराखन पे सुनत हैं शोभा भट्ट को गाओ भाव एक बन्ना।

अच्छा, किसानी अब केवल एक व्यवसाय नहीं है भैया हरो, बल्कि अपने देश की जीवन रेखा भी है। और जो किसान भैया किसानी करते हैं उनके लाने सबसे बड़ी ज़रूरत होते है समय पे सिंचाई, और सिंचाई के लाने पर्याप्त बिजली। भले ही जे चाहे सो कितनी ही मांगी काय ना हो जाए, लेकिन चाने परत है। और कई बार बिजली की अनियमित उपलब्धता और डीजल की बढ़त लागतें किसान की चिंता बढ़ा देते हैं। सो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखत भय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू करी है। ई योजना को उद्देश्य है किसानन को सौर ऊर्जा से जोड़वो और खेती की लागत को कम करवो। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतन में सोलर पंप लगवा सकते हैं, जिसे

सिंचाई के लाने बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होते हैं। सूरज की रोशनी से चलवे वाले जे पंप पर्यावरण के अनुकूल होबे के संगे संगे किसानन के खर्चा में भी बचत करत हैं। ई योजना के तहत पात्र किसानन को सोलर पंप लगवावे के लाने अनुदान की सुविधा भी दी जाते है, जैसे कि किसान भैया हरे कम लागत में आधुनिक सिंचाई व्यवस्थाएं अपना पावे। और इसकी अच्छी बात जा है कि कछु प्रावधानन के अंतर्गत किसान अतिरिक्त सौर ऊर्जा को उत्पादन करके विद्युत ग्रिड को बेच के अतिरिक्त कमाई भी कर सका थे। अगर आप उन्हें भी प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लाभ लेबो चाहत हो तो अपने जिला के कृषि विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग या संबंधित पोर्टल पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकत हो। तो किसान भैया बहनों, हम तो जई के हैं कि आज बदलत समय में खेती को लाभकारी बनावे के लाने नई तकनीकन और नवाचारों को अपन हे जरूर से अपनाने हैं। और फिर सौर ऊर्जा ना केवल अपने खेतन को ऊर्जा दे है बल्कि अपनी आय बढ़ावे और भविष्य हो सुरक्षित बनावे में भी सहायक हुई है। सो आत्मनिर्भर किसान बनवे की दिशा में कदम जरूर बढ़ाने हैं। और अब लोक रंग को रंग सोई आगे बढ़ाने हैं। सो लाए लेते हैं अगली चिट्ठी। नेपाल पैलेस सागर से फरमाइशी करता है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, रिश्का और रॉबिन। सो इनकी फरमाइश पूरी हो रही है सुंदरलाल विश्वकर्मा के गायब है एक दादरा के संगे।

0: और भैया हरो, अगलो पत्र भी हमारे एक नियमित श्रोता को ही है। बनियापारा धमतरी से पत्र लिखवे बारे हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, अंजलि, पायल, गौतम बाधवानी, शंकरलाल, राहुल कुमार एवं पूरो माखीजा परिवार। सो जे सबजनन की पसंद को ध्यान में रखत भय आनंद उठात हैं देवेंद्र सिंह यादव और साथियों के सुरों में ई चौकड़िया को।
1: अरे रे मनुमन मति मु रख भज राम गो।

भैया रो, मौसम सो खूब ही अच्छा हो रहा है और अपने लोक रंग को जो रंग है वो भी खूब ही निखर के आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप और उनको पसंद आ रहा हुई है। सो अगली फरमाइश भी ले लेते हैं, अगलो पत्र लेते हैं। अगलो पत्र हमारे पास आओ है मोटक्का माफी जिला खंडवा से। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित मनीषा, शुभम, देव किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल को। सो इनके लाने सुनवा भी जा रहे हैं एक चौकड़िया। सुर हैं ब्रजभान सिंह एंड पार्टी के। ये सुन के आप ही भी आनंद मिल रहे हैं।

तो भैया अपन को सदा समर के बाड़ी को इस्तेमाल करने हैं, अच्छी बाड़ी बोलने हैं, प्रेम सा भाव से मिलने हैं और का धरो है बुराइयन में, सो अच्छी अच्छी बातें करने हैं और अच्छी अच्छी बातें हम एक हम सोई करें देते हैं। अपन के बारे में तो अपन सब जने बातें कर रहे थे कि अपनों ख्याल राखियो, तो भैया अपनों ख्याल तो रखने हैं, मौसम वैसे तो नौ नौ हो गो है, सो हम कहते कि पानी पियत रहने, तो पानी तो अपन को ढोर बछिंगन को अबे भी पिलात रहने, जानी कि मौसम ठंड होगा सोने पानी की नहीं पूछने, तो भैया अपने ढोर बच्चे हुए इनको ध्यान रखने हैं, उन्हें टाइम टाइम से खावे पीवे देते रहने हैं, है नहीं, और वो खुर पकाओ मुंह पका को जो वैक्सीनेशन होते हैं ना ऊखों जरूर करा लेने हैं। तो एक हमें आई के भैया कह दे में मौसम ठंडो होगा उसे ढोर बच्चे हुए इनको ना भूल जाओ, और उनके पास रहे तो धुआं सोई जला दे में, कैसे हमें कीड़ा मकोड़ा सोई बहुत तैयार है। और हर बार जाबे से पहले हम एक लोकगीत अपने उन श्रोताओं के लाने रखते हैं जिनके पास जो पत्र होते हैं वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं, और संग ही उन श्रोताओं के लाने भी जो आजकल हमें बिल्कुल ही अपनी चिट्ठियां नहीं लिख रहे हैं। तो भैया बहनों जल्दी से एक बार फिर से हमें याद करो, हम बहुत ही आपके चिट्ठी पत्रन के लाने उत्सुक रहा थे, हमें अच्छो लगत है कि हमारे श्रोता भैया हरें का सुनवो चाहते हैं, का उनके मन में चल रही है, सो पत्र लिखो बताओ कि का सुनने हैं का करने हैं, है नहीं, और कौन अगर आप है चाहत हो कि मैं अपन कछु और सुधार भी करने हैं सो बॉस हो हमें लिख भेजियो, है नहीं, सो ये सब बातें हैं जो हम आपसे कह वो चाहते हैं। और जब चिट्ठी नहीं आते हैं सुपतो कैसो लगत है, सुनो सुनो सो लगत है, और जई कछु बात मोतीलाल प्रजापति और साथी भी कह रहे हैं तो अपन सब जने मिलके उनकी पीड़ा को भी सुने लेते हैं।

0: तो भैया हरो सुनो सुनो लगत है आपके पत्रन के बिना। सो राधा बहन ने कही कि पत्र ज़रूर लिखने हैं, है नहीं। सो यही के संगे जो है तो आज को फरमाइशी लोकगीतन को कार्यक्रम लोक रंग। आपको जो कार्यक्रम कैसो लगो हमें ज़रूर के बताइयो। पतो आप और जानते ही हो लोक रंग कार्यक्रम ग्राम सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 462002। और अब जा इसे पहले काल के कार्यक्रम सोई आपको बता देवे काल सवेरे 6:45 पे डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी से सुनवे कृषि चर्चा। विषय रहे मोटे अनाज मिलेट्स को प्रसंस्करण। और भैया घड़ी की सुयन की जो टकटकी है वह चलवे को इशारो कर रही है। सो अब दो आज्ञा ग्राम सभा सुनवे बारे सभाई किसान भैया बहनों को राधा बहन की एक बार फिर हाथ जोड़ के प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम।
1: आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
4: धन्यवाद।
3: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
4: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज़्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी

0: नहीं होती है, इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं। और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपनी इंपॉर्टेंस है, उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
0: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाएं, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजनाएं कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की, अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर। तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे

0: केंद्र सरकार है चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा, इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कहें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता है तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता है तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या इस तरह की योजना है, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनसिपैलिटीज हैं, उन

0: में कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट

0: निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये दो दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री, तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो, तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी, तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाएं ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के

0: साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूँगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियाँ दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। इंटरव्यूअर इज अनिल पद्मनाभन, सीनियर जर्नलिस्ट।
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society. But more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, You know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the next 10 years or 12 years, is about recognizing that if you write the laws for the chor, drunk driving is not an argument against cars. If you have a drunk driver, you don't ban cars. You issue licenses, you put the drunk driver in jail. But in India, we always write the law for the chor. So I think that mentality has in the regulatory system of

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शिकारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। फारूक कैसर के बोल हैं और संगीत जीएस कोहली का।

कश्मीर की कली, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। SH बिहारी के बोल हैं और तर्ज बनाई है OP नैयर ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान।

समाधान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण

0: निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने

0: औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और

0: करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed a memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैतिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज़ के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया। ये माहदा भारत और स्लोवाकिया के दरमियान आमदोरफ्त में मसरूफ काम करने वाले पेशावर अफराद की बहबूद और समाजी सलामती को तहफ्फुज़ फराहम करेगा। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए।

0: रक्षा सहयोग, हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: जनाब मोदी ने कहा कि एआई का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि ये एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए हैं जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहिदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तय काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फिको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तआवुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वफूद की सतह की बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 11 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें लेबर माइग्रेशन, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आला तालीम, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एक एआई चेयर का क्याम, क्वांटम मवासलात, तालिब इल्मों के प्रोग्राम में तआवुन और सियाहत की फरोग के शोबे शामिल हैं। भारतीय कौमी साइंस एकेडमी और स्लोवाकिया की एकेडमी ऑफ साइंसेज के दरमियान साइंसी तआवुन से मुतालिक समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी और कौंसिल सतह के मुजाकरात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। नई दिल्ली से रूपेश राठौर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: ब्रेतिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के सदर पीटर प्लेजरिनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। दौरे के दौरान दोनों लीडरों ने पंचतंत्र फोटो नुमाइश देखने से कबल महल के ग्राउंड में योगा का एक खसूसी मुजाहरा देखा। महल के बाहर भारतीय नजाद अफराद की बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। भारत, ब्राजील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को इस सरबरा इजलास में शराकतदार ममालिक के तौर पर मदऊ किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की सदारत के तहत G7 सरबराह इजलास ने रवां साल के लिए कुछ कलीदी तरजीहात का इंतखाब किया है। इनमें मैक्रो मईशत के बढ़ते हुए अदम तवाजुन में कमी करना, मुश्तरका तरक्की को फरोग देना और बैन अल-अक़वामी शराकतदारी की तजदीद करना शामिल है। तवक्को है कि तबादला ख्याल में हसास और मादनियाती अकदारी सिलसिले को मुस्तहकम करने, छोटे बच्चों को ऑनलाइन तहफ़ फराहम करने और अहम जोग्राफियाई सियासी बहरान को हल करने पर भी गौर वखौज किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। वजीर आजम फ्रांस का ये दौरा सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। वजीर आजम का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इजलास आलमी रहनुमाओं से मिलने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां वो सिर्फ भारत के मामलात ही नहीं बल्कि आलम जुनूब के भी मामलात पर बातचीत कर सकेंगे। भारत में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार शिरकत अमन, सलामती, तरक्की और पायदार माहौलियात के शोबे में भारत के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी करती है। फ्रांस के एवियान से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से मुल्क में तैयार करदा लंबी दूरी तक जमीन पर वार करने वाले क्रूज मिसाइल LRLACM की आजमाइशी परवाज कामयाबी से अंजाम दी। इस क्रूज मिसाइल के सभी जैली निजामों के मुल्क की मुख्तलिफ DRDO लेबोरेटरियों और भारतीय सनअती शराकतदारों के जरिए तैयार किए जाने के साथ ही ये मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार किया गया मिसाइल है। वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल ने मिशन के सभी मकासिद हासिल किए और भारत की लंबी दूरी तक दुरुस्त निशाने पर वार करने की अहम टेक्नोलॉजी पर मबनी सलाहियत को साबित कर दिया। वजारत

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छी तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग, और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है।

0: अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
1: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आप को थॉटलेस हो जाइए, सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
2: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है जो उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो इसके बारे में जानना था। जब अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी।
2: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी,
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। सिद्ध जी बताए।
1: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
1: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहाँ तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जायी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका?
3: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
4: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि शायद लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कार्य करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी।
4: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
1: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी।
1: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
1: हाँ, लेकिन जैसे ही हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हेतु बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
0: जी बताए।
1: श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
1: और उसमें

0: भस्त्रिका का प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका का प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
1: जी।
0: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें।
1: जी कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
2: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है। बट इसमें मिशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
2: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो निकल जाती
2: है, वेस्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ। हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे।
3: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या आंखें को कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बनाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए।
0: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है। और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है।
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना, नहीं करना पानी पीने से पहले
1: जी।
0: तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से।
4: हेलो नमस्कार, मैं मुकेश
1: जी। जी नमस्कार,
4: मेरा नाम नमस्कार है
1: जी। सवाल पूछिए।
4: शायद
1: में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं, कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है।
0: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी,
0: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका।
5: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका।
5: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार
5: नमस्कार, मेरा पहला सवाल यह है कि वेट बहुत ज्यादा है
1: जी,
5: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए, और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी।
2: जी
5: और योगा करने से वो ये होगा
2: वेट के लिए। विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें, पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा

0: सारे आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनिता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
2: प्राणायाम और आसन
1: जी।
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
3: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर
1: जी, बताइए
3: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
2: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव-गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि
1: जी
2: है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
2: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी।
2: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपाल भांति अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी।
4: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
1: प्रधानमंत्री जी। सवाल पूछिए।
4: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
0: धन्यवाद ऋषि जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब

0: मतलब आपका शुद्ध हो, शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिले कि ऐसे आंखों में कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज़्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनिता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनिता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम दो मिनट या पाँच मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
2: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
2: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
1: जी,
2: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
2: हाँ।
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
0: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं
1: जी,
0: पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने। तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
1: जी।
0: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
0: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई न दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत धीरे करने लग जाते हैं, उनका फायदा नुकसान होता है
1: जी, जी, जी।
0: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
1: जी।
0: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
3: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
2: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपालभाति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है
1: जी।
2: तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
0: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
4: नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो वे बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए।

0: मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूँगी खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
2: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और राय बरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी,
3: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
2: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे सारे विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जारी नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है, और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल्स रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने, देखकर हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
0: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है जो इस विशेष नस बोलते हैं उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है।

0: नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। ब्राह्मणी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी किया करें, जैसे बदल बदल के किया करें। और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारे योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको

पता है airnsdtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म चा चा चा के बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल है नीरज के और संगीत इकबाल कुरैशी के। और इस गीत को पसंद किया है गांव फरासी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और ग्राम पारसा टोला छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी और खुमेंद्र मसिया ने। तो आइए सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये नगमा।

ज़िला हनुमानगढ़ से कालू खां दमामी, भवर खां दमामी, चिराग खां दमामी, मोहम्मद सलीम शिपा, अख्तर अली शिपा, रुखसा शिपा और भानपुर भोपाल से रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, ग्यारसी विश्वकर्मा, बंटी विश्वकर्मा, संजय, सूरज, सोनू, लक्ष्मी, ये सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। फिल्म तेरे नाम का बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, बोल हैं समीर के और तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत से सजा हुआ गीत आनंद बख्शी के बोल हैं। फिल्म का नाम है बेताब और खूबसूरत आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, शशिकांत, रिया, रीत, स्वीटी, सागर, अंशु, रितिका, ऋचा, चित्रंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत और राज राजपुरी राज। और इसी गीत को पसंद किया है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू और प्रतीक कुमार ने।

मैंने प्यार किया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता, सुभाष कपूर, सुषमा कपूर, ज्योति भदौरिया, सरवत कुरैशी, सपना, साना, सोनम, संगीता, सिद्धांत, अरमान, आनंद और विशाल, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं हातमपुरा से। और एक और पत्र हमारे हाथ में है, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल है राजेंद्र कृष्ण के और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशन, अनिल राज मोटवानी और तिलदा कैंप से कमल, हरीश, खेतपाल, प्रियंका, सुशीला और राखी। और इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रुचिरा काले का ख्याल गायन, राग है केदार। विलंबित ख्याल एक ताल में और द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे रुचिरा काले का ख्याल गायन, राग था केदार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी मध्य

0: बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
2: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा